आज है सोमवार, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं।

0: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी समाचार। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

线等。किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य ये है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन का भाग 7। कलाकार गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। और कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 होंगे समाचार और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। और यही कार्यक्रम दोपहर 2:00 पुनः सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतर्गत नए गीत। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और रात्रि 9:30। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11:00 और दोपहर 12:00। सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर होगा यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में तय कीजिए हमारे साथ सफर दोपहर 1:00 और आप इस कार्यक्रम में कमेंट्स द्वारा फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार और 2:30 पर सुनिए सदाबहार।

सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3 बजे और दोपहर 4 बजे सुनिए सेहतनामा के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतनामा तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक इसी बीच 6 बजे आप हिंदी में समाचार भी सुन सकेंगे शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा यानी कि कार्यक्रमों की रूपरेखा संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर में सुनिए सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक हवा महल में सुनिए झलकी ये भी खूब रही लेखन उर्मिला मिश्रा का निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 और 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या शीर्षक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए ये होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे सुनिए छाया गीत आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी रात्रि 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा अभी आपने सुना झरोखा

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक।

0: की 7वीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी 7वीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है। अपने गायन में गमक, मीड़, खटका, मुर्की, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
2: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सध जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए।

0: लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
1: जी,
0: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है रंग दे चुनरिया
1: जी,
0: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक है वो, तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूँ। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
1: जी
0: उसके लिए बरसों लग जाएंगे।

0: वाह बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। है ये शास्त्रीय है लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई, ये मैंने कोशिश की।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है अनुमति लेने का वक्त आ गया है, तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्यार की राहें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश ने गाया है। कानू घोष का लिखा ये गीत है और संगीत है प्रेम धवन का।

0: तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सिम सिम मर्जीना से। प्रेम धवन की रचना थी और एआर कुरैशी ने इसे संगीतबद्ध किया था।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल के बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम के

0: रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनाते हैं मुबारक बेगम की आवाज में केदार शर्मा का लिखा ये गीत, जिसकी लय बनाई है स्नेहल भटकर ने। फिल्म का नाम हमारी याद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:00 से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 से होगा कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। 8:30 में आज बातचीत का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। सुनेंगे ARTO अयोध्या डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की भेंट वार्ता। विषय होगा वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने हेतु किए जाने वाले उपाय। इस विषय पर आपसे बातचीत की है श्री संजय धर द्विवेदी ने। साथ ही होगी एक प्यारा सा गीत और स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। 9:00 से आप सुनेंगे आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 10:30 से 12:30 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। 12:30 से आप फिर से जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से, होगा कार्यक्रम लोकरंग। 1:00 से आप सुनेंगे आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और 2:00 से होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार और 2:30 से होगा बहनों का कार्यक्रम अंगना, जिसमें आज बातचीत होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में। सुनेंगे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह की भेंट वार्ता। विषय होगा पेरीमेनोपॉज के संकेत लक्षण व उपचार।

इस विषय पर आपसे बातचीत की है प्रज्ञा मिश्रा ने। जानेंगे एक स्वादिष्ट सी रेसिपी के बारे में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 3 बजे से 5 बजे तक आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से एक बार फिर आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से। होगा कार्यक्रम युवाणी जिसमें चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही बात होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बाद बारे में। करियर गाइडेंस में बात होगी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर। वार्ताकार होंगे दीपक कुमार पांडे और इस विषय पर आपसे बातचीत की है दिशा पांडे ने। होंगे रोजगार समाचार, साथ ही होंगे कुछ प्यारे गीत इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत और 6 बजे से होंगे समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। 6:10 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम।

6:10 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी और 6:20 से होंगे संस्कृत समाचार। 6:30 से होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर्गाओं के। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 से, जिसमें चर्चा का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। सुनेंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यासागर की भेंटवार्ता। विषय होगा दुधारू पशुओं एवं नवजात बछड़ों का रखरखाव एवं खान पान प्रबंधन। इस विषय पर आपसे बातचीत की है पूनम वर्मा ने। सुनेंगे प्यारा सा लोकगीत, जानेंगे बाजार भाव, लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार और 7:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 8:15 से आप पुनः जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से, होगा कार्यक्रम गीत गुंजन। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या और 9:00 से होगा न्यूज एट 9:00। 9:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात और 9:30 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को और 11:00 से होंगे समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को

0: सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने की अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जबकि अन्य दो को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और आटो

की टक्कर में दंपत्ति सहित तीन लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हमने किया आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 101.9 FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
7: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
6: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
7: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
6: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल

0: उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

आकाशवाणी अयोध्या से प्रातःकालीन भक्ति संगीत कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा। भोर के इस पावन बेला में जब प्रकृति की हर धड़कन एक नई ऊर्जा और शांति का संदेश देती है, आइए हम भी अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लें। प्रभु स्मरण से दिन की शुरुआत न केवल सकारात्मक बनती है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा और शक्ति भी देती है। तो आइए इस मधुर संगीत यात्रा में डूब जाइए और हर सुर में आस्था का, विश्वास का और प्रभु का स्मरण करिए।

भक्ति के इन मधुर सुरों के साथ आपका मन भी शांति और सुकून से जरूर ही भर रहा होगा। आइए इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला मनमोहक भजन लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।

0: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
2: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
1: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
2: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
1: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
2: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
1: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
3: कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत का अमृत कलश और आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

ये स्वर लहरिया गूंज रही है आपके घर आपके आंगन आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा। श्रोताओं, मन को स्थिर और शांत करने का सबसे सरल माध्यम है भक्ति और संगीत। तो आइए इस मधुर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अगले भजन के साथ। अगला भजन आशा भोसले के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए

0: लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राम कोवे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का

0: राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल है।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की

0: जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। 101.9 FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम सुर संगम।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कार्यक्रम सुर संगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

कार्यक्रम चल रहा है सुर संगम, और कार्यक्रम में अगली रचना सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में एल्बम जज्बात से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303199111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
8: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
9: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
8: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
9: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
10: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहती नदी और ढलता सूरज गवाह है कि हर खूबसूरत अंत के बाद एक नई और बेहतरीन शुरुआत होती है। इसी सोच के साथ अगर हम जिंदगी को देखें तो हर

खत्म होने वाली चीज हमें उदास नहीं करेगी, बल्कि एक नई उम्मीद देगी। कई बार हम किसी चीज के जाने या खत्म होने से टूट जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वही अंत हमें किसी और बेहतर शुरुआत की तरफ ले जा रहा होता है। बस जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की, खुद पर भरोसा करने की और ये मानने की कि जो हो रहा है वो हमारे लिए ही अच्छा रास्ता बना रहा है। इसलिए हर अंत को अलविदा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का स्वागत समझिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। और इसी खूबसूरत सी सोच के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। जी हाँ दोस्तों, हर साल 18 मई को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। संग्रहालय केवल पुरानी चीजों को संभाल कर रखने की जगह नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा और सभ्यता के जीवित दस्तावेज होते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम समय की यात्रा पर निकल पड़े हों। वहां रखी पुरानी मूर्तियां, हथियार, सिक्के, कपड़े, पांडुलिपियां, चित्र और ऐतिहासिक वस्तुएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी कला कैसी थी, उनका जीवन कैसा था और उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया। आज के आधुनिक दौर में जहां मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी है, वहीं ये म्यूजियम हमें हमारी अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान केवल वर्तमान से नहीं बल्कि हमारे इतिहास और विरासत से भी बनती है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में संग्रहालयों का विशेष महत्व है। हमारे देश में अनेक ऐसे म्यूजियम हैं जो हजारों वर्षों की सभ्यता की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं। चाहे दिल्ली का नेशनल म्यूजियम हो या कोलकाता का इंडियन म्यूजियम या लखनऊ का स्टेट म्यूजियम लखनऊ, हर म्यूजियम अपने आप में ज्ञान और इतिहास का खजाना है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। किताबों में पढ़ी गई बातें जब वो वास्तविक रूप में देखने को मिलती हैं, तो सीखना और भी रोचक बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा इतिहास में मुगल काल के बारे में पढ़ता है और फिर संग्रहालय में उस समय की तलवारें, कपड़े या चित्र देखता है, तो उसका ज्ञान और समझ दोनों गहरी हो जाती है। आजकल कई म्यूजियम आधुनिक तकनीक का उपयोग भी कर रहे हैं। डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो गाइड, 3D मॉडल और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाओं ने म्यूजियम को और भी आकर्षक बना दिया है। अब लोग घर बैठे भी कई म्यूजियम की ऑनलाइन सैर कर सकते हैं। ये तकनीकी नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का एक शानदार माध्यम बन रही है। साथियों, म्यूजियम केवल इतिहास नहीं बताते, ये हमें सीख भी देते हैं। ये बताते हैं कि समाज ने कितनी कठिन यात्राएं की हैं, कितने संघर्षों के बाद आज का विकास संभव हुआ है। वे हमें अपनी धरोहर को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों और परिवार के साथ म्यूजियम का भ्रमण करेंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझेंगे और उसे सुरक्षित रखने में योगदान देंगे। अगर हम अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाएंगे तो हमारी पहचान भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी। इसलिए संग्रहालयों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। और आखिर में बस यही इतना कहना चाहूंगी कि जो ये म्यूजियम होते हैं, ये हमारे अतीत की अमूल्य धरोहर है। ये हमें ज्ञान देते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। तो आइए इस खास दिन पर हम सभी संग्रहालयों के महत्व को समझें और विरासत पर गर्व करें।

और दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है प्रणाम अयोध्या, और अब आइए सुनते हैं एआरटीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह की भेंटवार्ता। विषय है वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने हेतु किए जाने वाले उपाय।

0: इस विषय पर आपसे बातचीत की है श्री संजय धर द्विवेदी ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आजकल हम पाते हैं कि वाहन तो असीमित संख्या में हो गए हैं और जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो एक भय बना रहता है कई बार कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन हम ये सोचने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि सड़क पर वाहन चलाते समय क्या क्या सुरक्षा की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने के क्या क्या उपाय हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह जी को। डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम कोई वाहन चाहे दो पहिया हो चाहे चार पहिया हो, ये लेके जब सड़क पर उतरते हैं तो हम सुरक्षित बने रहे, ऐसे के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए?
2: ऐसा है कि सड़क पर वाहन चलाने हेतु
1: सर्वप्रथम
2: हमारे यहाँ जो 1988 में सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट बना है
1: जी,
2: उसी के साथ साथ नियमावली भी 1989 में बनाई गई
1: जी,
2: और सड़क सुरक्षा के नियमों में या सड़क सुरक्षा पर क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी रूल रेगुलेशन फॉर ड्राइविंग 1989 में ही बनाया गया। लेकिन समय और परिस्थितियां बदलती रही
1: जी,
2: तो वर्तमान में 2017 में सरकार ने उसी नियमावली का संशोधन करते हुए
1: जो 89 में बना था सर,
2: केवल उसमें संशोधन कर दिया मोटर व्हीकल ड्राइविंग रूल्स
1: सर
2: 2017 में लागू किया गया। इसमें 40 नियम हैं। अगर हम उन 40 नियमों का अवलोकन कर लें
1: सर
2: और उनका अनुपालन सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से अगर हम सड़क पर चलेंगे तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे और जो दूसरा व्यक्ति चलने वाला है, रोड यूजर्स है, वो भी सुरक्षित रहेगा। उन 40 नियमों में पूरा सार रोड सेफ्टी का दिया गया है।
1: आप आरटीओ प्रशासन है, ये जो 40 नियम बनाए गए इससे जनता रूबरू हो, यानी कि लोग जाने, इसके लिए कुछ प्रयत्न हुआ क्या?
2: प्रयत्न तो यह है कि हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते हैं
1: सर।
2: जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ हम सभी श्रोताओं से आग्रह करेंगे
1: सर
2: कि वो साइट से इस नियम को निकाल लें
1: जी,
2: और चूंकि 40 ही नियम हैं
1: बिल्कुल,
2: तो उन 40 नियमों का अवलोकन कर लें।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: अगर उन 40 नियमों का अवलोकन करने उसका अनुपालन भी हम सुनिश्चित कर लेंगे
1: सर,
2: तो निश्चित रूप से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकेंगे
1: सर।
2: उन 40 नियमों में जो मेन चीजें हैं,
1: हाँ मोटी मोटी चीजें क्या है सर?
2: यह है कि जब कोई गाड़ी चला रहा है तो चालक के कर्तव्य क्या है?
1: बिल्कुल।
2: तो चालक के जो कर्तव्य हैं उसमें मुख्य रूप से यही है कि उस सर्वप्रथम जब अपनी गाड़ी रोड पर ले आता है
1: सर,
2: तो गाड़ी की भौतिक स्थिति की जांच अवश्य कर ले
1: कि उसकी गाड़ी ठीक है कि नहीं है,
2: ठीक है कि नहीं है।
1: तो पहला रूल यही है,
2: पहला सबसे पहला सावधानी तो यही है
1: जी।
2: उसके बाद अगर गाड़ी पर हम सवार होने जा रहे हैं या गाड़ी चलाने जा रहे हैं
1: जी,
2: तो जो सुरक्षा के मानक हैं उनका अनुपालन हम कर लें। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट के बिना ना चलाएं, सेफ्टी बेल्ट लगा लें अगर फोर व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं। अब तो नए नियमों में या नई जो गाड़ियां बन रही हैं उनमें सेफ्टी बेल्ट बैठने वालों के लिए भी और चलाने वाले के लिए सबके लिए अनिवार्य है,
1: यानी आगे की सीट पर
2: और पीछे की सीट पर
1: सबको सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए
2: चाहिए। उससे क्या होता है, खतरे की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है
1: जी।
2: न्यूज में निकला था यहीं पर एक बुलेरो गाड़ी जो है जाकर के
1: कहीं
2: पेड़ से टकरा गई थी
1: सर, सर, सर।
2: और उसका सेफ्टी वाल्व खुल जाने के कारण सभी व्यक्ति सुरक्षित रहे
1: सर।
2: तो ये जब घटना होती है तभी हम चेतते हैं कि जो छोटी सावधानियां हमको बरतनी है, अगर उस सावधानी को हम नहीं बरत रहे हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना को हम दावत दे रहे हैं
1: सर।
2: तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम अनुपालन सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकेंगे।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी चीज, अगर हम अपनी गाड़ी सुरक्षित, हमारी गाड़ी का भौतिक स्थिति ठीक है, वाहन के सभी प्रपत्र हमारे ठीक है, दूसरी चीज प्रदूषण के संबंध में भी, क्योंकि अभी रोड सेफ्टी का एक पार्ट है
1: जी।
2: जैसे वर्तमान में देखेंगे कि मोटरसाइकिल वाले अपना साइलेंसर मॉडिफाई करा लेते हैं,
1: आजकल अक्सर ही देखने मिलता है सर, और रात में फटाक फटाक की आवाजें भी होती है,
2: ध्वनि प्रदूषण इससे बढ़ता है
1: सर।
2: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इसके लिए अब सरकार जो है बहुत

0: बड़ा अभियान चला रही है
1: सर।
0: इसमें जो एजेंसियां साइलेंशर लगा रही मॉडिफाई करके उनके ऊपर 182 ए में सेटर मोटर व्हीकल एक्ट के 1,00,000 रुपए जुर्माने का प्राविधान आया।
1: जो लोग लगा रहे हैं
0: जो लोग लगाते हैं
1: जी।
0: दूसरी चीज जो लगवाते हैं उनके लिए भी 5,000 के साथ साथ उनके आरसी का निलंबन और उनके डीएल का निलंबन भी प्राविधान में है
1: यदि वो ऐसा करते हैं तो।
0: यदि वो ऐसा करते हैं और तीसरी चीज वह जो अगर ध्वन प्रदूषण फैलाते हैं माने साइलेंसर आवाज करता है उनका चालान होने पर 192 में 10,000 रुपए का प्रावधान है
1: सर।
0: तो व्यक्ति को अगर इतना दंड होने के बाद भी
1: सुधरता नहीं
0: अगर इस चीज का उल्लंघन कर रहा है तो इसको समझने की बात है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: चूंकि अभी रोड सेफ्टी का एक पार्ट है और पब्लिक के प्रति हमारा दायित्व तो भी है
1: सर। जो आपने बताया कि ये चालान कट सकते हैं इसको देखता कौन है? आरटीओ विभाग देखता है या पुलिस देखती है?
0: नहीं, दोनों का दायित्व है। जो भी रेगुलेशन का काम करता है
1: उसका दायित्व है।
0: पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग
1: ये सब इसको चेक कर सकते हैं।
0: हम जो है वाहनों के रेगुलेट करने के लिए आए
1: जी। बिल्कुल।
0: तो ये तीनों का दायित्व है और तीनों मिल करके अगर अभियान को चलाते हैं तो व्यक्ति उससे जागरूक भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित होता है। और जहां तक रोड पे चलने की बात है कई बार हम लोग चर्चा के दौरान इस चीज को बताए भी हैं कि हम अगर रोड पे जा रहे हैं तो लेन ड्राइविंग हमारा पहला दायित्व है। जहां पर जिसके लिए लेन निर्धारित है उस लेन में चले और जो भी रोड है जिस रोड पे चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के एनएचआई के एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है
1: उसका पालन करें।
0: उसका अनुपालन हम जरूर करें।
1: बिल्कुल सही।
0: और सुरक्षा नियमों के जो हमारे सुरक्षा के मानक हैं उनके मानकों का भी अनुपालन करना हमारा दायित्व है
1: जी।
0: अगर इन तीनों चीजों को मिला करके हम इसका अनुपालन सुनिश्चित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से रोड पर हम सुरक्षित चल सकेंगे और जो रोड यूजर्स हैं वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंच सकेंगे।
1: सर आजकल रात्रि में भी चालन की परंपरा हो गई। बहुत सारे लोग अपनी यात्रा का प्रारंभ ही रात्रि में करते हैं बल्कि अर्धरात्रि से शुरू करते हैं और अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि 3 बजे या 4 बजे भोर के आसपास कहीं न कहीं कुछ न कुछ टकरा जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि लोग कैसे सावधानी बरते हैं?
0: ऐसा है कि जो दुर्घटना के कारण होते हैं ऐसे में
1: जी
0: भोर में
1: जी
0: क्योंकि जो गाड़ियां कुछ गाड़ियां बिगड़ जाती है कुछ गाड़ियां रेस्ट के लिए वो रोड पे खड़ी हो जाती है और पीछे उसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा होता है और जो पीछे से आने वाली गाड़ी होती है उसका भी चालक झपकी ले लेता है या थकावट के कारण उसको नींद आने लगती है तो ऐसे में उस गाड़ी को देख नहीं पाता है और दुर्घटना का कारण बनता है
1: जी।
0: तो ऐसे में लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मौसम गर्मी का है
1: जी।
0: बाहर गर्मी है और हम गाड़ी चलाते समय एसी चला लेते हैं तो शरीर जो है सुस्त अवस्था में आ जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: जो दुर्घटना का कारण बनती है
1: जी।
0: तो पहली बात कि हम रात में अगर यात्रा कर रहे हैं तो 12 बजे तक अपनी यात्रा जरूर पूरी कर लें और मॉर्निंग में अगर हम यात्रा करना भी चाहें तो हम रेस्ट करके 6 बजे के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें।
1: नहीं नहीं, आप भी कहना चाहते हैं कि निशा रात्रि में अर्धरात्रि के बाद हमको यात्रा को अवॉइड करना
0: चाहिए। उससे क्या होता कि सुस्ती हमारे पास नहीं आएगी और व्यक्ति तरोताजा होकर के वाहन का संचालन कर सकेगा
1: जी।
0: और दृश्यता भी उस समय पूरी रहती है। अगर कोई गाड़ी सामने खड़ी है
1: बिल्कुल
0: तो उधर दिखेगी नहीं। आप देखें इधर हाल में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें मुख्य रूप से यही कारण रहा है कि या तो चालक को झपकी आ गई तो वो गाड़ी जो है लेकर के रोड के किनारे चला गया या चालक झपकी के कारण सामने खड़ी गाड़ी को देख नहीं पाता है उस गाड़ी में वो गाड़ी हिट कर जाती है जिससे दुर्घटना होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।
1: आप आरटीओ प्रशासन है, चलते चलते एक प्रश्न आपसे और करना चाहते हैं कि सभी गाड़ियों को चलाने के लिए योग्य चालक मिले इसके लिए क्या कोई विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वो सारी जानकारियों से युक्त होकर के गाड़ी चलाएं?
0: ऐसा है कि वर्तमान में DTTI अयोध्या में है
1: जी,
0: ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट
1: सर।
0: अभी ट्रेनिंग के लिए तो सरकार योजना बना रही है
1: जी,
0: लेकिन टेस्टिंग हो रही है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग टैग बन गए हैं
1: जी,
0: और उसमें कार्मिक भी हमारे इसी महीने आ गए हैं
1: जी।
0: तो जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है
1: हाँ,
0: अगर उसको हम सकुशल संपन्न करा करके ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें तो यह दुर्घटना बचाने का एक अवश्य रूप से कारण हो सकता है। अगर ट्रेंड चालक रहेंगे तो उनको नियमों की जानकारी रहेगी और इस समय में गाड़ी चलाना चाहिए, समय में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए,
1: ये भी जानकारी।

0: ये भी जान जाएंगे। अच्छा, चलते चलते हमारे श्रोताओं को एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो हमारे चिन्ह बने होते हैं, चाहे सर्किल में, चाहे ट्रेंगुलर में बने हो, चाहे आयताकार में बने हो,
1: जी,
0: अगर वो नीले कलर में अंदर है
1: जी
0: चिन्ह, तो ये मैंडेटरी होता है, उसका अनुपालन करना होता है।
1: नीले कलर में अंदर है तो निश्चित ही उसका पालन
0: अनुपालन करना है। अगर रेड कलर में है तो वो केवल चेतावनी और हमको देखने की चीज होती है
1: कि क्या चीज है ये,
0: क्या चीज है ये, माने अगर वहाँ पर
1: निर्देश है इसमें,
0: कौन सा निर्देश है। लेकिन अगर वो हरे कलर में है तो उसका अनुपालन मैंडेटरी
1: है।
0: अगर इन चीजों को हम देख करके वाहन का संचालन करेंगे तो दुर्घटना से निश्चित रूप से बच सकेंगे।
1: डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह जी, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, इस विषय में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से, हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ARTO अयोध्या डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह की भेंट वार्ता। विषय था वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने हेतु किए जाने वाले उपाय। इस विषय पर आपसे बातचीत की थी श्री संजय धर द्विवेदी ने। ये वार्ता न सिर्फ नियमों की जानकारी दी हमें, बल्कि हमारी और हमारे अपनों की सुरक्षा का संदेश भी देती है। याद रखिए, सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को अपनी आदत बनाएं। याद रखिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन दिल उन्हें बड़ी ही आसानी से महसूस कर लेता है। अपने देश के लिए प्यार, अपनी मिट्टी से जुड़ाव और अपनी पहचान पर गर्व, ये वो भाव है जो हर भारतीय के भीतर कहीं ना कहीं बसता है। इन्हीं गहरे और सच्चे एहसासों को अपने दिल से महसूस करते हुए अब वक्त है उस प्यारी सी प्रस्तुति का, जो इन भावनाओं को खूबसूरती से अभिव्यक्त कर रही है। तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: ये सोच के मैं इतराता हूँ।
1: ये भाव सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा की आवाज है। जहाँ हर धड़कन में अपने वतन के लिए प्रेम है, हर सांस में अपनी मिट्टी की खुशबू है और हर कदम में अपने संस्कारों की गरिमा, ये एहसास हमें याद दिलाता है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारी पहचान, हमारी जड़ें हमेशा अपने देश से जुड़ी रहती हैं। यही जुड़ाव हमें मजबूत बनाता है, हमें एक करता है और हमें गर्व से भर देता है। इस प्यारे से गीत के बाद आइए एक नजर डालते हैं स्थानीय खबरों पर समाचार पत्रों के माध्यम से। राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, 50 अतिरिक्त जवानों की तैनाती, उप मंदिरों के पास बढ़ाई गई निगरानी, श्रद्धालुओं की आवाजाही पर विशेष नजर। देवकाली क्षेत्र में आज 6 घंटे गुल रहेगी बिजली। अवध विश्वविद्यालय को नो व्हीकल जोन बनाने की तैयारी, कैंपस में पेट्रोल डीजल वाहनों पर लग सकती है रोक, ईवी अपनाने पर मंथन, कैंपस में ईवी गोल्फ कार्ट चलाने का सुझाव। कामकाजी महिलाओं के लिए अयोध्या में हॉस्टल, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 14.55 करोड़ से बन रहा 74 बेड वर्किंग वुमेन हॉस्टल जनवरी तक होगा पूरा।

0: भारत में अनूठी पहचान बनाएगा राम कथा संग्रहालय, 7D तकनीक आधारित संकट मोचन गैलरी होगी खास। 40 डिग्री पहुंचा पारा, अगले 24 घंटे में लू के आसार। और इन्हीं खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या यहीं संपन्न होता है।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।
2: प्रणाम अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: हेलो
5: सुनो, टेलीफोन नंबर।
6: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
7: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
7: फोन नंबर 9161877347।
8: तो जिंदगी इंद्रधनुषी रंगों से सजी हुई है, बस फर्क इतना है कि हमें हर रंग को अपनाना सीखना होता है। खुशियों के रंग में हमें मुस्कुराना सिखाते हैं और मुश्किलों के रंग हमें मजबूत बनाते हैं। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ और इन्हीं रंग भरी सोच के साथ आइए कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत शुरू करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं रंगों की ही तरह होते हैं आपके संदेश जो मिलते हैं हमें व्हाट्सएप पर, और इन्हीं खूबसूरत रंगों को समेट कर हाजिर हूं मैं नेहा कार्यक्रम को लेकर। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं हमारे वो श्रोता जिनका संदेश पहला है आज के इस कार्यक्रम में। पहला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है मुक्कम फुल चिंचोली पंढरपुर से

देखने वाले हमारे श्रोता हैं जाकिर मुलानी, समीर मुलानी, सुभान मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज, दिलशाद, नसीर और इनके चाचा चाची। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म डॉन का ये गीत, जिसमें आवाज है किशोर कुमार और साथियों की। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत फिल्म डॉन से।

कार्यक्रम में अगला संदेश आया है हमारे पास तक वेलसर जिला गोंडा से। लिखने वाले हमारे श्रोता है अनु पांडे, कुमकुम पांडे, माही कंचन पांडे। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ताल से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: लगता है छोटे से अंतराल के लिए वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, फटे फटे पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत, वो कार्यक्रम जहां आप भेजते हैं अपने खूबसूरत से संदेश और उन्हें हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में। तो अगला जो संदेश हमारे पास तक आया है वह है विलेज तिहारी जिला सुल्तानपुर से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शमा परवीन, आयतल फातिमा, अफलक फातिमा। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है से ये प्यारा सा गीत जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत है उत्तम सिंह का। तो आइए ये प्यारा सा गीत आप सभी

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम में जो अगला संदेश हमने शामिल किया है वो आया है हमारे पास केंद्रा मोहल्ला पटियाला से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन भत्ता, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धड़कन का गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत और अगला संदेश आया है हमारे पास तक जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सुरेश सोनू राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह का। इसी गीत के लिए ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमें ये संदेश आया है मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी का। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने संगीत दिया है जतिन ललित ने। तो लीजिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार शायरी कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद
1: और साथ में अपना नाम पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: आवाजों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, दिल से दिल का ये रास्ता यूं ही मिलता रहे। नमस्कार, आदाब, सत स्नेह, प्रणाम। आकाशवाणी अयोध्या से मैं आपकी दोस्त नेहा लेकर हाजिर हूँ एक खूबसूरत सा कार्यक्रम, जहाँ बातों में अपनापन है, आवाजों में है जादू और हर जुड़ाव में है खास एहसास। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या और कंट्रोल रूम से हमारे साथ है हमारे साथी अश्विनी कुमार शुक्ला। तो देर मत कीजिए, मिलाइए आकाशवाणी अयोध्या का नंबर 7376 8040 90 और जुड़ जाइए इस खूबसूरत से सफर में। और हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
7: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
7: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही है?
7: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर दीवानों के तहत जिला रायबरेली से।
0: जी पिंकी जी, आप तो हमारी रेगुलर श्रोता हैं।
7: जी जी मैम, बिल्कुल। और मैम, आज मैंने काफी अंतराल के बाद कॉल किया है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
0: हमें भी आपसे बात करके पिंकी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो आप हमें बता दें कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
7: कब ये कार्यक्रम शुरू हो और कब से आप मतलब कब से आपसे

0: मुलाकात हो।
1: हाँ चलिए, मुलाकात हो गई है पूरी, तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे।
0: मूवी का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल हैं दिल ये कहता है।
1: फूल और कांटे।
0: जी जी मैम बिल्कुल।
1: तो इस समय क्या कर रही हैं आप?
0: मैम बैठे थे बस, आपका कार्यक्रम ही सुन रहे थे और आपकी प्रस्तुति एकदम झटका हुआ और सुपर हिट लग रही है।
1: चलिए आपसे बात करके तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आपकी ये जो कमेंट्स होती है ना, यही हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, यही हमें।
0: मैम आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी शिद्दत से कार्यक्रम करते हो, तो हम श्रोताओं का भी कर्तव्य बनता है ना कि आपकी अच्छे से तारीफ करें।
1: चलिए आपको पसंद आया, हमारा कार्यक्रम सफल हुआ तो अच्छा।
0: मैम मैं ये गाना आपको स्पेशली डेडिकेट करती हूँ, और हमारी दोस्त है पूनम दीदी और गुंजन तिवारी, शमा परवीन, साई बंसारी, और मेरे भाई है दिलीप राजभाई, नीरज राजभाई, मेरी सिस्टर है रिंकी।
1: जी बिल्कुल, गाने के बोल एक बार फिर से बताएंगे पिंकी जी।
0: दिल ये कहता है।
1: दिल ये कहता है।
0: जी जी मैम।
1: ये फूल और
0: बहुत खूबसूरत सॉन्ग है।
1: ये फूल और कांटे में नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल मैम।
1: नहीं ये इस फिल्म में नहीं है गीत शायद आप।
0: तो मैम इस मूवी का कोई और सॉन्ग चला दीजिए, सारे सॉन्ग अच्छे लगते फिलहाल। ये मतलब ये सॉन्ग इसी मूवी का है, क्योंकि मैंने अभी सुबह ही देखा था सुनने के लिए कि मैं आज मेरी कॉल लगेगी तो मैं यही सॉन्ग सुनूंगी।
1: चलिए ठीक है, वैसे हमारी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग है नहीं, तो मैं आपके लिए इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग प्ले कर दे रही हूँ। ठीक है पिंकी जी।
0: ठीक है मैम कोई बात नहीं, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही कॉल ट्राई किया, मेरी कॉल लग गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मैम।
1: आपको भी आकाशवाणी अयोध्या से यूं ही प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने मैम हमको ऐसे ही बुलाते रहिएगा, हम आते ही रहेंगे आपसे मुलाकात करने।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद पिंकी जी।
0: नमस्ते मैम, बाय।

0: हैं इस कार्यक्रम से और कर सकते हैं अपनी बात और हमारी खुश होता हमसे जुड़ भी चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो कोई बात नहीं, अगली कॉल हम जल्द ही। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं रामकरण बोल रहा हूँ, गोरामो पोस्ट ड्राइवर टी खंडा सा अयोध्या।
0: जी रामकरण जी, बताइए सबसे पहले कि कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: मैं गीत सुनना चाहता हूँ जिनका नाम है आशा।
0: आशा
1: और गाने के बोल हैं, जाने हम शांति के लोगों को, ऐसे कुछ गाना है मोहम्मद रफी साहब का।
0: जी
1: सर जी, मैं मेरा ये पहली बार फोन लगा है। मैं फिलहाल में आपका जो रेडियो है ऐसे मैं लगभग 93 से सुन रहा हूँ।
0: यानी कि आप हमारे काफी पुराने श्रोता है।
1: और दरअसल बीच में कुछ गैप हो गया था क्योंकि मैं इंडिया में नहीं था, फॉरेन चला गया था 7 साल के लिए। उस टाइम तो ऐप भी नहीं था, रेडियो भी सुनते थे हम लोग।
0: जी
1: तो बहुत अभी अभी भी हमारे घर में रेडियो चलता है।
0: जी माफ कीजिए रामकरण जी, हमारे यहाँ फिल्म आशा हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप कोई और गीत के लिए फरमाइश कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे भी गाने हैं बहुत से।
0: जी बताइए।
1: मतलब कोई भी गाना सुना देना, अभी जो रिंकी जी का फोन लगा था वो सुल्तान अमेठी जी का, वो उन्होंने जो गाना बताया था ना आपको, आपने ढूंढ नहीं पाया लेकिन मुझे वो गाना मालूम है।
0: जी
1: वो गाने के बोल हैं कि बोल दिल ये कहता है कानों में तेरे थोड़ा करीब आके, ऐसे कुछ गाना है वाला।
0: जी
1: कोई बात नहीं, अभी गाना जो आपने बताया अभी जो चल रहा है वो भी गाना अच्छा है।
0: नहीं आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो मोहम्मद रफी के सुना देना कोई, या एक काम करना है आंखियों के झरोके से एक गाना है।
0: जी जी
1: हुए ये पल चीने से है रविंद्र जैन साहब का।
0: जी
1: हेलो।
0: हाँ हाँ जाते हुए ये पल चीन
1: आ रही आ रही, आपकी आवाज आ रही।
0: जी हाँ, तो रेडियो से अपनी थोड़ी सी दूरी जो है वो बना लीजिए ताकि आपको हमारी आवाज जो है।
1: मैं रेडियो से दूर हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: हेलो,
0: तो रामकरण जी क्या करते हैं इस समय आप?
1: अभी तो मैं घर में हूँ, सूरत में काम पड़ता है एम्ब्रॉयडरी का।
0: अच्छा, और यहाँ पर रहते हुए, यहाँ पर रहते हुए आप आकाशवाणी अयोध्या सुनते हैं? जब सूरत जाते हैं तो वहाँ पर भी सुनते हैं?
1: वहाँ पे चलता है ना न्यूज़ एयर पे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, जान के बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं और आपको यहाँ के कार्यक्रम पसंद भी आते हैं।
1: कुछ दिन से वो जो एक क्या नाम था उनका वो नहीं आ रहे हैं, उनका नाम मैं भूल गया, सॉरी
0: जी। एक्चुअली
1: क्या नाम, वो पंजाबी थे
0: जी,
1: अमरजीत ऐसे कुछ नाम था उनका।
0: जी आते हैं, इसका मतलब कि आप रेडियो लगातार नहीं सुन रहे हैं?
1: लगातार नहीं सुन पाते क्योंकि गाँव में थोड़ा काम है ना, मैं बिजी रहता हूँ इसलिए कम सुन पाता।
0: जी आपके इस बात से ही मुझे लग गया कि आप रेडियो लगातार नहीं सुन रहे हैं क्योंकि अमरजीत सर तो बराबर आते हैं।
1: सुन पाता, वो बात सही है।
0: जी चलिए ठीक है, आप सुनिए ये अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और 73-76-80-40-90 ये है वो नंबर जिसे डायल करके आप जुड़ सकते हैं अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम से। और हमारे कोई श्रोता लाइन पर हमसे जुड़ भी चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्ते, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ, अयोध्या जिले पूरा ब्लॉक फतेहपुर।
0: जी मुस्तफा जी, बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, सॉन्ग का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपसे और आपके कार्यक्रम से जुड़ा इतना ज्यादा है कि मतलब इसके लिए हम फोन लगाए हैं। बाकी गीत अपने बड़ा कोई भी आप सुना देंगे हमें पसंद है।
0: जी
1: हाँ, बाकी लगाओ इतना ज्यादा है सुनकर, इसके लिए हम कॉल बहुत दिन से लगा रहे थे, भाग्यवश आज हमारा कॉल लग चुका है।
0: चलिए तब तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई इसके लिए कि आज आपकी कॉल जो है वो लग गई।
1: जी सर थैंक यू, बहुत दिनों से लगा, बहुत दिनों से लगभग 6-7 साल हो गए।
0: जी तो आप आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को बराबर सुनते हैं?
1: जी टेलर की दुकान में बैठ के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: कैसे लगते हैं आपको यहाँ के कार्यक्रम?
1: जी सर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन दर्शन मिल लीजिए कि अगर कोई साथी है, सच्चा साथी है तो अच्छी है।
0: जी तो अगर इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ अगर आप एक किसी एक प्यारे से नगमे की फरमाइश भी कर दें तो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा।
1: जी सर हम तो दोस्ताना पर का कोई भी गाना सुना, दोस्ती वाला सुनाइएगा सर। दोस्ती पर का कोई भी गाना आप सुना दीजिए, हमें पसंद है दोस्ती।
0: अच्छा दोस्ती पे आपको कोई भी गीत सुनना है?
1: जी दोस्ती पर से दोस्ती सुना दीजिए। हमारे पिताजी की अभी 4 नवम्बर का उनका डेथ हो गया, रेडियो बराबर चलाते थे, आज भी रेडियो उनकी सुनी है, देख के बहुत खुशी।
0: जी आकाशवाणी परिवार की जो श्रद्धांजलि है वो आपके पिताजी के लिए है कि वो जहाँ भी रहे सही रहे, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और बाकी आपके पसंद का गीत हमने प्लेलिस्ट में निकाल लिया है, लीजिए एंजॉय करिए अपना अपनी पसंद का गीत। और आपने आकाशवाणी अयोध्या को कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी

0: कई छोटे से अंतराल के लिए वापस आते हैं, बस कुछ ही पलों में आपकी कॉल के साथ, पर कहीं मत जाइएगा, कॉल लगाते रहिए।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है, सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और 7376 80 40 90 ये वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं इस सफर में। और हमारे कोई श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? जी स्वाति जी, तो आज आपसे मेरी दोबारा बात हो रही है। जी स्वाति, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी कार्यक्रम में?
5: मैम फिल्म का नाम है आशिक आवारा और गाने के बोल में मैंने तैयार कर लिया नहीं करना था, इतराज कर लिया
0: था। तो इस समय तो गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी आपकी तरफ भी?
5: हाँ मैम, गर्मी तो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है तो ये भी बहुत तेज होता है, ये भी बहुत तेज चल रहा है इस समय।
0: जी आपने गीत के बोल क्या बोले?
5: मैम जी के बोल हैं मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था।
0: जी तो स्वाति जी इस समय क्या करती हैं दिन में?
5: मैम इस समय तो नीचे जल्दी से मैम सब काम वाम करके फिर उसके बाद में रेस्ट करते हैं, रेडियो सुनते हैं और थोड़ा बहुत घर में ऐसे सिलाई वगैरह करते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
5: काम काज तो मैम रहता ही है।
0: और गर्मी की छुट्टियों का आगे का क्या प्लान है? चलिए मगर समर वेकेशन में थोड़ा सा तो घूम लाइए बाहर कहीं, क्योंकि यही एक छुट्टियां होती है जो हमें काफी लंबी मिलती हैं।
5: मैम हमको मैग्रेन का प्रॉब्लम है तो मैम इसलिए मैं ज्यादा घूमने नहीं जाती हूँ क्योंकि गर्मी में तो
0: लगता है। सही बात है, ये मौसम आपको काफी सूट नहीं करता होगा।
5: जी मैम, तो मैम गर्मी से थोड़ा ज्यादा हम ओनिंग रहते हैं तो घूमते नहीं है ज्यादा, घूमते ही रहते हैं।
0: तो ठीक है स्वाति, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और बिल्कुल ठीक रहिए, आकाशवाणी अयोध्या सुनते रहिए और लीजिए आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर। कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
5: थैंक

0: कभी खुशी कभी यादें और कभी बस यूं ही बातें, यही तो है इस कार्यक्रम की असली खूबसूरती। और इस खूबसूरत से सफर में आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप डायल करें नंबर 7376804090 और हमारे कोई कॉलर हमसे जुड़ भी चुके हैं। हेलो हेलो जी, आपकी कॉल लग चुकी है आकाशवाणी अयोध्या में। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं सलोनी शुक्ला बोल रही हूँ, दर्शन नगर सुलपुर से बोल रही हूँ।
0: जी सलोनी जी, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगी?
1: ये मेरा गीत है तेरा मेरा प्यार अमर, मैं
0: बोलने तेरा मेरा प्यार अमर। अच्छा लगता है आपको ये गीत
1: जी?
0: क्या करती हैं सलोनी जी?
1: मैम स्टडी करते हैं।
0: स्टडी करती हैं
1: जी।
0: किस क्लास में हैं आप?
1: क्या
0: मतलब पढ़ाई में क्या करती हैं स्टडी में?
1: मैम इस टाइम एमए चल रहा है।
0: एमए चल रहा है, किस सब्जेक्ट से?
1: जी पार्लर भी करते हैं।
0: पार्लर भी करती हैं, मतलब कोर्स कर रही हैं आप ब्यूटीशियन का
1: जी।
0: आपकी पसंद का गीत हमारे पास नहीं है, माफ कीजिएगा। आप कोई और गीत के लिए फरमाइश कर सकती हैं? हेलो
1: जी मैम।
0: जी किसी और गीत के लिए आप फरमाइश कर सकती हैं सलोनी जी?
1: जी मैम।
0: जी तो बताइए।
1: अगर दिल कहे।
0: अगर दिल कहे किस फिल्म का गीत है ये?
1: अगर दिल कहे हमें तुमसे मोहब्बत है, मैम मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं।
0: अगर दिल कहे उसके आगे के भी अगर बोल
1: सपने मेरे बरसे। अगर दिल कहे हमें तुमसे मोहब्बत है।
0: अगर दिल कहे हमें तुमसे मोहब्बत है, फिल्म का नाम नहीं पता आपको? अच्छा, कोरे कोरे सपने मेरे, सूर्यवंशम मूवी का गाना है ये।
1: जी
0: तो सलोनी जी, आकाशवाणी अयोध्या आप पढ़ाई के साथ साथ सुनती हैं? हेलो
1: क्या मैम?
0: पढ़ाई के साथ साथ आप आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम भी सुनती हैं?
1: मैम मम्मी सुना करती हैं, बजा करता है घर पे, मैं भी सुन लेती हूँ।
0: क्या बात है, तो कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको पसंद आते हैं?
1: मैम ये अयोध्या हेलो फरमाइश यही पसंद है।
0: चलिए ठीक है,
1: आप लोगों से बात करती हुई सुनते हैं।
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गीत आपके लिए प्ले हो रहा है, एंजॉय करिए
1: जी। मतलब

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ दीजिए अपने दोस्त नेहा को इस कार्यक्रम से विदा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ तकनीकी सहायक के रूप में रहे अश्विनी कुमार शुक्ला। जीवन से ज्यादा है
1: वादा। अभी श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी।

0: सबंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
3: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओ, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
3: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
3: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
3: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
3: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
3: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
3: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
3: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
3: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
3: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोता

0: और प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like.
2: That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love what the child did.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear.
3: I see a big white bear
2: looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me. As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
6: They are beautiful.
5: They are very big.
4: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?

0: So kids, here comes the song As I Lie. What?
1: As I Lie.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
2: I have seen rainbow.
3: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajender Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से

0: सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने

0: बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
1: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
0: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था।

0: कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।

0: हैं।
1: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मात्री वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे
1: जी। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात्र वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना।
1: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम 101.9 MHz FM बैंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र, प्रातः के 10:30। वक्त है हमारे स्टूडियो से अनुप्रसारित करने का विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का। आइए सुनते हैं।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ ये कि रमेश बैल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को, ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे,
0: हाँ।
1: उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली,
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी,
1: मराठी में
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: हाँ, हाँ। वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हम यार थे फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे,
0: हाँ।
1: एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: बाबा
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूं मैं अभी भी, गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का, वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख लीजिए आप,
0: बाबा।
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग गया डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको किसी बंदिश में रोक रहा हूँ।

0: उन्होंने नहीं सुनो, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ। और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, और गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ, ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्क स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा कह रहा हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया,
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।

0: मैं आपको तो इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके हाँ, सामने
1: हाँ,
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है
1: हाँ,
0: तो आ जाओ घर पे आ जाओ सुबह हाँ, नाश्ता करेंगे
1: वापस
0: और फिर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है कहानी बहुत अच्छी है लेकिन मेरा रोल तीसरा है, अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई ये ना कर देंगे करूंगा तेरे, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं,
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया,
0: हाँ होगी और मतलब ये है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो दिसंबर जनवरी में, तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था, मैं रमेश बैल को बताया कहता है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है बंगला है ना उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया ऐसे, मतलब क्या कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहते मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, ओ आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने जयेश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता ऐसे,
0: हाँ,
1: नहीं
0: ख्याल
1: रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था सब।

0: करवाता था, और एंड तक उसने जब यशजी ने कहा कि पिक्चर करो तो उन्होंने कहा यशजी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा, वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में काम रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा कोने एक्टिंग, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती फिर जज जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है,
1: अच्छा
0: जज जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल है सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

शान की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने

0: कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वाली स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं।

0: और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

फिल्मी गाने आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिसका अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। इस स्टूडियो की घड़ी ने बजाए दोपहर के 12:30। वक्त है हमारे स्टूडियो से फरमाइशी लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। आज है सोमवार और आज के इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों पर जो भी लोकगीत आपने पसंद किए हैं उन्हें लेकर हम हैं उपस्थित। एक निवेदन इसके पहले कि कार्यक्रम को आरंभ करूं, बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं, समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं, सर ऐसा मत किया कीजिए। मेरा मतलब है कि लोकगीतों की अपनी पहचान है, लोकगीतों की अपनी एक वर्गीकरण है। ये हमारे प्राणों में बसते हैं, ये हमारी आत्मा में बसते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तब इन लोकगीतों को सुनते हैं, जब विवाह में बैठते हैं तो लोकगीतों को सुनते हैं। हमारे घर चाची दादी नानी सब हैं जो इन्हें गाती हैं, लेकिन हम इन लोकगीतों के वर्गीकरण नहीं जानते, इन लोक कलाकारों के स्वरों को नहीं जानते, उनके नाम नहीं जानते। और जब लोकरंग में फरमाइशी हम करते हैं तो आप कह देते हैं किसी भी लोकगीत में हमारा नाम सुनवा दीजिए। सर नाम तो आपका जरूर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन कलाकारों के नाम और वर्गीकरण के साथ अगर आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रतिदिन 5:30 पर लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम होता है, जिसमें हम उस लोक विधा का नाम भी बताते हैं। चैती है, बन्ना है, सोहर है, नकटा है, और कलाकारों के नाम भी, आप उन्हें भी स्मरण रखिए ना, और उसी तरह फरमाइश कीजिए, क्योंकि यह फरमाइशी लोकरंग हमने अपनी लोक विधा को संजोने के लिए किया है। यह हमारी अनूठी पहल है और इस छोटी सी विनती के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम लोक रंग। जो फरमाइश आई है मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। उन्हेल जिया उज्जैन मध्य प्रदेश के, भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। ये है अंभई सिल्लोड़ के जी छत्रपति संभाग।

बालाजीनगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, विष्णु मिस्कीन ने रितिका मिस्कीन, वानी अराव, चंद्रकाला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही और प्रियांशी सोनी के साथ ये नाम भेजा है हमें। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र के, रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, उत्तम कुमार बघेल, रुखमानी बघेल, साहिल और भारती बघेल के साथ लदान पंडियारा छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये फरमाइश भेजी है। एक और फरमाइश हमारे पास है, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव, नारायण लाल साहू, कुलवंतन देवी साहू, यशोदा देवी साहू, नेहा देवी साहू और डीलेश्वरी देवी के साथ रजनी देवी साहू ने भेजा है हमें फरमाइश। आप सबकी फरमाइश पर पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं ये लोकगीत। कार्यक्रम का नाम लोकरंग है। आप फेसबुक पेज और हमारे व्हाट्सएप पर भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।

0: पन्ना लाल शर्मा की आवाज में ये ब्रज गीत सुन रहे थे आप लोक रंग कार्यक्रम में आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक छोटा सा अंतराल, आते हैं अगले लोकगीत के साथ।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। ट्यून किया आपने 101.9 मेगाहर्ट्ज। और अब अगले लोकगीत के लिए जो फरमाइश भेजी है या लोकगीत जो हम सुनवा रहे हैं उसमें जिनके नाम शामिल कर रहे हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। मोताला महाराष्ट्र, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लिखा है किसी भी लोकगीत में हमारे साथ बाध्यता है कि कोई लोकगीत सुनवाना है, लेकिन आप मैं निवेदन करूंगा कि लोकगीतों के लोक कलाकारों के नामों को स्मरण करें और वर्गीकरण को भी याद करें। इस तरह हमें फरमाइश भेजें तो इस लोक रंग का रंग कुछ और निखर के आएगा, क्योंकि लोक आप हैं, इस रंग को निखारने की जिम्मेदारी आप पर है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम सुरलकर का हमारे पास संदेश है। संदेश ये आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के PS नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, पेपर पारा पालचुआ मुंगेली, छत्तीसगढ़ के उत्तरा दिवाकर, परमेश्वर दिवाकर, भानप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर, रघुवीर नगर के दिलावर खान, हसीना मानो, एलिजा नायाब और लड्डू। ये आया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू का, कंवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश के प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने लिखा है। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश के कल्याण सेन, पुष्पा सेन, नितिन सेन और जतिन सेन की फरमाइश। दंतरेगी भाटापारा में छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ये आया है जो संदेश, इस संदेश को पढ़ने के लिए नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान के लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। ज्योति नगर नोखा राजस्थान के पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। लोकरण कार्यक्रम में कोई भी लोग, ये चलिए आपका नाम ले लेते हैं। सदर बाजार कुरावली के अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने लदावली जिला मुरादाबाद से हमें भेजी है फरमाइश। फरमाइश आई है हमारे पास कृष्णा पार्क दिल्ली के सुखविंदर जी की, और ये है लोकरंग में। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सुखविंदर सिंह चौड़ा जिनका नाम मैंने लिखा था, कृष्णा पार्क दिल्ली से सिटी दीवाना के साथ। एक और नाम शामिल कर लेते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर और विविधा बंडलकर। ज्यादातर श्रोता इसमें हमारे बड़े नियमित श्रोता है और आश्चर्य होता है आप नियमित श्रोता होकर आप हमारे कलाकारों के नाम के साथ फरमाइश के अपने लोकगीत भेजिए। तो भाई ये फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम है, किसी भी गीत में अगर सुनवाना होगा तो आपके नामों को। तो हम लोक संगीत कार्यक्रम प्रतिदिन 5:30 बजे करते हैं, आप उसे सुनिए ना, लोकगीत आपको वहां सुनने को मिल जाएंगे। नाम सुनने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा श्रम ना सर। चलिए एक नकटा हम आपको सुना रहे हैं अनीता श्रीवास्तव और सखियों की आवाजों में। नकटा भारतीय पारंपरिक लोक शैली का वो गीत है जहां पर रिश्तों की छेड़छाड़ बड़े ही मनोहारी ढंग से की जाती है, यानी कि उस छेड़छाड़ में एक शिकायत होती है, एक शिकवा होता है, एक टीस होती है, लेकिन उसे सुनने के बाद नाराजगी नहीं, एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, क्योंकि ये भारतीयता की वो खुशबू है जो हमारी आत्मा में बसती है। नकटा कहते हैं इसको।

रिश्तों की परिभाषाएं गढ़ते हुए हमारे वो लोकगीत जिनकी फरमाइश करने की हम आपसे गुजारिश करते हैं लोक रंग कार्यक्रम में आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र सोमवार के दिन 12:30 बजे करता है प्रस्तुत। आधा सफर अभी बाकी है, अगले लोकगीत की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ नाम। संबलपुर कांकेर के फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, विनोद कुमार यादव इंग्लिश फरक्का भागलपुर बिहार से, जलालाबाद वेस्ट के सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ये है छिंदवाड़ा बीरसी नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से और मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा, लाहौड़ा जिला बागपत के जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, सुधीर नूतन, प्रयारी पोती भुवनेश्वरी देवी, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान ने भकर पंजाब पाकिस्तान

की तरफ से सलाम करते हुए हमें भेजा है। चलिए साहब आपका सलाम कबूल कर लेते हैं। डॉक्टर बनवारी, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, गांव आरायन, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान के हैं। आप सभी ने सुनना चाहा है लोकगीत भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परियार, नंगलखेड़ा, फगवाड़ा, पंजाब के बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनि शर्मा, राहुल शर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी, अलोट, जिला रतलाम, एमपी के जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी पलोमा, कटरा, चांद खां मौर्य, मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर, बरेली के अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू और आरोही के साथ स्वाति का नाम इन्होंने लिख दिया है। अब स्वाति सुन रही होंगी तो जरूर हमें रिप्लाई करेंगी। बहरहाल ये आया है जो अगला है, गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। अशोक सिंह ने हमें भेजा है सुनीता सिंह के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से, और ये है सनावत के शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, एकता कॉलोनी रोहतक के सीताराम कांगड़ा, बबीता कोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी कोट, मुजफ्फरपुर बिहार की मुन्नी कुमारी और रचना कुमारी, नंदनी कुमारी और चांदनी कुमारी के साथ न केवल संदेश भेजा बल्कि गुलाब का फूल भेजा है। भाई गुलाब का फूल मत भेजिए, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, डिजाइन मत बनाइए क्योंकि आपका नाम ही अपने आप एक डिजाइन है। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोकरंग में अपनी फरमाइशें भेजिए, लोक कलाकारों के नाम और किस विधा का लोकगीत सुनना चाहते हैं वो अवश्य भेजिए। ये लिए एक नकटा हमने और भेज दिया आप।

प्यार भरे रिश्तों की होती है एक पहचान, जब माटी से जुड़े हुए खुशबू उड़ाते हुए आते हैं अपने लोकगीत। ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल के साथ दिव्यांश बघेल और विमलेश पाल का नाम लिखा हुआ ये संदेश आया है। मारहरा दरवाजा, एटा के नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी।

नवेद हसन अब्बासी, अशरफ अब्बासी, रसीद अब्बासी, हुसैन असन अब्बासी, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं के सोमेंद्र यादव और पुष्पेंद्र यादव, पद्मा टाकी जी नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमें फरमाइश भेजी है, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह ने मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह के साथ जनकपुरी सहारनपुर के जॉन डिकॉस्ट्री, रोजी डिकॉस्ट्री, पर्ल डिकॉस्ट्री और विलिस डिकस्ट्रो, अच्छा वो डिकस्ट्री के साथ डिकस्ट्रो पता नहीं लिखने में गड़बड़ हुई या मेरे पढ़ने में मुझे नहीं पता, बट मुझे यही लगा आप सब की फरमाइश पर अगला लोकगीत हम भेज रहे हैं सरला गुप्ता की आवाज में।

लोकरंग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं उस मोड़ पर जहां पर इस नकटे के लिए फरमाइश में नाम पढ़ देता हूं मैं, गोरखपुर के रणजीत यादव का। इन्होंने भी लिखा था किसी

0: इनकी जिठनियां तो इनसे ताबेदारी कराती हैं, मगर रिश्तों की इस मिठास, इस खुशबू को शायद आपने महसूस किया हो और उस निवेदन को भी शायद आप स्वीकार कर लें और अगली बार लोक रंग के कार्यक्रम में हम आपकी ही पसंद के सच में अगर लोकगीत सुनवा पाएंगे तो हमारे फरमाइशी लोकगीत का जो हमने एक कल्पना की है वो सार्थक होगी। अब ये सब आपके हाथों में है क्योंकि आप हमारे बड़े प्यारे और रेगुलर श्रोता है। फिलहाल तो लोक रंग से दीजिए अनुमति, लेकिन एक प्रोग्राम से अनुमति लेने का मतलब होता है ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, यहां आपकी फरमाइशों का सिलसिला बदस्तूर जारी ही रहता है। तो लोक रंग के बाद क्या कुछ तुमने कहा, जी आपने कहा, यानी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है शुरू। तो क्या करें, पहले नगमा सुना दें या फिर पहले आपके नाम पढ़ दें? कुछ नहीं करते हैं, एक आइडिया है मेरे पास और मेरे आइडिया बड़े खतरनाक होते हैं। मैं एक अंतराल ले लेता हूं, यह सबसे बढ़िया है, रुकिए यह बेहतर है, मैं करता हूं इसको डेंग डेंग।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101।

0: 101.9 आकाशवाणी अयोध्या जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: कुछ तुमने कहा कि फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम पढ़ना शुरू करता हूं बगैर किसी के। मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ये है दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड के मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू हैद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। ये मोताला महाराष्ट्र के, फिर एक बार में दो बार कर दिया। चलिए सर आपकी मर्जी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार के विनोद कुमार यादव के भी हमें मिल गए। नई दिल्ली टैगोर गार्डन के रविंद्र सिंह छाबड़ा साहब का है संदेश। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, दर्द और समस्त मालवीय परिवार। ये है छिंदवाड़ा बिरली नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, हर्षित लाम से, इन्होंने भी दो बार कर दिया है। ठीक है, करते रहिए सर, नंबर बढ़ जाने से दो बार नहीं पढ़ूंगा, एक ही बार पढ़ूंगा। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा के राधे श्याम वर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढिंगिया का है संदेश। ये संदेश है किशोरनगर अमरावती के हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुंडानी का। आ जाओ भाई, कौन है आप साहब? रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर के राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, एक ही नाम लिखा है। जसपुर उत्तराखंड के रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहाना, समरीन परवीन, माहिरा नूर, राज पैलेस, मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ के मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये भेजा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार के फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण जोहानुदा होदा ने। जसपुर उत्तराखंड के रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब का ये संदेश था। ये संदेश है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव का। हमारे दिन को शुभ करने की शुभकामना के साथ बेनीपट्टी मधुबनी बिहार के अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमार का संदेश। संदेश आया है कमर कॉलोनी बड़डा खरगोन एमपी के प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का। संजय साहू, सुजाता साहू, सीमा साहू, शशांक साहू ने हमें ये संदेश भेजा है पुटिया कला दुर्ग से। जम्भई, तासिल्लोड़, छत्रपति नगर, संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्रजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, साहू नगर यवतमाल के राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर के साथ रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, ढानकी रोड उमर खेड़ महाराष्ट्र के भाई रज्जा खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा परवीन, आसिया परवीन। और ये है मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई वंदेवी, आकाश माश्री, विनायक और समस्त मालवीय परिवार, आप सभी की फरमाइश पर भेज दिया हमने वो नगमा जिसकी की है आपने फरमाइश। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की है आवाज, आनंद बख्शी ने लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। म्यूजिक से आप समझ गए फिल्म का नाम है रोटी और क्या गाना है।

कुछ तुमने कहा। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के अगले नगमे की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है उनके नाम हम आपको अब बताने जा रहे हैं। भाई हमारे ये वो श्रोता हैं जो बड़े ही नियमित हैं और नियम से ये भेजते हैं, बगैर कुछ भी हो जाए तो इनकी फरमाइशों का हमें रखना होता है ख्याल, और इसीलिए हम इन्हें करते हैं शामिल अपने उस कार्यक्रम में। नाम है जिसका कुछ तुमने कहा। ये आगे मानपुर साबित जिला मुरादाबाद के शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, ये नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा नमस्कार बहुत तेज करते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर, जूही द्विवेदी और समस्त द्विवेदी परिवार, पोस्ट सुहावल जिला अयोध्या के, अरे रे रे रे इन्होंने बहुत तारीफें कर दी हैं। खैर जूही द्विवेदी और समस्त द्विवेदी परिवार का नाम मैंने ले लिया है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र, बन्ने बुजुर्ग, पलेमा, टीकमगढ़ के ब्रिजेंद्र।

विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, आप कैसे हैं? हालचाल पूछने वालों का शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं बता सकता मैं कैसा हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोगों से बातें कर रहा हूं ना इसलिए। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, मालवा रेडियो श्रोता संघ, गुलाब लोध, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश के विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई वनदेवी, आकाश माश्री विनायक और समस्त मालवीय परिवार, हयात कॉलोनी अररिया बिहार के फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुद हुदा, ये है अटल रेडियो श्रोता सांकरा, जिला राजनांदगांव, नारायणगांव, सुख, कुलवंती देव साहू, देवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय साहू और रुद्रांश प्रताप साहू, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और मनीषा येले, और मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ के दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली, जिला बरेली के शहरू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरेसी, मोहिनी इमरे अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, कस्बा बराल, जिला अम्बाला, हरियाणा के रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर और प्रियंका का नाम भेजा है, आप सभी की फरमाइश पर भेज देते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये दो गाना।

0: तुमने कहा, जरूर कहा, और आपकी फरमाइश भी तो सुना रहे हैं हम ये फरमाइशी फिल्मी गाने। एक अंतराल लेते हैं ना, आते हैं बस अभी कुछ सेकंड में।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
0: सुनिए।
3: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: कुछ तुमने कहा, ये किसने कहा? सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने धन चंडीगढ़ से कहा और ये भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भी कहते हैं। और कुछ कहने की बात करते हैं तो फिर आ जाते हैं ये नलेश्वर नगर नलवन महाराष्ट्र के नवाकर फैमिली, निर्मला विशाल मलाकपुर के नारायण इंगले, राजमार खर्चे आशीष मुरहेकर, सांगली जिले के जात शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत, किरण हुजरे और रेहान शेख हैं। ये है नाम किसका? संबलपुर कांकेर के फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, कस्बा उगहेती से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर गोविंद गुप्ता और डीके हिटलर, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, इनकी धर्मपत्नी महेश्वरी देवी, किसी भी गाने में शामिल कर लेंगे साहब, कर ही लिया है सर, मैं क्या करूं, आप लोग ऐसे लिखेंगे, आपके प्यार को कैसे इग्नोर कर सकता हूं। सहारनपुर के राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा, और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। मंसूरी रेडियो रेसलर क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर के मोहम्मद जाकिर मंसूरी।

अल्पी वाले और ये है खेल बाजार पानीपत के नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयला मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी रिश्ते भी लिख देते हैं आप लोग, ठीक है। शिवाजी कॉलोनी रोहतक के पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का, विष्णु मिस्कीन और रतिका मिस्कीन के साथ वानी, चंद्रकाला, गणेश, काशीनाथ, संगीता और आरोही और प्रियांशी सोनी का दयानंद कॉलेज भवानीपेट सरोलापुर महाराष्ट्र से है।

भवानीपेट सरलापुर महाराष्ट्र से है। ये है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर के सईद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अवान और अब्बासी परिवार, लाल कुर्ती रोड रुड़की कैंट के राजेश वर्मा। और ये आया है साहब बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ के नरेन नेताम और कुसुम नेताम का, उज्जैन बोरखेड़ा के विनोद मुड़त, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब के बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मुनीष शर्मा। अगली फरमाइश जिसकी है उनके नाम है रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुण वर्मा, जमनिया जिला गाजीपुर के सुरेश जायसवाल और ये हैं बेरड़ी मध्य प्रदेश के हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, दंतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के बड़े नियमित सुना, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, कोहा भुलाई छत्तीसगढ़ के प्रताप पांडे और रेखा पांडे, भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, जवाहरनगर दुर्ग के आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी यानी लालिमा साहू, खुशान साहू, निशान साहू ने हमें लोहरी डीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है, भोजपुर तगा सहारनपुर के मोहम्मद इंतजार और मंजनू का टीला के कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सब की फरमाइश पर भेज दे रहे हैं हम आपको फिल्म फर्ज का वो गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: कुछ तुमने कहा कि अगली फरमाइश इसी गीत के लिए है जिसकी म्यूजिक आपने सुनी। जी समझ गए, मगर पहले नाम ले लेता हूँ। उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमला रानी, रितिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ये हैं कोका भिलाई छत्तीसगढ़ के प्रताप पांडे और रेखा पांडे। भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, जवाहरनगर दुर्ग के आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी यानी लालिमा के साथ खुशांत साहू और निशांत साहू का हमारे पास ये है संदेश। भोजपुर तगा सहारनपुर के मोहम्मद इंतजार, ये है कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, सतना एमपी से, चांपा छत्तीसगढ़ के, सर इनका नाम ही नहीं आ रहा, सॉरी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अरे बड़े डिजाइनर लिख दिया साहब, ऐसा मत कीजिए, गजब परीक्षा ले रहे हैं का आप हमारी। डॉक्टर बनवारी जयपाल, विमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल, गांव आरायन, जिला श्रीगंगानगर के हैं ये। एक फरमाइश मुरादनगर, जिला करनाल, हरियाणा के रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज हैं। गांव बांडी वाला फजिलका के ओम बागड़िया हैं और राम सिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान के अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल और मनु राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू और ये है बाघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव,

समर्थ और शौर्य नामदेव, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर ने चदौरा चरौदा बार नवापारा जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमें भेजा है फरमाइश। गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब के सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, ये है किसका, पद्मा टाकी, नेपाल नगर, नेपा नगर, मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि और अश्वनी शाह के साथ मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदारा, दिल्ली के तुलसी मिस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ के राहुल, रचिता खुराना और शंकरपुर पोस्ट उस्मा जिला बदायूं के सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, ये कौन है साहब, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड के उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश और दिव्यांश बघेल, कटरा चांद खा मौर्य, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली का नोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेंद्रा मौर्य, कैलाश और सुनील मौर्य, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा के सैयद यूनुस ने अकेला अपना नाम लिखा है, ये बात है, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ के रामचंद मखीजा काफिर ने लिखा है, और चर डोगरी पेपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, शिव कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, आप सबकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है।

भाई इनके दिल का चैन तो आएगा, ये तो है हमें पता, मगर अब किसका नाम आएगा। जिन्होंने भेजा है हमें फरमाइश हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर, तो चलिए मैं उनके नाम बताता हूँ अगले नगमे के लिए। गांव खोखरा वाली विनोद बारसा ने भेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने भेजा है, ये है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी का, बीड शहर महाराष्ट्र के नंदकिशोर घाटे, अंजलि करवा बाला साहब करवा, ये है जी छुरी छत्तीसगढ़ कोरबा के लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मुन्नू, काना ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर। रविंद्र मोहन दास ने किशनगंज बिहार से भेजा है और साथ में लिखा अपनी पत्नी आशा देवी का नाम, गांव भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर का है नाम, ये आया है ग्राम देवाड़ तहसील पूर्णा महाराष्ट्र के सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात, रंजीत थोरात का, बटिंडा रोड मंडी डबवाली के राजेंद्र नागर, अंजू नागर और मोहित नागर के साथ तानिया नारंग का है ये नाम है, भाटपारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी का, वटिंगखेड़ा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा कोड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान और ये है संदेश, देवरी भाटापारा के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय ने, रामगढ़ कैंट के महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का है हमारे पास संदेश। संदेश आया है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और मोहम्मद फरमान सलमान और इरफान के साथ इसरार और नासिरा खातून का है ये हमारे पास संदेश, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। गुजरात गांधी ग्राम के प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी ने हमें फरमाइश की गांव फरासी जिला हिसार के राजकुमार डुडी ने, नई गंज बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौफीक हाशमी, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, कस्बा उगैती देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता के साथ निर्भय गुप्ता और ये है फरमाइश। मालवा रेडियो श्रोता संग्राम हिंगड़ी आलौट जिला के रतलाम एमपी के जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन याशमी और शमसुल कमर राही के साथ। अगले नगमे के लिए ये जो फरमाइश आई है अंगूरी बाजार के हमारे राजकुमार कारुस, उनके मित्र हैं अमित मिश्र, संदीप मिश्र और बुलंद शहर से संत सिंह, आप सबकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं वो नगमा जिसे लिया है हमने फिल्म प्रेम पुजारी से, आवाज किशोर कुमार की और गीत को लिखा है गोपाल दास नीरज ने।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस...
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। ग्राम लसुड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी। ये है बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ के रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश, भाव्या देवांगन। लखनपाल ने हमें संदेश भेजा गांव रावर, जिला करनाल से। और ये है मालवा रेडियो श्रोता संगमना, ग्राम गुलबालोद, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश के कुंवर।

गोपाल सिंह ने। और ये जो आया है संदेश, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बना बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, रखवीर, रानी कृष्णा, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू, गुड चटकू मटकू का भी नाम लिख दिया इन्होंने, मैंने बोल भी दिया। और ये हैं सदर बाजार कुरावली के अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, सदाबहार नगमा सुनने के सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, फातिमा मंसूरी ने बांदा यूपी से फहीम मंसूरी के साथ भेजा है अपना नाम भेज रहे हैं बक्सर बिहार के शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार के डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा। और ये है सादुल नगर राजस्थान के रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गुरमीत सिंह मीता ने भेजा है नई दिल्ली से हमें अपना संदेश। संदेश में रेलवेगंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन कुमार गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन और नथाना पंजाब के हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और ये फरमाइश आई है अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। ये है किंग रेडियो श्रोता संघ बना गणेशपुर गंग डुंडवारा एटा मध्य उत्तर प्रदेश में, फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान, तोड़ तोड़ के इन्होंने नाम लिखा, तोड़ तोड़ के मैंने पढ़ दिया। कदमा जमशेदपुर के शिवांश मंडल, चिन्मय महतो, माधव नामदेव, सीमा नामदेव ने हमें भेजा जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश। फरमाइश आई है गांधीनगर सेक्टर 2 गुजरात के जीके परमार, ज्योत्सना और हर्षल का। और ये देखिए गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी और चांदनी कुमारी। ये है किसका नाम है, ये है ग्राम पजौनिया जिला जालौन के सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, आप सब की फरमाइश पर हम भेज दे रहे हैं फिल्म हीरा का वो दो गाना जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी का, माफ कीजिएगा, इंदिवर साहब का लिखा गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। गीत तो ऐसा है जिसको सुनते ही न जाने क्या क्या याद आ जाता है, क्योंकि अब स्मरण में ही है ये सब। ये वो दौर है जब

भाई ये तो किससे भी मिलने गई हूँ, मगर हमारे पास जिनके संदेश है उनके नाम है भेगड़ा घाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, सुनीता सिंह, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी ने पिंगा वाला चौक गोराय जालंधर से हमें भेजा है ये संदेश। संदेश आया दुर्गा कॉलोनी हांसी के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। जय जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ बना परभड़ी महाराष्ट्र में रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और संघई परिवार ने अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान की फरमाइश है। फरमाइश आई है हमारे पास गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा की। ये फरमाइश है ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आकोट विनायक, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिए के संजीव डाबरेवाल। एक और फरमाइश आई हमारे पास रश्मि झरना और भरत कुमार की राजकोट गुजरात से। अजीत कसाना ने लदावली जिला मुरादाबाद से हमें भेजी है फरमाइश। झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया ने भेजा है। ये है छत्तीसगढ़ जिला धमतरी के चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिफा और शेफाली, एकता कॉलोनी रोहतक के सीताराम कांगड़ा, बबीता कोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी कोट, पुराना तालाब डुमराव के वलीउल्लाह अंसारी और डेर पाटन गुजरात के धीरज वीरवारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मेलोत्रा, रितिका मेलोत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह के साथ डॉक्टर अमनदीप, ग्राम टोरोवाल नवांशहर पंजाब के गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी और प्रियम थांदी। ये है हिंगोली महाराष्ट्र के शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के और हनुमान बोर्ड के, रावर करनाल के ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और साहब तात मंजिल, लक्कड़ बाजार खंडवा के मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार और बहुत सारे इनके दोस्त, कृष्णा पार्क दिल्ली के सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना, छत पर संभाजी नगर के राजेश साबले पाटे, राजदीप राजेश और दोस्त इनके, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री ने ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हमें भेजा है। पाकुड़ झारखंड के बड़े नियमित श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु ने, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। और ये पसंद आई है एम जी, ये आया है हिंदराज रेडियो श्रोता संघ, अहिल्या नगर, तालुका निवास, खोपड़ी महाराष्ट्र के बंटू लुहार, पोपलघाट, माया प्रियांश, चंद्रकला पोपलघाट का, मोहम्मद फरमान, सलमान और इरफान का है ये। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल और सीमा और मोहम्मद हफीजुर्रहमान हबीब मलिक ने भेजा है हमें ये ओरिजिनल सॉन्ग, कहते हैं सुनवाई, ओरिजिनल ही सुनवाते हैं सर। सागर लखना दौन मध्य प्रदेश के लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। और जबकि एक बार फिर भकर पंजाब पाकिस्तान से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खबीलील मलिक और अली रहमान, आप सब की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं शिवांगी कोल्हापुरे और किशोर कुमार की आवाज में ये दो गाना। फिल्म का नाम लूट मार, लेकिन गाना दिलों को लूटने वाला। गुनगुनाइए इस गाने को, क्योंकि आप सुन रहे हैं कुछ तुमने कहा।

कुछ तुमने कहा का सफर यहीं तक। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र, बजे हैं आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में दोपहर के दो, और ये वक्त है हमारे स्टूडियो से गीतांजलि कार्यक्रम का। गीतांजलि यानी कि फिल्मी गीतों के अलावा अब बात होगी गैर फिल्मी गीतों और गजलों की। तो आइए नोश फरमाइए। एक खूबसूरत सी गजल मोहम्मद वकील की आवाज है और ये गजल शरारती हूं इसलिए मुझे दिल से पसंद है। अदायगी बोल संगीत, क्या कहूं, आप भी

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: भला गमों से कहीं हार जाने वाले थे, भला गमों से कहीं हार जाने वाले थे, हम तो आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे। भला गमों से कहीं हार जाने वाले थे, हम तो आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे। अरे हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत से लोग आने वाले थे।

0: गीतांजलि कार्यक्रम में सुन रहे हैं आप कुछ गजलें।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
0: शर्त लगी है चेहरे की चांद से, शर्त लगी है चेहरे की चांद से, देखें छुपता है कौन शर्मा के आज की रात।

0: उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इस गजल के साथ ही संपन्न होता है हमारा गीतांजलि कार्यक्रम।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz पर। हमारा ये प्रसारण हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे समाचार। समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5

0: नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडसेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियमम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक

मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है।

0: लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में

0: 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने किया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं और आज सोमवार है। हमारी ग्रामीण महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अंगना।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161-877-347।
2: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
5: कार्यक्रम लेके अंगना हाजिर है आपके रेडियो सखी वंदना। कार्यक्रम सुनने वाली सगर सखियन का आपके रेडियो सखी वंदना गुप्ता के प्यार भरा नमस्कार। बहनी, आज हमरे सब ही एक बहुत ही जरूरी विषय पे बात करब, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पे। ये दिवस हर साल 18 मई का मनावा जात है। ये दिन का मनाए के मकसद है कि लोगन का एड्स जैसन खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी मिले और वैज्ञानिकन के उ मेहनत का सम्मान मिले जो लोग एड्स की वैक्सीन बनावे खातिर दिन रात मेहनत करता है। बनी, आज के जमाना में जानकारी बहुत जरूरी है। जौन आदमी जागरूक रहा थी अपने परिवार और समाज का सुरक्षित रख सका थी। तो बनी, आज हम चर्चा करब कि एड्स का है, ये कैसे फैलत है, का बचाओ और वैक्सीन

0: काहे जरूरी है। तो सबसे पहले जान ले कि एड्स का है। एड्स के पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बीमारी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर कह देत है। जौन वायरस ये बीमारी फैलावत है उका एचआईवी कहा जात है। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जात है तो धीरे धीरे शरीर की ताकत कम होने लागत है। अब बहनी सवाल ये उठाता है कि ये बीमारी फैलत कैसे है। तो बहनी एड्स छुए से, साथ बैठे से, खाना खाए से, हाथ मिलावे से, गले लगे से या एक बर्तन इस्तेमाल करे से ना ही फैलत। ये फैलत है संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित शारीरिक संबंध बनावे से, संक्रमित खून चढ़ावे से, एक सुई या इंजेक्शन कई लोगन द्वारा इस्तेमाल करे से और संक्रमित माँ से बच्चा माँ। अगर हमरे सभी सावधानी बरती तो ये बीमारी से बचा जा सकत है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और बहनी आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एड्स के वैक्सीन बनावे खातिर मेहनत करते हैं। वैक्सीन मतलब वो दवा जो बीमारी होए से पहले शरीर का सुरक्षा देत है, जैसे पोलियो, चेचक और कोरोना की वैक्सीन बनी। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 1998 में मनावा गया रहा। इस दिवस की शुरुआत अमेरिका से भई रही। धीरे धीरे पूरी दुनिया इस अभियान से जुड़ गई। वैज्ञानिक नई तकनीक और नई दवाइयों पर काम करते हैं। एक दिन जरूर वैसी वैक्सीन बन जाए जो एड्स का पूरी तरह से रोक दे। और बहनी माता पिता का भी चाहिए कि अपने बच्चन से खुल के बात करें। कई परिवारन माँ इस विषय पर बात करे से हिचकिचात हैं, लेकिन चुप्पी समस्या बढ़ावत है। सही शिक्षा, सही जानकारी बच्चन का सुरक्षित रख सकत है। हमार सरकार भी एड्स रोके खातिर कई अभियान चलावत है। अस्पतालन माँ जांच केंद्र बनावे का। बहनी अब बात करा बचाव के कुछ जरूरी उपाय के। तो सबसे पहले हमेशा सुरक्षित संबंध बनाई। दूसर, खून चढ़ावत समय जांच किया भवा खून ही इस्तेमाल करें। तीसर, नई सुई और इंजेक्शन के ही इस्तेमाल करें। और चौथा है, समय समय पर जांच करावत रहें। और पांचवा, नशा और गलत आदतन से दूरी बनाएं। बेनी बीमारी से लड़े मां डर नहीं, जानकारी जरूरी है। जैसे अंधेरा मां दीपक रोशनी देत है, वैसे ही जागरूकता समाज का सुरक्षित बनावत है। तो आज हमरे सभी इस संकल्प ले कि हम एड्स के बारे में सही जानकारी फैलाएं, गलत फहमी दूर करब और मरीजन के सम्मान दे। अगर समाज एकजुट हो तो जरूर हम एड्स जैसी बीमारी पर विजय पाए सकित है। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करत हैं। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपन जीवन दांव पर लगाए के समाज के सेवा करत हैं। हम सबका चाहिए कि उनका सम्मान करी और स्वास्थ्य नियम के पालन करी। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमका ये संदेश देत है कि उम्मीद अभी जिंदा है। विज्ञान लगातार आगे बढ़त है। अगर पूरा दुनिया मिल के प्रयास करी तो जरूर एक दिन एड्स पर पूरी जीत हासिल हुई। आज के दिन हमरे सभी मिलके प्रण ली कि हम जागरूक रहब, दूसरन का जागरूक करब, भेदभाव नहीं करब, सुरक्षा नियम अपनाएं और स्वस्थ समाज बनाएं। इका बनावे मां अपन योगदान देब। और बस अब तो इतने कहब कि जानकारी ही बचाव है, सावधानी ही सुरक्षा है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। और बेनी सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। और जब हमार सखियां स्वस्थ रही हैं तब है घर द्वार की देखभाल भी कर पाई हैं। और देखो कुछ समय के बाद मां शरीर में कुछ बदलाव हुए लागत है, जैसे पेरीमेनोपॉज। ई औरतन मां होए वाला वो समय है जब धीरे धीरे महीना जी का पीरियड कहते हैं बंद होए के तैयारी शुरू होत है। आमतौर पर 40 से 50 वर्ष की उम्र में ये बदलाव आवत है। तो आज अपन कार्यक्रम में यही विषय पर एक भेंट वार्ता लेके आएना है, पेरीमेनोपॉज के संकेत, लक्षण व उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर ज्योति सिंह, भेंट करता है प्रज्ञा मिश्रा। तो चलो सुना जाए ये भेंट वार्ता।
1: मैं 30 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में अनेक तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ शारीरिक बदलावों और उनसे होने वाली समस्याओं को भी फेस करना पड़ता है। खास तौर पर माहवारी से संबंधित समस्याएं होती हैं। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति सिंह, जो विस्तार से पेरीमेनोपॉज के बारे में जानकारी देंगी।

0: डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: देखिए, अगर हम किसी भी महिला के पूरे जीवन काल को डिवाइड करें या विभाजित करें तो चार मुख्य अवस्थाएं होती हैं। बाल्यकाल, किशोरावस्था, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि वो अवस्था जिसमें कि वो माँ बन सकती हैं, और उसके बाद आता है मेनोपॉज यानी कि जब उनकी माँ बनने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। तो पेरीमेनोपॉज एक परिवर्तन वाली अवस्था होती है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से मेनोपॉज के बीच का समय होता है।
0: ये लगभग किस उम्र से किस उम्र के बीच का समय है?
1: देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड आयु या समय अवधि नहीं है। यह महिलाओं में अक्सर 35 साल के वर्ष से शुरू होता है और जो कि 50 वर्ष की उम्र तक रह सकता है, और सभी महिलाओं में इस अवधि का समय अलग होता है, भिन्न होता है।
0: और जैसे आजकल बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि पेरीमेनोपॉज जो है वो मेनोपॉज जैसा ही है, या इन दोनों में कुछ भिन्नता भी है?
1: देखिए, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज दोनों भिन्न हैं। पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज से होने वाली पहले की अवस्था है जिस दौरान महिला के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव यानी कि जो प्रजनन वाली उसकी क्षमता होती है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन मेनोपॉज में वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है यानी कि वो हार्मोन्स शरीर से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो अगर हम आपको जैसे और विस्तार पूर्वक इसके लक्षणों के बारे में बताएं, तो जैसे आप सभी जानती हैं कि किसी भी महिला में हर महीने मासिक चक्र आता है जिसकी कि हर महिला के लिए एक फिक्स्ड अवधि होती है, मतलब कितने समय के लिए उसे आना है या कितने कितने समय पे आना है। अक्सर इसकी अवधि 28 से 30 दिन की होती है यानी कि 28 से 30 दिन के अंतराल पे वो मासिक चक्र आता है। लेकिन जब पेरीमेनोपॉज की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो यही होता है कि मासिक चक्र उसका अनियमित हो जाता है, यानी कि वो हर महीने ना आकर दो दो तीन तीन महीने के अंतर पर आ रहा है। ब्लीडिंग भी सामान्य ना होकर तेज भी हो सकती है या धीमी भी हो सकती है। तो इसका सबसे पहला लक्षण अनियमित माहवारी होती है।
0: तो ये क्या एक महीने से पहले भी हो सकता है कि एक महीने में दो बार हो जाए या लेट होकर के ही?
1: पहले कुछ मैं इसका कारण आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर का जो मासिक चक्र है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन हमारे अंडकोश में बनता है यानी कि ओवरीज में बनता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ओवरी के जो अंडे होते हैं वो हर महिला में सीमित होते हैं, और जब ये समाप्त होने लगते हैं तो जाहिर सी बात है जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे शरीर में कम होने लगती है। तो ज्यादातर 90% महिलाओं में इसकी अवधि बढ़ बढ़ के ही आती है। लेकिन कभी जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे केसेस में कभी कभी ये जल्दी भी आने लगती है और ब्लीडिंग भी सामान्य से ज्यादा होने लगती है या फिर कम होने लगती है।
0: जी, और जैसे जब ये समय होता है इस दौरान हमारी जो बहनें हैं उनको किस तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है?
1: देखिए, अनियमित माहवारी के अलावा उनको और भी कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस एक बहुत आम समस्या है। हॉट फ्लशेस का अर्थ है कि अचानक से महिला को लगेगा बहुत तेज गर्मी लग रही है और फिर वो धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। रात में अक्सर सोते टाइम उनको बहुत पसीना आएगा, बहुत गर्मी लगेगी। मानसिक बदलाव भी काफी सारे होते हैं, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, जल्दी गुस्सा आने लगता है, या कभी कभी वो अवसाद या डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। उसके अलावा योनि मार्ग होता है यानी कि जो वेजाइना होता है उसमें भी काफी ड्राइनेस आ जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही फीमेल हार्मोन होता है जो कि इन सारी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, और उसकी कमी के कारण उसका जो वेजाइना होता है वो भी काफी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी खुजलाहट या फिर इचिंग की समस्या होने लगती है।
0: जी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ईचिंग के दौरान ब्लड भी आ जाए?
1: जी, इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि एक जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, कहने का मतलब है आप अगर फीमेल्स की जो बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो जो योनि का रास्ता होता है वो हमारे मल वाले रास्ते से और यूरिन के रास्ते के बहुत पास होता है। तो जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर खत्म हो जाता है यानी कि बचाव की एक फिल्म जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और कभी कभी जो उनका माहवारी होती है वो जैसे मैंने बताया अनियमित होने के साथ साथ कभी कभी इचिंग से रिलेटेड या बीच बीच में कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग भी उनको होने लगती है, यानी बीच में भी स्पॉटिंग होने लगती है।
0: पेरीमेनोपॉज होता है तो क्या ऐसे जो

0: पेड़ का निचला हिस्सा है उसमें पेन भी बहुत ज्यादा होता है।
1: नहीं, पेन जरूरी नहीं है कि हर महिला को पेन हो, लेकिन ये जरूर है कि पेरीमेनोपॉज के दौरान जो हमारे बॉडी में वसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी फीमेल्स में जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो थोड़ा सा निचले हिस्से पे एकत्रित होने लगता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से पे चर्बी हो गई और आपके ये थाइस वगैरह पे चर्बी इकट्ठा होने लगती है। दर्द अगर किसी महिला को हो रहा है तो उसके पीछे अन्य कारण हो सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या बच्चेदानी में किसी तरह का संक्रमण है, यूरिन संक्रमण है, उसके अन्य कारण हो सकते हैं।
0: जी, अभी आपने बताया कि हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो क्या ये दिन में आया तो उस समय भी ऐसी ही भयंकर गर्मी लगेगी या चिड़चिड़ाहट की समस्या रात में, जैसे कई बार होता है कि नींद खुल जाती है?
1: देखिए, नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस दो अलग अलग चीज है। नाइट स्वेट्स जो होता है वो अक्सर महिलाओं में रात्रि के टाइम में ही होता है, जब वो सो रही होती हैं उस दौरान उनको अचानक से बहुत तेज पसीना आने लगेगा। और हॉट फ्लैशेस जो है वो किसी भी समय हो सकता है, उसमें महिला को अचानक से तेजी से गर्मी लगेगी और वो बस जैसे होता नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है, बस बहुत थोड़े समय के लिए होता है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है।
0: और इन सब चीजों का क्या बहनों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है?
1: सबसे बड़ी बात होती है कि जब महिलाओं के अंदर पेरीमेनोपॉजल अवस्था शुरू होती है और उनके पीरियड्स अनियमित होते हैं तो अक्सर वो परेशान हो जाती हैं, उनको लगता है उनको कोई बीमारी हो गई है। कभी कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिससे कि वो अपनी समस्या के बारे में बात कर सके, तो अपने में ही वो बीमारी सोच के और परेशान होके, जिसे कहते हैं एंजाइटी, और उनको लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी हमें उत्पन्न हो रही है, बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये इसकी समस्या काफी बढ़ जाती है इस दौरान।
0: अच्छा, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए व्यावहारिक रूप से वो क्या कर सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी महिलाओं से, बहनों से, कि एक सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। आपको अपने शरीर को समझना है कि आपके अंदर जो भी ये बदलाव हो रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी के नॉर्मल चेंज हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि भाई बचपन से किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था से आप बड़ी होती हैं, आप माँ बनती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में एक लगातार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो पेरीमेनोपॉज भी एक वही अवस्था है। और एक सकारात्मक सोच अगर हम रखेंगे कि अब धीरे धीरे हमारा शरीर इस अवस्था से उस अवस्था में जा रहा है जहां कि अब हमें पीरियड्स नहीं आएंगे, अगर ये सोच रखेंगे तो शायद हमें ये अवस्था को डील करने में काफी आसानी होगी। उसके अलावा मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए अपने को किसी अच्छी, जैसे हॉबीज, जो भी उनकी हॉबीज हैं उसमें अपने को एंगेज करें, अच्छी किताबें पढ़ें, व्यायाम वगैरह है, मेडिटेशन है, योगा है, अपने खान पान पर ध्यान दें। और अगर उनको किसी भी तरह की अन्य समस्या या उनको ऐसा लगता है कि लक्षण कुछ ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में वो किसी एक्सपर्ट का कंसल्टेशन लें, यानी किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लें, अपना एक प्रॉपर जाँच कराएँ।
0: जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जब पूरी तरह से पेरीमेनोपॉज हो जाता है तो क्या उसके बाद भी शारीरिक समस्याएं या मानसिक समस्याएं आती हैं?
1: देखिए, शारीरिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो जो ये हमारा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है ये महिला के शरीर में काफी सारे अच्छे काम करता है, कह लीजिए। जैसे हमारी महिलाओं की जो बोन हेल्थ होती है वो भी इस हार्मोन पर निर्भर करता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए, हृदय के लिए ये बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी को जो पूरा मेटाबॉलिज्म चलता है, यानी हमारी बॉडी की जो पूरी फंक्शनिंग होती है वो भी बहुत सुचारू रूप से चलती है। तो जब ये हार्मोन धीरे धीरे हमारे शरीर में कम होने लगता है तो काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आने का खतरा रहता है, जिसके लिए कि महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। जैसे कि बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती, यानी कि कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने लगती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है, उनको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है, मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी लाइफस्टाइल, जिसे कहा जाए कि अपनी दिनचर्या, अपने खान पान, अपने व्यायाम, अपनी जीवन शैली पे काफी ज्यादा ध्यान दें और समय समय पर अपना ब्लड चेकअप, ब्लड प्रेशर का जांच, ये सब कराते रहें। और कैल्शियम युक्त उत्पाद, यानी कि दूध है, पनीर है, अंकुरित दाल है, चने, ये सब का सेवन करते रहें, काफी हद तक समाधान हो सकता है। और अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो फिर आप दवाइयां भी ले सकती हैं।
0: अच्छा, जैसे कई बार कंडीशन ऐसे बनने लगती है कि बहुत पसीना भी आ रहा है और चेस्ट में पेन होने लगती है, या कई बार मतलब एकदम तेजी से उलझन सी होने लगती है, तो जब ये लगता है कि हाँ ये लंबे समय तक खींच रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए
1: जी। अगर ये समस्या बार बार हो रही है, लंबे समय तक रह रही है, तो उसमें

0: फिर आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहनें जो हैं वो निश्चित रूप से इन सब चीजों का लाभ उठाएंगी।
2: पेरीमेनोपॉज के संकेत, लक्षण व उपचार, वार्ताकार रही डॉक्टर ज्योति सिंह और भेंट करता रही प्रज्ञा मिश्रा। जैसन की बहनी बताएं कि सभी कैल्शियम और विटामिन डी के भरपूर सेवन करें, नियमित रूप से योगा और व्यायाम करें और अपन शरीर का हाइड्रेट रखें। ये भेंट वार्ता मेरे सखियन का जरूर निक लाग हुए, बातचीत आगे हो और हुए लेकिन एक अंतराल के बाद।
3: दीवाने,
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: बदलो बदलो, आदत बदलो।
9: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
8: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर रहे आपके रेडियो सखी वंदना कार्यक्रम लेके अंगना। और बहनी, जब शरीर स्वस्थ रहा है तब सब कुछ निक लागा था। तो चलो कहे ना अपन अग नैया मां सुना जाए पद्मा किडवानी की आवाज मां इलोकित।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मैंने ये मौसम में सबसे बढ़िया पेय है आम के पना। और आम के पना न सिर्फ स्वादे में बढ़िया होते बल्कि सेहत खातिर भी बहुत ही फायदेमंद माना जात है। ये शरीर में पानी के कमी नहीं होए देत और पाचन भी ठीक रखत है। और पुरखन के जमाना में ये देसी पेय गर्मी के सबसे बढ़िया इलाज माना जात रहा। तो चलो आज के बनावे के तरीका भी जाना जाए। तो सबसे पहले हमारे सखिए सामग्री नोट कर ले। कच्चा आम 3 ठू, चीनी या गुड़ 5 से 6 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, सादा नमक स्वाद के अनुसार, और भुना जीरा पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, और पुदीना की पत्ती थोड़ से, और ठंडा पानी जरूरत के अनुसार। अभी का बनावे के तरीका भी जाने तो पहले कच्चा आम धोए लें। आम का कुकर में उबाल लें या आगी में भी भून सका थी। काहे से भुना हुआ आम से पना बहुत स्वादिष्ट लागत है। और जब आम ठंडा हो जाए तो छिलका उतार के उसके गूदा निकाल लें। गूदा में चीनी या गुड़ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इमा काला नमक, साधारण नमक, भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। पुदीना की पाती पीस के मिला दें। अब ठंडा पानी डाल के घोल का तैयार कर लें। गिलास में बर्फ डाल के पना परोस दें। अब भुना आम के पना में धुआंधार स्वाद आवत है तो जोन बहुत स्वादिष्ट लागत है। और ये लू और गर्मी से बचाव में भी मदद करत है। और बहनी चलो एक साथ ही साथ लीन जाए लोकगीत के आनंद अज्जू मिश्रा के आवाज में।

गीत गौने मा समय के तो पते नहीं लागत और घड़ी इशारा करत है कार्यक्रम से विदा लेके। तो अगले कार्यक्रम मा नई नई जानकारी और गीत गौने के साथ फिर मुलाकात कीन जाए। तब तक के खातिर अपन रेडियो सखी वंदना गुप्ता का दे अनुमति नमस्कार।

हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तो

0: हम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी। नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था, और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
0: हाँ।
1: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए?
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही है तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक गाछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।

0: देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: चलिए मैं रख देता हूँ।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
0: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटगिरीदार मैने का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐंठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी

तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूद की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा

0: बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
1: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
1: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
1: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
1: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से 1 ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक के

0: सावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: मंजरी देखिए, एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
2: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुन करके। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए, सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: है। जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी के या किम खाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं।

0: इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ रही है।
1: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित है, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
0: सब नहीं करना चाहिए।
1: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक डोरी लगी जिससे कि बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
0: सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
1: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा उस
0: करीब
1: वक्त के
0: पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए
1: हम करीब पहुंच रहे हैं
0: गीत के।
1: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले. स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे.
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए.
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं. बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल

0: पके टमाटर बारीक काट लें, दो उबले आलू मैश कर लें, दो बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और एक बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, एक छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसके बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाए तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये तो आप पढ़ेंगे सामग्री
1: भी पता लग जाएगा। तो भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, दो बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, दो कप ताजा दही हो, उसमें दो तीन बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तले, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो ये है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है, झुंझलाहट होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने से।
0: बिल्कुल हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा, अब गुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो

0: डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
1: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है, और देखिए ना शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लें,
0: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आशर की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई देख रहा है, जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दे। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और

0: रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे है, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन, यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा।
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्या दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है, जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेस है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी,
0: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है, ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40 वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले, तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा। डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है, तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं, और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो है, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है, तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है।
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें

0: ये वापस एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के अब्सॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओ, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी जी जी। तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें, और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें, और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन

0: अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के

0: क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और अब कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है, वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता
0: है। जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो

डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो

0: बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन आप इंजॉय कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो

0: सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेज है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
1: जी जी।
0: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
1: इसका क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे। तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है, यानी शाकाहारी सोर्सेस है। ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे है बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है, क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है, उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क बुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट

0: के किसी काम के नहीं है और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं. तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेगा, तब वो फायदा करेगा. तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ. और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं. तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं. फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं. सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बन करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ये सब कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है. और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है. और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है. उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है. और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है. और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे. और प्लस वो एक टू एक्सटेंड, एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है. तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिसॉल्व हो गई है. तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए. तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी. लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है. अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है. अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है. आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है. काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे. जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है, ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है. एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है. वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है.
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा.
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है. आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशन अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका. हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती. और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा.

0: तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
1: है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी
1: जी,
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है, तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी ज़रूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते, आप काम कर रहे हो, आप घर पर हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे और अब 30 मिनटों तक हम साथ बिताएंगे ज्ञान, जानकारी और प्यारे प्यारे गीत संगीत के संग। आज के अंक में सबसे पहले होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर। इसके बाद हमारे विशेष सेगमेंट करियर गाइडेंस में जानेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र के करियर अवसर के बारे में। इस विषय पर जानकारी देंगे दीपक कुमार पांडे। फिर बढ़ेंगे आगे और नजर डालेंगे रोजगार समाचार पर ताकि आप रहें नई संभावनाओं से अपडेट। और हाँ, इन सभी जानकारियों के बीच आपका मनोरंजन करेंगे सुनहरे और मधुर गीतों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। दोस्तों, इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो हर वर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दोस्तों, संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को संभाल कर रखने की जगह नहीं होते बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और विरासत के जीवंत संरक्षक हैं। एक संग्रहालय हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों को समझने का अवसर भी देता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 यानी कि 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, भारत का इतिहास और संस्कृति बेहद समृद्ध रही है और यहाँ अनेक प्रसिद्ध संग्रहालय मौजूद भी हैं।

दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम और लखनऊ का स्टेट म्यूजियम लखनऊ हमारे इतिहास और कला की अनमोल धरोहर को संजोए हुए हैं। आज के आधुनिक दौर में संग्रहालय भी तकनीक के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कई संग्रहालयों में डिजिटल गैलरी, वर्चुअल टूर और इंटरैक्टिव प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, जिससे युवा पीढ़ी की रुचि और भी ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, संग्रहालय में ये सिखाते हैं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि उन वस्तुओं, चित्रों और स्मृतियों में भी जीवित रहता है जिन्हें हम सहेज कर रखते हैं। इसलिए हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हम खुद से, आप खुद से प्रॉमिस करिए कि अपनी संस्कृति, कला और इतिहास को जानेंगे भी और उसे सुरक्षित रखने में अपना योगदान भी देंगे। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत। फिल्म बरेली की बर्फी से आवाज है पवनी पांडे, देव नेगी, श्रद्धा पंडित और प्रवेश मलिक के। गीत को लिखा है शाबिर अहमद ने और संगीत दिया है तनिष्क बाक्षी ने। फिर बढ़ेंगे आगे और करेंगे चर्चा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर। तो आइए।

आपने सुना है प्यारा सा गीत फिल्म बरेली की बर्फी से। आवाज थी पवनी पांडे, देवनेगी, श्रद्धा पंडित और प्रवेश मलिके। अब बात करते हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे यानी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ये दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये दिन लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने और इसकी वैक्सीन खोजने के लिए दुनिया भर में चल रहे वैज्ञानिक प्रयासों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि HIV क्या है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि समय रहते इलाज ना मिले तो ये आगे चलकर एड्स का रूप ले सकता है। दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इसकी प्रेरणा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने HIV वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। दोस्तों आज विज्ञान ने काफी प्रगति की है। HIV की पहचान, उपचार और रोकथाम के क्षेत्र में लगातार शोध हो रहे हैं। हालांकि अभी तक HIV की पूरी तरह प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकी है, लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयास लगातार

लगातार जारी है। ये भी समझना जरूरी है दोस्तों कि एचआईवी किन कारणों से फैलता है। तो ये वायरस संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई के इस्तेमाल और संक्रमित माँ से बच्चे में फैल सकता है, लेकिन ये सामान्य छूने, साथ बैठने, भोजन साझा करने या फिर हाथ मिलाने मात्र से नहीं फैलता है। इसलिए दोस्तों एचआईवी या एड्स से संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज में जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। आज सरकार और कई स्वास्थ्य संगठन लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, समय समय पर जांच करवाना और सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि जागरूक युवा ही स्वस्थ समाज की नींव बनाते हैं। हमें अफवाहों से दूर रहकर केवल सही जानकारी पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों इस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर हम लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक करें, भेदभाव को खत्म करें और एक स्वस्थ एवं संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। चलिए आप सुनते हैं प्यारा सा गीत फिल्म स्वदेश से। आवाज है उदित और साधना सरगम की। गीत को शब्दों में पिरोया है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

0: प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ सुनने में वाकई क्या बताऊं। लेकिन फिलहाल अब कर लीजिए रेडियो के वॉल्यूम को और तेज, क्योंकि अब आने वाला है आपके लिए बहुत ही खास। लेकिन उससे पहले छोटे लेते हैं छोटा सा अंतराल, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए योगवाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
0: दोस्तों अब समय है जहां हम आपके भविष्य से जुड़े सवालों का देंगे सही मार्गदर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सपनों के उड़ान की, यानी करियर गाइडेंस की, जिसमें हम सुनने वाले हैं भेंट वार्ता। विषय है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर। इसके विषय में जानकारी देंगे दीपक कुमार पांडे। करने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की जो न सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य को ऊर्जा दे रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और शानदार करियर के नए अवसर भी तैयार कर रहा है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी सेक्टर। बढ़ती तकनीक, सरकार की नई योजनाएं और ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाया है। ऐसे में बहुत से युवा ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोलर एनर्जी में करियर कैसे बनाया जाए और इसमें आगे बढ़ने के क्या अवसर हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पैका स्किल्स में इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग हेड के पद पर कार्यरत दीपक कुमार पांडे। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी क्या है।
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रीन्यूएबल एनर्जी यानी हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा जो कि प्रकृति से बार बार मिलती रहती है, जैसे हम सूरज, हवा और पानी इस रूप में देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोलर एनर्जी
0: जी
3: सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और इसमें हम सूरज की रोशनी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में बदलते हैं जिससे घर, औद्योगिक क्षेत्रों और मशीनें चलती हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सूरज से सीधे बिजली बनाना ही सोलर एनर्जी है।
0: तो दीपक जी, ये बताइएगा कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं।
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये टेक्निकल प्रश्न में आता है। और हम इसमें देखें तो एक कंप्लीट सोलर सिस्टम में मुख्य रूप से चार पार्ट होते हैं। सोलर पैनल जो कि सनलाइट को कैप्चर करके बिजली बनाता है, और दूसरा होता है इन्वर्टर जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और तीसरा है बैटरी जो बिजली को स्टोर करने के लिए रखते हैं, इसको ऑप्शनल है ये चीजें, और चौथा है माउंटिंग, जिसे इसमें माउंटिंग के अंदर वायरिंग सिस्टम पूरे सेटअप को सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है। और इस तरीके से देखा जाए कि एडवांस सिस्टम में मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिससे मोबाइल से पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है, और इसका वैज्ञानिक आधार जो हम देख सकते हैं टेक्निकल रूप से फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है, जिसमें सोलर पैनल के अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं उससे सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करके डीसी करंट बनाते हैं
0: जी।
3: और फिर इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदलता है जिससे हम घर और उद्योग में इसका उपयोग करते हैं
0: जी।
3: यानी पूरा सिस्टम एक मिनी पावर प्लांट की तरह काम करता है। और इसमें भी तीन सिस्टम होते हैं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम जो गवर्नमेंट ग्रिड से जुड़ा होता है
0: जी।
3: दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जहां बिजली नहीं होती है वहां पर प्रयोग करते हैं, बैटरी के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा तीनों को जोड़ करके हाइब्रिड सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो सबसे एडवांस और फ्यूचर रेडी सिस्टम है।
0: अच्छा, क्या बात।

0: आपसे जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आज के समय में सोलर एनर्जी का महत्व इतना क्यों बढ़ गया है?
1: बहुत अच्छा सवाल। आज बिजली की मांग लगातार बढ़ी रही है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोल सीमित हैं और इससे प्रदूषण भी बढ़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस चीज को देखते हुए सोलर एनर्जी एक साफ, सस्ती और लंबे समय तक चलने वाला समाधान है। साथ ही सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले समय में या वर्तमान समय में ही देखा जाए इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है।
0: जी।
1: और इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
0: जी।
1: दूसरा, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। तीसरा, सबसे बड़ा जो कारण है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और पॉलिसीज बहुत आसान तरीके से लोगों को उपलब्ध हो पा रही हैं। और आज इंडस्ट्रीज और बड़े शहरों में बिजली की लागत बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में सोलर लगाने से लॉन्ग टर्म में लगभग 70% तक बिजली का खर्च कम हो सकता है। इसलिए कंपनियां इसे कॉस्ट सेविंग टूल के रूप में भी देख रही हैं और देखा जा सकता है कि सिर्फ एनवायरमेंट के लिए ही नहीं, इसके लिए भी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है।
0: अच्छा, जैसे हमारे श्रोता सुन रहे होंगे आपकी बातों को, उसमें अपने करियर को भी बनाने के लिए सोच रहे होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन?
1: बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो इसके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत होना जरूरी है। और यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बेसिक रूप से जो हमारे युवा साथी होते हैं उनको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से होना जरूरी है, क्योंकि वे बेसिक जानकारी है इलेक्ट्रिकल के लिए।
0: जी।
1: इसके साथ साथ डिप्लोमा कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से, उसके माध्यम से इसका बेस बना सकते हैं। इसके अलावा 3 से 6 महीने का सोलर या बैटरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें काफी सपोर्ट भी कर रही है।
0: जी।
1: साथ ही साथ 6 महीने का फील्ड में काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यदि उनको कोई डिग्री या ऐसा समय नहीं है कि वो उसको ले पाए या वहां तक पहुंच पाए, तो फील्ड में भी काम करके एक्सपीरियंस लेकर के उसमें भी कर सकते हैं और इसके बाद आपका काम भी शुरू कर सकते हैं। और ये फील्ड देखा जाए तो एक प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये चीजें, कि आप जितना कर रहे हैं उतना सीख रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 10वीं या 12वीं के बाद भी कोई भी युवा इस क्षेत्र में जुड़ सकता है, बस थोड़ी सी इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए और प्रैक्टिकल स्किल बहुत महत्वपूर्ण रखता है।
0: जी, प्रैक्टिकल की काफी ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: चलिए, ये तो बात रही प्रैक्टिकल स्किल्स की, अगर बात करें दीपक जी इस क्षेत्र में कोई स्पेशल कोर्स की तो क्या क्या उपलब्ध होंगे?
1: डिग्री के स्तर पर देखा जाए तो बीटेक इलेक्ट्रिकल या एनर्जी इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत सोलर इंस्टॉलेशन और बैटरी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस फील्ड में काम करने के लिए एडवांस स्किल की जरूरत होती है, जो शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स लेकर आते हैं। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें सोलर पीवी इंस्टॉलर सूर्य मित्र प्रोग्राम के माध्यम से काफी युवा जुड़ रहे हैं।
0: जी।
1: इसके साथ साथ सोलर टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस के बारे में सभी छात्र इसके बारे में जानना चाहते हैं वो सीखते हैं। और इसमें 3 महीने से 6 महीने के कोर्स भी उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है और जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। तो ये सभी युवाओं के लिए अच्छा हो सकता है कि इस क्षेत्र में यदि करियर बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे सेक्शन का चुनाव करके इसमें अपना करियर अच्छा कर सकते।
0: दीपक जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि 3 से 6 महीने में इसके कोर्स कंप्लीट हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है और तीसरी बात की जॉब प्लेसमेंट का भी सपोर्ट रहता है।
1: हाँ।
0: अगला क्वेश्चन जो है आपसे हमारा वो है कि इस फील्ड में काम करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है?
1: जैसे सोलर पैनल लगाना हुआ, वायरिंग की जानकारी होना, इन्वर्टर का सेटअप जो करना है उसके बारे में अच्छी जानकारी होना, सिस्टम में क्या खराबी आ रही है, जो फॉल्ट आ रहा है उसको ढूंढकर ठीक करना।
0: जी।
1: अगर कोई व्यक्ति ये स्किल अच्छे से सीख लेता है तो उसके लिए जॉब के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
0: आपने बात करी जॉब के अवसर की, तो जो रोजगार के अवसर है वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं?
1: देखिए, इसमें मौजूदा समय में देखा जाए तो काफी ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही हैं। तो सोलर कंपनियां कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी, इसके अलावा ईवी चार्जिंग, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम में, इसमें नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हर जगह देखा जाए, फैक्ट्री हुआ, बिल्डिंग हुआ और भी कई जगह पर है जहां पर एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है, तो इसका

0: बहुत ही मांग बढ़ता जा रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं, और मैं सरल शब्दों में कहूं तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की ही नहीं देखा जाए तो करेंसी होगी एक प्रकार की, एक प्रकार की मुद्रा होगी लोगों के पास, और ये सोलर उसका सोर्स होगा।
1: जी दीपक जी, हमारी आदत ये होती है कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये घूमता है ना कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो।

0: कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी?
1: बिल्कुल, खास तौर पर युवा सबसे पहले सोचते हैं कि इस काम को सीखेंगे या जानेंगे तो हमें प्रारंभिक समय में कितनी सैलरी मिलेगी। और ये जायज भी है, देखा जाए तो यदि बेसिक जानकारी सोलर की होता है उनको, युवाओं को, तो कहीं भी कार्य प्रारंभ करते हैं और कहीं पर जाते हैं तो 12 से 25,000 तक रुपए उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे उनका कार्य का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। हमने कई युवाओं को देखा है जो लगभग 30,000 से 60,000 रुपए भी पा रहे हैं, और जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाता है उनकी सैलरी उनके अनुभव पर निर्भर करती है, और इस तरीके से काफी अच्छा उनको 1,00,000 से ऊपर भी उनकी सैलरी हमने देखी कि ये बच्चे पाते हैं।
0: दीपक जी, क्या ये क्षेत्र जो है वो स्वरोजगार के लिए अच्छा है, अगर हम अपना कोई रोजगार इस क्षेत्र में शुरू करना चाहे तो?
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा इसमें स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा करियर होता जा रहा है, और जो छात्र या जो युवा इस क्षेत्र में जुड़ते हैं उनको एक अच्छा अनुभव हो जाता है इस क्षेत्र में, तो सोलर इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर सकते हैं, रूफ टॉप सोलर बिजनेस कर सकते हैं, या ईवी चार्जिंग सेटअप कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम निवेश में एक अच्छी शुरुआत की जा सकती
0: है। फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी?
1: भविष्य में बहुत ही अच्छा इसका उज्जवल भविष्य है। आने वाले समय में हर घर में, हर इंडस्ट्री में सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हर क्षेत्र में स्किल की मांग रहेगी और खास तौर पर इस क्षेत्र में बहुत ही मांग बढ़ता जा रहा
0: है। दीपक जी, आपसे जो अगला प्रश्न वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये बताइए, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे हमारी बातें तो मन में चल रहा होगा कि क्या कोई सरकार की तरफ से कोई योजना होगी इस क्षेत्र को लेकर?
1: बिल्कुल, इसमें सरकार की योजनाएं हैं जिसकी वजह से लोगों का रुझान इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से सोलर सब्सिडी दी जाती है, और इसके साथ साथ रूफ टॉप सोलर स्कीम है जो कि पीएम सूर्य घर योजना इस समय चल रहा है काफी, और इसमें मुफ्त बिजली योजना, ऐसे कई उद्देश्य हैं जिसकी वजह से खर्च कम है तो उनको बहुत ही कम पैसा पड़ता है या जीरो पड़ता है बिल। नेट मीटरिंग का सिस्टम है जिसमें कमाई का भी मौका लोगों के पास रहता है कि उसमें जुड़ सकते हैं और अपना कमाई का भी एक माध्यम बना सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, और युवाओं के लिए स्किल इंडिया ट्रेनिंग सपोर्ट ऐसे प्रोग्राम को चला करके उनको युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती है, स्टार्टअप और बिजनेस सपोर्ट भी करने का काम कर रही है। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी सोलर के क्षेत्र में काफी अवसर है और इसमें काम गवर्नमेंट कर रही है। इसी के साथ जैसे फाइनल, तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी ऐसे स्कीम है जो गवर्नमेंट अपने इन क्षेत्रों में ध्यान दे करके लोगों को एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ आकर्षित कर रही है और लोगों को उस तरफ रुझान बढ़ रहा है और इस क्षेत्र के साथ जुड़ भी रहे हैं।
0: अंत में हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे दीपक जी?
1: मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि काफी युवा ऐसे होते हैं कि जो किसी अपने मित्र को, आसपास के लोगों को देख करके वो अपना करियर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मौजूदा समय में स्किल की मांग होती है उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए
0: जी।
1: सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागें बल्कि स्किल पर ध्यान दें। आज के समय में जो व्यक्ति नई तकनीक सीखता है वही आगे बढ़ता है। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेहनत करने वाले को कभी काम की कमी नहीं रहेगी। अंत में यही कहेंगे कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, प्रैक्टिकल स्किल सीखें, और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आपका करियर बहुत उज्जवल हो सके और बहुत ही बेहतर हो सके।
0: जी बिल्कुल, दीपक जी आपने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे काफी मदद मिलेगी। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी करियर गाइडेंस में आपने सुनी है भेंट वार्ता, विषय था सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर, जानकारी दी है दीपक कुमार पांडे ने। दोस्तों, जरूर ध्यान से सुनिए क्योंकि अब वक्त है रोजगार समाचार का, जहां हर अपडेट बन सकती है आपके सुनहरे भविष्य की शुरुआत। तो नौकरी की वैकेंसी से जुड़े जरूरी समाचार सबसे पहले सिर्फ आपके लिए। आज की पहली वैकेंसी है भारतीय नौसेना SSC कार्यकारी IT, आवेदन की अंतिम तिथि है 1 जून 2024। उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2002 और 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। कुल रिक्तियां 15 है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर। अगली वैकेंसी है BPSC 72वीं प्री परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 31 मई 2026। टोटल पोस्ट है 1186। आधिकारिक वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। अगली वैकेंसी है रेलवे RRB ALP। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 30 वर्ष। टोटल पोस्ट है दोस्तों 11127 पोस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। अगली वैकेंसी है SBI ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर। आवेदन की अंतिम तिथि है 2 जून 2026। न्यूनतम आयु है 23 वर्ष

0: टोटल पोस्ट 100 है और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आप आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in। अगली और अंतिम वैकेंसी है UPSSC गन्ना पर्यवेक्षक की। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2026। 28 जुलाई 2026 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कुल रिक्तियां हैं 1182। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करिएगा uptsse.gov.in पर। दोस्तों रोजगार समाचार के बाद अब बात उस चुनौती की हो जाए जो इस वक्त पूरे उत्तर भारत को झुलसा रही है। हमने सोचा कि चलते चलते आपको थोड़ा सा टिप्स दे दें। दोस्तों हीट वेव यानी भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। ऐसे मौसम में संतुलित खानपान बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खानपान में तरबूज, खीरा, ककड़ी, दही और नींबू पानी जैसी चीजें शामिल करें। वहीं तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाने से बचें दोस्तों। अब बात कर ली कल के कार्यक्रम की। कल क्या होगा कार्यक्रम युवाणी में खास चर्चा में बात करेंगे विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर भारतीय इतिहास से जानेंगे नाना साहब पेशवा द्वितीय और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। वार्ताकार होंगे अभिषेक कुमार राजपाल और सुनेंगे गीत संगीत। दोस्तों जल्दी फिर से मिलेंगे नए अंक में ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8303211 पर। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: काली चरण मिश्रा और साथियों के स्वर में ये विकास गीत।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं बलराम यादव और साथियों के स्वर में ये किसानी गीत।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91 61 877 347।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में इसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे।

पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग पहली जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: has sufficient crude inventories despite the ongoing West Asia crisis. Addressing an interministerial briefing in New Delhi today, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said there is adequate stock of petrol, diesel, LPG and natural gas, though panic buying of LPG has been reported in some areas due to rumours. Joint Secretary in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, said over 200 lakh metric tons of fertilizers are available across the country and there has been no change in fertilizer prices for the Kharif season. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार महेश कुमार लोध निवासी कुल्फी कपूरवा मजरे बारी थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या से सूचित करते हैं कि सुनीता दिनांक 4 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 8 बजे से कहीं लापता हैं। इनका होलिया इस प्रकार है, आयु लगभग 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। गुम होने के समय इन्होंने साड़ी ब्लाउज और हवाई चप्पल पहन रखी थी। इनके मिलने की सूचना आप अपने निकट की पुलिस चौकी, थाना कोतवाली या कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष को सूचित कर सकते हैं। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। दोस्तों, कार्यक्रम शाम सुहानी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो खास गीत जो अफ्रीकी संगीत से प्रेरित होकर संगीतबद्ध किए गए हैं। पहला गीत है फिल्म थानेदार से, जो 1990 में रिलीज हुई, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया है। ये गीत माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर फिल्माया गया है। आइए सुनते हैं फिल्म थानेदार से ये गीत।

0: जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: दोस्तों, दूसरा गीत है फिल्म हमसे, जो रिलीज हुई थी 1991 में। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया था। इसमें भी अफ्रीकी संगीत की झलक दिखाई देती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनंतपुरम नगरस्य केंद्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्ण तरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इंडिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री

0: IN इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धं अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्य मंत्रिमंडलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमित शाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानां आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं शुभारंभं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थं अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्य रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः सांप्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायक्षन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज है, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े, हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र संप्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामंत्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अंतर्जालीय पटले मंत्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक संबंधानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशांत क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 वादने भविष्यति इति वार्ताः।

0: सोनी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 98-39-56-31-29 व 96-82-075-221।

0: दिया जाई जाई।
1: अभी आप सुन रहे थे ये स्वच्छता गीत, स्वर था अभिनंदन और साथियों का।
2: अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: अरे पढ़े लिख के

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: मुझे नौ लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: सभी श्रोता पंच के आज के कृषि जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत के साथ ही साथ हम एक बात बतावा चाहिए कि देखो अपने सभी एक बात का बहुत पुराने समय से सुना जाता रहा कि बड़ा सुख होला परिवार थोड़ा थोड़ा, माने छोटा परिवार सुखी परिवार के परंपरा अगर देखा जाए तो यह के बारे में आज से नहीं बल्कि आदि से अपने सभी एक जाना जाता है, और साथ ही साथ ही पर अगर अमल किए गए हैं तो निश्चित है उसके लाभ भी मिला है। अब जैसे अगर आज की बात की जाए तो आज के समय में सुख समृद्धि के सबसे बड़ा अगर वाहक है तो वह अपन संतुलित संयमित जौन सीमित परिवार है, वही पर सबसे बड़ी बात आवत है। और अपने सबका अपन छोटा परिवार सुखी परिवार के जौन परंपरा है ओके अनुसरण करे में लाभ है लाभ है। अब छोटा परिवार और सुखी परिवार के अगर अभिप्राय देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जोन खुलकर बात आवत है वो है कि ऐसे में परिवार जिहमन अपने माता पिता हुए और एक या दो बच्चे हुए उसे फायदा का मिले, सदस्य की संख्या कम हुए सीमित हुए, साथ ही साथ ऐसे में अपने परिवार में बेहतर लालन पोषण और अधिक बचत और आपसी प्रेम के माहौल भी रहते है। अब ये मन जेका देखा जाए कि अगर अपने सबके जौन पंचे हैं अक्सर भाई छोट परिवार के तरफ उनके मंशा भी रहता है, उनके सीमित जौन अवधारणा है उसे भी हमेशा भाई राहत है फलीभूत, लेकिन कोशिश यह बात के करो भैया कि अपने आवश्यकता के अनुरूप अपने परिवार का बढ़ाओ, उसे अपने सबका लाभ मिले। और छोटा परिवार सुखी परिवार के बहुत से और भी लाभ हैं अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिरता बनी रहत है, सीमित सदस्य होने के कारण घर में जो उन खर्चा है वो नियंत्रित रहत है, और ऐसे भविष्य में बचत के अपन आदत जान वो भी बनी रहत है, बेहतर शिक्षा पालन पोषण के भी बहुत बड़ा लाभ मिलत है, प्रत्येक ऐसा माता पिता जो अपने बच्चन का पूरा ध्यान दे सकते हैं, और एक बात और भी भैया एमन शिक्षा संस्कार और सुविधा सब कुछ आसानी से अपने सबका मिला करत है। अब अगर परिवार छोट हुए तो एक बात और सबसे मजबूत हुए कि आपसी संबंध के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो एक बढ़िया माना जाता है, परिवार छोटा होने के कारण सभी सदस्य के बीच बेहतर संवाद आपसी समझ और प्रेम की भावना भी बनी रहत है, स्वास्थ्य और खुशहाली के दृष्टि से भी कम सदस्य वाले परिवार में तनाव कम रहत है, जैसे माता पिता बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं, सीमित परिवार से पर्यावरण संरक्षण पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है, सीमित जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधन पर दबाव कम रहता है, और इसे सतत भविष्य के लिए जोन है वो हमेशा बनी रहता है। और एक बात और भी मान के चलो कि चौमुखी विकास में देश के नागरिक होने के नाते जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने समय का यह जोन सरकार के भी संदेश है कि भाई परिवार का सीमित रखो, तो वह में अपन भूमिका निभावे की जरूरत है, और अगर यह समय पे अपने सभी एक नहीं किए तो निश्चित है कि जनसंख्या विस्फोट जोन होए की संभावना बनत बाटे, वह मन भी तमाम मेर के फिर समस्या आए। तो अपने सबके भाई जिम्मेवारी यही है कि स्वयं का जागरूक बनाए के साथ आम जनमानस का भी जागरूक करे के भी आवश्यकता है, और यह

0: मिशन माँ की छोटा परिवार सुखी परिवार के प्रति अपने सबका आगे बढ़े के जरूरत है। कहे का छोटा परिवार सुखी परिवार जीवन में सुख समृद्धि का आधार। ये तो बात रही भाई अपने परिवार के बारे में, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अपन जो अनबोलता जानवर है उन्हों अपने परिवार के एक सदस्य है, उनके बदे भी भाई थोड़ा सा अपने सबके जो भावना है व्यवहार है उनका बढ़िया रखब जरूरी है। उनके रख रखाव के प्रति, उनके खान पान के प्रबंधन के प्रति अपने सबका थोड़ा सा हमेशा होशियार रह के जरूरत है। तो दुधारू पशु और जो नवजात बछड़ा है उनके रख रखाव में तमाम मेर के जो अपने सबका सावधानी रखे है, यह विषय पे डॉक्टर विद्यासागर से पूनम वर्मा के बतकही भाई है। तो आओ ये जानकारी का भाई सुना जाए, कुछ और अमन सीखे के मौका मिले अपने सबका।
1: पंचो देखें, खेती किसानी हमारे सबन के मुख्य व्यवसाय है और इसके साथ ही साथ आर्थिक स्थिति का मजबूत करे ताई अतिरिक्त आमदनी कमाए ताई हम सब गोरु बछरू भी पाले रही थे। और कहीं ना हो देखें खेती और जो है पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो गोरु बछरू अगर हम सब पाले है उनके बढ़िया से अगर देखभाल करब तब बढ़िया दूध उत्पादन हम सब ले सके थे। आज कुछ ऐसे ही जानकारी अपने पंचायती में लेके आ है। हमारे बीच में है डॉक्टर विद्यासागर जी जो उनके वैज्ञानिक हैं पशुपालन में और कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से हमारे बीच में आवा है। और आज के हमारे बातचीत के जो विषय है दुधारू पशुओं और नवजात बछड़ों का रख रखाव एवं खान पान प्रबंधन। तो डॉक्टर विद्यासागर जी सबसे पहले तो आपके स्वागत कहते अपने स्टूडियो में और यही के साथ ही हम आपसे जानना चाहब कि जिससे हम सभी अगर गोरु पाले है तो इन्हें रख रखाव और खान पान प्रबंधन से क्या समझिएगा।
2: सभी किसान भाइयों को प्रणाम। और जैसा कि ये दुधारू पशुपालन हर किसान जो खेती के साथ साथ एक जुड़ा व्यवसाय है
1: जी,
2: और ऐसे में दुधारू पशुओं में जो किसान भाई पाले हैं उनमें कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे अच्छा। वो गर्भावस्था में है, साथ ही साथ बच्चा जन्मने के बाद भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा।
2: और जो उससे बच्चे पैदा होते हैं नवजात गौ शिशु उनकी भी देखरेख विशेष आवश्यकता होती है।
1: अच्छा अच्छा। काहे कि मतलब कि जैसे रोजमर्रा में जैसे हम जानवरन के खान पान रखे थे अगर यह अवस्था में है बच्चा दे वाली अवस्था में या बच्चा दे चुकी हैं तो वह अवस्था में हमें उनके खास ध्यान दे चाहिए।
2: हाँ, और तो, देखा जाए तो ये देख रेख जानवर जब गर्भावस्था में होता है तभी से प्रारंभ हो जाती है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि
1: तो गर्भावस्था के समय जैसे गाय है भैंस है तो हम गर्भावस्था में ओकरे कैसे ओके देखभाल करें।
2: हाँ देखें, जैसे अक्सर किसान भाई गर्भावस्था में भी कभी कभी उचित पोषण और ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो दूध उत्पादन है वो तो प्रभावित होता ही है, लेकिन उसकी जो दूसरी ब्यात होती है।
1: अच्छा।
2: मतलब गर्भावस्था के बाद जब पशु ब्याता है तो दूसरी ब्यात भी में भी उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है।
1: अच्छा।
2: तो सबसे जरूरी है कि जब वो गर्भावस्था में हमारा जानवर है तभी उसके पोषण पर विशेष ध्यान दें।
1: अच्छा।
2: खास करके जब वो 6 महीने गर्भ हो जाए तो कम से कम उसको 2 से 3 किलो संतुलित दाना दें।
1: अच्छा।
2: आहार दें। इसके साथ ही साथ अगर वो दुग्धावस्था में है तो ब्याने के 2 से 3 महीने पहले ही दुग्ध उत्पादन लेना बंद कर दें।
1: अच्छा। मतलब कि अगर वो दूध देत बाटे तो बच्चा दे के 2-3 महीना पहले ही ओका हम गर्भ बंद कर दे।
2: हाँ, क्योंकि अगर हम उसको रेगुलर दूध उससे लेते रहेंगे तो दूसरी ब्याद के लिए वो तैयार उसका शरीर नहीं हो पाता और अच्छा। हमारा बच्चा भी जनने में दिक्कत होगी और साथ ही साथ तो उससे दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाएगा।
1: अच्छा।
2: और इस बीच में जो आहार की बात है जहाँ तक तो संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें हर चीज मिला होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो हमारी अगर गाय है तो उसको कम से कम प्रति 2.5 किलोग्राम ये माना जाता है कि 1 से 1.5 तो हम हमेशा जानवर को शरीर की आवश्यकता को हम दाना तो देते ही हैं
1: जी,
2: लेकिन जब वो खासकर गर्भित अवस्था में हो तो वो दाना हम
1: बढ़ा देंगे
2: 2 से 3 किलोग्राम कर देंगे।
1: अच्छा।
2: और जब वो दुधारू अवस्था में आ जाएगा मतलब ब्याने के बाद तो हम जो हमारी गाय होती है उसको प्रति 3 किलोग्राम दूध पर हम 1 किलोग्राम संतुलित दाना अलग से देंगे।
1: अच्छा, ये संतुलित दाना के जो

0: बात की जात बाटे। ऐसे का मतलब है?
1: इसका मतलब ये है कि जैसे जान किसान भाई जो भी दाना या उनके पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनमें कभी खली हुई, कभी उनके पास चोकर हुआ, तो अक्सर उसको वही देते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: जबकि देखा जाए तो जानवर के लिए प्रोटीन भी आवश्यक है, उनके लिए फैट भी आवश्यक है, साथ ही साथ उनके लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है
0: जी,
1: और इसके साथ कैल्शियम, फास्फोरस और जो अन्य विटामिन हैं उसके भी एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे में संतुलित जो दाने की बात होती है उसमें हमको अनाज के दाने कम से कम 30 भाग एक कुंटल में लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: 25 भाग उनमें जो हमारा कना है या पॉलिश है धान की, चोकर है, उसको लेना चाहिए। 20 भाग उसमें दलहनी फसलों की चुन्नी लेनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: ऐसे जो है खली हमको 20 भाग लेनी चाहिए, और साथ ही साथ चूंकि हमारा जानवर दूध में कैल्शियम फास्फोरस का ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो दुधारू पशु होते हैं
0: जी जी,
1: तो अतिरिक्त उसमें सप्लीमेंट के रूप में हम खनिज मिश्रण भी लेंगे।
0: अच्छा।
1: इससे ये फायदा होता है कि हमारे जानवरों में जो ये अतिरिक्त आवश्यकता होती है अगर हम उसी दाने में 2 किलोग्राम ये खनिज मिश्रण मिला लें, वो संपूर्ण मात्रा जो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन के उससे मिल जाएगी।
0: अच्छा।
1: इसके साथ ही जो कि कैल्शियम ज्यादा आवश्यक होता है तो हम इसी में 1.5 किलोग्राम कैल्शियम मिलाएंगे और नमक भी 1.5 किलोग्राम मिलाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो इससे संपूर्ण जो उसको आहार में आवश्यक चीजें हैं वो मिलेंगी। और जैसा देने की बात हमने कहा कि गाय को वही 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर इसको 1 किलोग्राम दाना देंगे, और भैंस को जो है 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर ये संतुलित दाना देंगे।
0: अच्छा।
1: ये जो हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं ये उसको तो देते ही है।
0: अच्छा।
1: ये अतिरिक्त देंगे खासकर के दूध उत्पादन जब वो करने लगता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है।
0: अच्छा अच्छा। तो ये तरह से अगर हम सभी अपने जानवरन के खियाई पियाई करब तो हमारे जानवर जो है स्वस्थ रही है और बढ़िया दुग्ध उत्पादन करी है। तो एक साथ ही जैसे बात कहेंगे की बच्चा दे दिए बात, तो छोट जो लेरुआ है पड़वा पड़िया है या बछो बछी आए तो उनकी देखभाल के तई हमें का करें?
1: हाँ, देखे जैसे जब हमारा जानवर है या दुधारू पशु है वो जब ब्याने की अवस्था में होता है तो विशेषकर वहाँ पर किसी आदमी को घर का रहना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और उसको थोड़ा सा अच्छी आरामदायक जगह पर उसको रखना चाहिए
0: जी,
1: और ब्याने के उपरांत जो बच्चा जनता है जानवर, तो जो नवजात शिशु होता है खास करके उसको मोटे बोरे से या कपड़े से उसकी सफाई करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: उसके मुंह से जो श्लेष्मा है उसको निकाल देना चाहिए
0: जी,
1: साथ ही साथ इसकी नाल जो है 2 इंच छोड़ करके काट करके मोटे डोरे से बांध देना चाहिए
0: जी,
1: और उस पर टिंचर आयोडीन का घोल भी लगा देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और आधे घंटे बाद जो हमारा नवजात गौशिश होता है उसको उसकी माँ है उसका दूध जरूर पिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो कोलोस्ट्रम होता है और उसमें बहुत सारे ऐसी प्रतिरोधक तत्व होते हैं, विटामिन होता है, अल्फा कैरोटीन होता है, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो उस बछड़े को या जो नवजात गौशिशु होगा उसके विकास के लिए और रोगों से बचाव के लिए सहायक होते हैं।
0: हाँ, वो अपने सबके भाषा में पेउस वाला दूध हाँ, बतावा जाता तो, है कि वो पियाई बहुत ज्यादा जरूरी बाटे।
1: हाँ, और इसको देने की जहाँ तक बात है तो कभी कभी किसान भाई को आइडिया नहीं होती है,
0: हाँ,
1: ते बहुत ज्यादा पिला देते हैं, लेकिन 1/10 भाग जो उसका मतलब बछड़ा बछिया है उसके वजन के 1/10 भाग हम दूध पिलाएंगे, और साथ ही साथ उसको 3 बार में पिलाएंगे।
0: अच्छा। 1/10 भाग जो पिलावे के ओकरे वजन के,
1: हाँ, हाँ,
0: ओका 3 दाव में पिलावे के।
1: हाँ, उससे है कि उसको पेट की समस्या नहीं आएगी और आसानी से वो दूध पच भी जाएगा।
0: अच्छा, एक अलावा हमारे पशुपालक भाई लोग और का ध्यान रखे अपने गोरु बछड़ू उनका जोने से बढ़िया उत्पादन ले सके। हाँ,
1: और इसके साथ साथ जब भी हम जानवर को खिलाएं, हमारे दुधारू पशु हैं तो उनको 25 से 30 किलोग्राम हरा चारा भी दें।
0: अच्छा,
1: और भार के अनुसार इनको 6 से 8 किलोग्राम सूखा

0: का चारा भी आवश्यक होता है और इसके साथ साथ अगर हरे चारे में हर सीजन में दलहनी और गैर दलहनी चारे होते हैं तो इनको मिक्स करके खिलाएं तो उससे ज्यादा पोषण मिलता है और साथ साथ जो दलहनी चारे अगर हम ज्यादा खिला देते हैं तो कभी कभी अफरा होने की शिकायत होती है, उससे भी बचत होती है।
1: अच्छा, मतलब ज्यादा हरा चारा होने पे गैस बनने की शिकायत हो जाती है।
0: हाँ, और साथ ही साथ हमारा जो नवजात बछड़ा बछिया है उसको हम लगभग जो है 2 माह तक हम दूध पिलाते हैं।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद हम उसको मुलायम हरा चारा भी देने का प्रयास करते हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके साथ ही उसको 15 दिन बाद कृमिनाशक दवा भी हम देंगे।
1: अच्छा,
0: हर 20 दिन के अंतराल पर उसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं घोल के रूप में।
1: अच्छा,
0: तो
1: ये दवाई कहाँ मिले?
0: ये सभी दवाएं, जैसे इसमें बहुत सारी दवाएं हैं घोल के रूप में, जलबोमार है या पिपराजीन, बहुत सारी दवाएं हैं। ये पशुओं की दवाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ सब मिल जाते हैं, तो इसको जरूर पिलाएं।
1: 15-15 दिन के अंतराल पे कई दाव देख पड़े
0: ये इसको, शुरुआत में तो हर 20-15 दिन पर इसको 3-4 बार में दवा जरूर दें।
1: अच्छा,
0: क्योंकि इसमें जन्म के समय ये और कैल्शियम की भी पूर्ति कभी कभी नहीं होती अगर, तो हमको अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट भी घोल के रूप में देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमारे बछड़े होते हैं वो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो या तो उसमें क्रिम की समस्या आती है अंतः परजीवी की, साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से भी ये समस्या आती है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी देना आवश्यक है।
1: अच्छा,
0: और साथ ही साथ जब वो 4 महीने के हो जाए तो उनको कुछ टीकाकरण भी हम पशु चिकित्सक की सहायता से करवाएं, जैसे खुरपका मुंहपका का है, ब्रुसलोसिस का है। ब्रुसलोसिस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा रोग है कि ये मतलब गर्भ से ही फैलता है।
1: अच्छा,
0: इसमें संक्रामक गर्भपात जिसे बोलते हैं, तो इसका 6 माह का जब हमारा बछड़ा बछिया हो जाएगी तो उसको इसका भी टीकाकरण आवश्यक होगा। और कभी कभी उनमें निमोनिया की शिकायत होती है, दस्त की होती है, तो इसके लिए ये है कि हम अगर ये समस्या आए तो पशु चिकित्सक की सलाह से दवाएं जरूर दें।
1: बिल्कुल, जैसे आप बतावागे कि इतना बढ़िया अगर हम खान पान रखें अपने पशुओं के और अपने नवजात बछड़न का बछियन के बढ़िया से देखभाल रखब, तो निश्चित है कि हम बढ़िया दुग्ध उत्पादन ले सके अपने पशुओं से। डॉक्टर विद्यासागर जी, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से आप हमारे स्टूडियो में आए और दुधारू पशुओं और नवजात बछड़ों का रख रखाव एवं खान पान प्रबंधन के बारे में इतने विस्तार से हमारे किसान पंचन का जानकारी दें। पंचन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दुधारू पशुओं में नवजात बछड़ों में कैसे हम प्रबंधन करें, कैसे उनका रख रखाव रखें, कैसे हम खान पान की व्यवस्था बनाएं, और यही के बारे में देखो डॉक्टर विद्यासागर से जो पूनम वर्मा की बात कही रही, निश्चित है अपने सब सुने हैं और अमल कीन जाए, निश्चित होकर लाभ मिले। लेकिन एक बात है, जिंदगी में हमेशा लाभ के लिए कुछ अपने सबका हमेशा आगे बढ़े के भी पड़े, और वह के लिए जिंदगी में कुछ यह तरह के काम करो जेका आज नहीं बल्कि आवे वाले समय में लोग याद करें। और वह के लिए चलो भाई एक निर्गुण सुना जाए शशिकांत मिश्रा उनके साथी के स्वर में।

पंचो देखो निर्गुण हम समझते हैं कि निकला घोए और संझा के बेरिया पे अपने सब जब बैठा जाते तो कुछ ही तरह के जब अपने सबका सुने के मिले थे तो हम समझे थे अब सबके लिए अच्छा रहा था। और एक चीज़ और है कि हमेशा मनई का अपने से अपडेट रह चाहिए कहा गया है ना, तो वैसे ने अपने सब देखो आज कौन मेर से बाजार में भाव तो रहा कौन मेर से बिक्री भाई, तो यह के भी जानकारी अपने सभी अपने कार्यक्रम के माध्यम से दीन जाते। तो नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से अपने सबका जो बाजार भाव मिलावट है उसका साझा करे के समय है। चावल कामन 3050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2585 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2400 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल काली 9250 रुपये प्रति क्विंटल, चना देसी 6400 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर रही 7050 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर की दाल 10950 रुपये प्रति क्विंटल। ही तो रहा गल्ला मंडी के भाव, यही की साथ ही साथ सब्जी के भाव कुछ यह मेर से रहा। आलू सफ़ेद 715 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज ललकई 1220 रुपये प्रति क्विंटल, टमा

0: टमाटर 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 6,920 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई रही 2,100 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 1,470 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1,320 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक रही 5,500 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2,970 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1,840 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1,585 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 1,400 रुपये 85 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका 2,685 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 8,500 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता 2,640 रुपये प्रति क्विंटल, सेब 11,300 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 8,250 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5,070 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी रही 4,130 रुपये प्रति क्विंटल। यही के साथ ही साथ कृषि मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से अपने सबका जोन भाई मौसम के हाल मिला बाटे। यमन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जोन सामान्य से 2.8 ज्यादा रहा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जोन सामान्य से 1.9 ज्यादा रहा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम रही 80% तक और न्यूनतम रही 38% तक, हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी चली है। पूर्वानुमान यही मिलावट है कि आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहे के तथा हवा सामान्य गति से पश्चिम चले के संभावना है। औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे के साथ ही साथ लू के भी कुछ संभावना बताई गई है। तो ये तो रहा बाजार भाव मौसम के हाल, लेकिन कल अपने पंचे यही कार्यक्रम में जो अपन किसानवाणी होते हैं मन काकू सुन सकते हैं उनका बताओ चली। कल के कार्यक्रम में चर्चा हुई मेंथा की खेती के बारे में जानकारी दी जाए, साथ ही साथ भेंटवार्ता हुए गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य से पूनम वर्मा के जौन बतकही है एक सुना जाए। देखो भैया अपने सभी अपने कार्यक्रम के तहत यह तरह के तमाम विषय लेके आवा जाते हैं जैसे आप सबका कुछ जानकारी मिले साथ ही साथ आपकी समस्या भी दूर हो सके, लेकिन आप सब अगर कुछ सुना चाहत हो तो अपने यही कार्यक्रम में आप चिट्ठी पाती के माध्यम से अपने सबका बता सकत हो कि हाँ कोनो यह तरह के विषय जौन आप चाहत हो कि यह कार्यक्रम में शामिल की जाए या कोनो यह तरह के बात जौन आपके लगा है उसका अगर आप सोचत हो कि आकाशवाणी अयोध्या की वारी से लोगों तक पहुँचावा जाए, यह के लिए भी अपने सभी भाई आपके चिट्ठी पत्री का आमंत्रित करित है। तो अपने कार्यक्रम में अगर आप चिट्ठी भेजा चाहत हो तो पता आप नोट कर सकत हो, कृषि जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अयोध्या, पिन कोड लिखिए 224001। तो ये भैया अपने सबका एक बात मान के चलो कि हर चीज़ समय से अच्छी लागत है, चाहे अपन खेती है चाहे अपन और कार्यभूत है और चाहे अपन कार्यक्रम है। कार्यक्रम में भी अपने सभी कोशिश की जाते हैं कि जौन आधा घंटा के समय मिले थे आप सबके साथ है कुछ साझा करे के उमन कुछ बढ़िया बात रहे ज्ञानवर्धक बात रहे साथ ही साथ भाई कुछ यह तरह की चीज़ रहे जिससे आप आगे भी कुछ सीख सको, आगे भी वह जानकारी का आप जब कभो सोचो या कभो याद करो तो लागे कि हाँ भाई इस समसामयिक है। लेकिन अब कार्यक्रम का हाथ बैठे कि भाई आपसे फिर मिले के वादा के साथ अनुमति ली जाए, तो यही वादा के साथ प्रकाश का दे अनुमति। जय हिंद।
1: सुनत है सखी सुनत है कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा आपकी बात आज रात 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब आपको बता दें अपने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:15 पर आप जानेंगे कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हमारे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुनेंगे कल प्रातः 8:30 पर। इस कार्यक्रम में कल आज की बात का विषय होगा विश्व खेल दिवस। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वरिष्ठ एंड्रोक्राइन सर्जन और ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा से संजय धर्मवेदी की बातचीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपके संदेश आपके गीत कल प्रातः 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे कल 10:00। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे कल 12:30 पर। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा कल दोपहर 1:00। 2:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम होगा नारी जगत कल दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में कल बहनें सुनेंगी चर्चा, विषय होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी पुण्यतिथि और सुरक्षित हो बचपन तो खुशहाल हो बचपन। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल बहनें सुनेंगी स्पीच थेरेपिस्ट आकाश सैनी से उनकी वार्ता, विषय होगा स्पीच थेरेपी की आवश्यकता और महत्व।

हमारी युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा विश्व खेल दिवस। भारतीय इतिहास के अंतर्गत कल आप जानेंगे अभिषेक कुमार राजपाल से नाना साहब पेशवा द्वितीय और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। साथ ही हमारा खास सेगमेंट होगा कल इसी कार्यक्रम में चक्रव्यूह कार्यक्रम। लोक संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे 6:10 पर। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा मेंथा की खेती। साथ ही किसानवाड़ी कार्यक्रम में कल किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य से की गई भेंटवार्ता। विषय होगा गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुनेंगे 8:15 पर। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिली गजल। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन्फॉर्मेशन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
2: परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार के संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा

का दल विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय

0: जाना है।
1: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटना स्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये।
5: चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP

0: CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: को
4: दीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
3: वो दो सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है,
0: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन,
10: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
11: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
9: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
11: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
9: आप कौन?
8: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
12: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश और कंचन को फिल्म है धर्मात्मा। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: смертилки, сват. स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
0: जी,
1: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूँ
0: जी,
1: और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को स्नेह स्नेह। इस बात में मैं एक चीज कहूंगा आपको, यहाँ पे जो हमारा कार्यक्रम रहता था ना
0: जी
1: पहले,
0: हाँ हाँ,
1: जहाँ आपने शुरुआत की कि भाई आप वास्तव में खप से गए, वैसे मेरी पूरी जिंदगी है ना इसी में खप गई है एक तरह से
0: जी, हमें पता है
1: और उससे बाहर अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ। मैं सही बात बताऊँ
0: जी, जी
1: बहुत अच्छा लगता है, और आज तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संसार के उस जगह में बैठा हूँ जहाँ सब कुछ देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल। तो सर, हम तो ये कहेंगे कि आपने न जाने कितने इंटरव्यू लिए हैं अपने इस पूरे कार्यकाल में, और आज आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा है ये एहसास?
1: ये एहसास तो बड़ा एक अनुभव दे रहा है मेरे को
0: जी।
1: वह अनुभव जो मैंने हमेशा इंटरव्यू लेते समय बोला, तो उसमें मुझे सामने वाले को क्या क्या पूछना, कैसे बातचीत करना, और विशेष तौर से आकाशवाणी के माध्यम से हमेशा मेरी एक ही ध्यान रहता था कि हमारा जो सुनने वाला भाई उसको लाभ कैसे मिले।
0: बिल्कुल।
1: उसको अगर लाभ नहीं मिलता मेरी बात से तो कोई फायदा नहीं मेरे इंटरव्यू लेने का। और हमेशा जब ये बात ध्यान रखता तो सुनने वाले अवश्य कहा करते, उनके पत्र तो हजारों लाखों की संख्या में आते थे। मैं बताऊं आपको, जोधपुर और बीकानेर में तो ये पत्रों की भरमार हो जाती थी, आपको तो मालूम ही है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो ये पत्र इस संख्या में आते थे कि कई बार तो संभालना मुश्किल हो जाते थे, और इसका कारण ये था कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और स्वागत है आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम को अपने इतना धैर्य से और प्यार से सुनते हैं
0: जी।
1: कोई कहता आज भी ना कि भाई ये प्रोग्राम आकाशवाणी कौन सुनता है, बड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनसे कहता मैं बताऊं, देखो आकाशवाणी के अंदर सुनना, उन बुजुर्गों से पूछो जो हमेशा रामायण का पाठ सुनते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: है?
0: बिल्कुल।
1: रामायण का पाठ का समय तय है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जैसी कड़ी अगर आगे पीछे हुई तो फोन आ जाता है स्टूडियो में,
0: और समय एक मिनट भी ऊपर नीचे हुआ नहीं तो शिकायती पत्र आ जाते थे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही।
0: आज भी श्रोता सुबह से लेकर रात तक आकाशवाणी सुनते हैं, और बराबर हमें बताते हैं कि सुबह 5:20 से शुरू होता है हमारा रेडियो, जो रात के 11 बजे ही बंद होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भूले बिसरे गीतों का तो फिर कहना ही क्या, आप लोग जो प्रस्तुत करते हैं
0: जी, जी।
1: बड़ा अनोखा एक प्रोग्राम, बड़ा अनोखा है विविध भारती का तो, और ये जो 90 साल की पूर्ण होने पे जो आपने श्रृंखला शुरू की है इसकी तो बात ही अलग है, निराली है।
0: बिल्कुल। तो परमार साहब, हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपने रेडियो में इतने सारे साल बिता दिए, पर रेडियो में आना हुआ कैसे आपका?
1: बचपन में मैं पिताजी से लड़ा के एक प्रोग्राम के लिए विशेष तौर से मैं ट्रांजिस्टर खरीदना चाह रहा था, बाहर का विदेश का ट्रांजिस्टर था। तो पिताजी बड़े नाराज हुए, क्या विदेशों का ट्रांजिस्टर खरीदते, हमारा हिंदुस्तान में ट्रांजिस्टर नहीं मिलते हैं क्या? नहीं नहीं बाबू जी, मेरे को इसके अंदर ना जरा मजा आता था। तो हम पहले जयपुर में थे, जो मैंने सारी स्टडी जयपुर में की, और जयपुर से फिर जब हम बीकानेर आए तो मैंने बाबूजी से जब ये चीज कहा, बाबूजी हम पिताजी को कहते हैं, तो बाबूजी से जब मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो ट्रांजिस्टर चाहिए, और ये वाले इसी कंपनी का ट्रांजिस्टर चाहिए, तो ले ले बेटे जा। वो ट्रांजिस्टर मेरे कई सालों तक साथ में रहा, और वो ट्रांजिस्टर लेके मैं ये सोचा करता था काश मेरी भी आवाज भाइयों के पास तक पहुंचे, और मैं वो चीज उनसे कह सकूं कि जिससे उनका जीवन एक वो जीवन बन जाए जो वास्तव में वो चाहते हैं
0: जी,
1: जीवन अमृत की तरह बन जाए
0: जी,
1: और वो भी किसी दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं हमेशा यही चाहता था, इसलिए मैं आकाशवाणी में आया, सही बात है
0: जी। जी बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो विचारधारा है रेडियो के प्रति, आकाशवाणी के प्रति।
1: मैडम पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, बैंक में भी सिलेक्शन हुआ था,
0: लेकिन आपने रेडियो को चुना।
1: रेडियो को चुना मैंने।
0: तो आपसे बातें तो सर हमारी हो ही रही हैं, हम आपकी पसंद का एक गीत भी यहाँ जानना चाहेंगे, कोई गीत सुनना चाहें आप तो बताइए।
1: एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

0: कहा,
1: क्या सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है जी। मुझे तो गर्व है इस हिंदुस्तान पे अपने, सही कहता हूँ।
0: बहुत सुंदर। तो ये फिल्म भाई बहन का गीत है, सारे जहाँ से अच्छा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मैंने खुद आपको काम करते देखा है और बहुत साल आपके साथ काम किया है राजस्थान में। जो लगन, जो जुनून मैंने आपके अंदर देखा, जब पहले हमारे आकाशवाणी में टेप्स हुआ करते थे, रिकॉर्ड्स का जमाना था, आप पूरे पूरे कार्यक्रम टेप में रिकॉर्ड करते थे, हम लोग पूरे कार्यक्रम टेप में बनाए करते थे, और कार्यक्रम बनाते बनाते कई बार टेप का फीता जो है वो टूट जाता था या आपस में उलझ जाता था और हम उसे सुलझाने में लग जाते थे। कई बार कार्यक्रम खराब हो जाता था, पूरे पूरे कार्यक्रम एक छोटी सी गलती होने पर दोबारा बनाए जाते थे। ये सब मैंने आपको करते हुए देखा है कि आप एक छोटी सी गलती पर फिर से पूरे के पूरे कार्यक्रम को बनाए करते थे। ये जो आपका अनुभव है, वो जो परिस्थितियां थी आकाशवाणी की दुनिया में, आज हम एक नए युग में आ गए हैं जहां कंप्यूटर है और एक क्लिक में सारा काम हो जाता है, इस अनुभव को आप कैसे साझा करेंगे?
1: देखिए मैडम, शुरुआत में जो आपने बात बताई ना टेपों वाला
0: जी,
1: तो टेपों में उस समय जेब में कैंची रखा करता था हमेशा
0: जी,
1: और वो कैंची से इस जगह से इस प्रकार काटता था
0: जी,
1: सबसे शब्द जुड़ जाता था। पहले तो ये करता, बिल्कुल शब्द अर्थविहीन हो जा रहा है, तो फिर पूरा प्रोग्राम वापस बनाता था। और मेरे मिसेज हमेशा कहती, तुम घर पे रहते हो या नहीं रहते हो? बहुत लेट जाता था घर पे, क्योंकि डबिंग एडिटिंग स्टूडियो में सबसे ज्यादा काम पड़ता। और दूसरी बात, मेरे दूसरे साथी थे, परमार साहब तो हमेशा स्टूडियो में पड़े रहते हैं। ये कहते थे, इनके तो नाम से स्टूडियो कर दो एक बस। क्योंकि मेरा काम से बड़ा लगाव था, जुनून था मेरा, एक जुनून, जुनून ऐसा था कि मैं भुलाए भुलाए नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल पाता। ये बात है मैडम।
0: तो वो किस तरह से, आपको पता है कि जब आप कैंची रखते थे और टेपों को चिपकाए करते थे और फिर पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाते थे, पूरा समय देते थे, और फिर जब एक नया युग आया जहां पर एक कंप्यूटर हमारे सामने आ गया, हमें एडिट करना है, तो बस एक सेकंड में हम उस चीज को एडिट कर देते।

0: वो मैंने यहाँ जब मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हुआ और मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मेन स्टेशन पे काम किया, और मेन स्टेशन जो बॉम्बे का है वहां पर जब संवादिता चैनल था, संवादिता चैनल पे जो मैंने हिंदी का बहुत बड़ा चैनल था, सर तरह के प्रोग्राम करते थे उसके अंदर हम, और उसी के तहत जब हम एडिटिंग की जब बात कर रहे हैं आप, वो तो सेकंडों का काम हो गया, जहाँ घंटों का काम होता था वो सेकंडों का काम हो गया। और रही दूसरी बात कि वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर नया आता था, मुझे बड़ा शौक था सॉफ्टवेयर के काम को सीखना, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है उसकी पूरी नब्ज पकड़ लेता था। और इस प्रकार मैंने एक जर्मन से हमारे लिए सॉफ्टवेयर आया था प्रोडक्शन के लिए, उसको मैंने पूरा सीखा ए टू जेड। और यहाँ तक कि इंजीनियर लोग भाई लोग मेरे साथ में खड़े रहते थे बेचारे, आता था एक एक घंटे तक कि परमार साहब आप बताइए मुझे क्या चीज सीखना चाहते हैं इसमें, जैसे डबिंग एडिटिंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह कुछ और चाहते हो। मैंने उनको सब चीजें बताई और इस तरह से मेरा नाम दिल्ली तक उन्होंने पहुंचा दिया कि ये एक आदमी ऐसा है जो कि नया सॉफ्टवेयर को जुनून के कारण सीख गया
1: जी,
0: जबकि इसको आना जाना कुछ भी नहीं था, जुनून होता नहीं काम करने का, जुनून के कारण मैंने बहुत चीजें सीखी।
1: तो रेडियो की दुनिया में उद्घोषक की पहचान बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि वो माइक पर होता है। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे, आज आपको सुन रहे हैं, कि कार्यक्रम अधिशासी ये जो पोस्ट है ये क्या काम करती है, जो उद्घोषक के पीछे की दुनिया है, जो माइक के पीछे की दुनिया है, वहाँ पर कार्यक्रम अधिशासी का क्या काम होता है और किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देते हैं, आप बताइए थोड़ा, ताकि हमारे श्रोता जाने।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप प्रश्न उठा के लेके आ जाती है। अच्छा, इसमें जो आपने कार्यक्रम अधिशासी की बात किया
1: जी,
0: इसके अंदर जो चीजें आती थी वो चीजें मैं हमेशा, जो मेरा अनुभव था मेरी जिंदगी का, जहां जहां मैंने गलतियां की थी वो गलतियां मेरे साथी लोग नहीं करें, बस वो चीज मैं चाहता था और वो मैं उनको बताता था, भाई देखो बोलते समय यहाँ पर आप इस प्रकार बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप इस प्रकार करके अगर दूसरी बातों को जोड़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं आपको, कोशिश कीजिए इन गलतियों को आप ना करें। मैंने तो करके सीख लिया, उनको सुधार लिया, जैसे कि कई बार उच्चारण के अंदर है, हम आनंद सिंह जी करके हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई मेरे को, डबिंग एडिटिंग में मेरे शुरुआत के अंदर भी लाइव हम प्रोग्राम देते थे सूरतगढ़ के अंदर
1: जी,
0: सूरतगढ़ गंगानगर के पास पड़ता है
1: बिल्कुल
0: राजस्थान में, तो वहाँ लाइव प्रोग्राम देते थे हम, तो लाइव प्रोग्राम में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इतना ध्यान मंदा करने जी, आप तो अच्छी तरह मालूम है क्योंकि आप तो लाइव हमेशा ही बैठते हैं, आज भी बैठते हैं
1: जी,
0: तो इतना ध्यान देते थे। तो वहाँ पर तो चाचा करके थे एक हमारे साथ में बुजुर्ग आदमी, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम देते, तो उन्होंने जो चीजें सिखाई मेरे को आज भी याद है, वो चलते प्रोग्राम में वो लपड़ मार देते थे हमारे, अरे इसने गलती कर दी है यहाँ पे, और फिर उसको इससे प्यार से उसको समेट लेते थे
1: जी,
0: अरे गलती तो कर दी है, गलती करके देख इसको सुधारा कैसे जाता है मैं बताता हूँ, इसको ऐसे सुधार लो बात को, तो वो मेरे को लपड़ मार के हल्के से गाल पे ऐसे करके, अरे कैसे लगा अच्छा लगा ना, एक दादा अपने पोते को कैसे प्यार करते थे, कैसे
1: ये लाइवनेस में एक बहुत बड़ी चीज,
0: ये लाइव प्रोग्राम वो देते थे, और इस प्रकार अमित साहब थे वो, उनकी बातें बहुत मेरा लिए।
2: ये था आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सोमवार। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर,
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आज के हवा महल में प्रस्तुत है झलकी, ये भी खूब रही। लेखक उर्मिला मिश्रा, निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर।

0: अरे इतनी जल्दी हुआ है दोस्त के घर?
1: मैं तो तुमसे कहकर गया था कि फटाफट लौट कर आता हूँ। तुम्हारी याददाश्त का इस उम्र में ये हाल है, तो हमारी अम्मा की उम्र तक पहुँचोगी तब क्या होगा?
0: होगा वही जो होना होगा। जब कुछ और नहीं बोलने को तो लगे मेरा मजाक बनाने। जरा बताओ तो, तुमने मुझे कब कहा था जल्दी आने को?
1: हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें दूसरी बात भी नहीं याद होगी। क्यों
0: दूसरी बात? दूसरी बात कौन सी है? मैं कहती हूँ अगर दोबारा ही कह दोगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा, आखिर इंसान हूँ, भूल गई होंगी।
1: अब आई ना रास्ते पर, यही तो मैं चाहता था कि अपनी गलती मानो, वरना तुम औरतें बोले चली जाओगी, घंटों बहस करोगी पर अपनी गलती नहीं मानोगी।
0: अरे बाबा, अब तो मान ली ना गलती, अब तो बोलो ना।
1: फटाफट तैयार हो जाओ, गुप्ता जी के घर जाना है।
0: याद आया, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में।
1: जी हाँ, वही जाना है। पार्टी तो बस कहने की बात है, यूं समझ लो हम तुम उनके खास लोगों में हैं।
0: सो तो है।
1: हाँ, लेकिन ये सोच कर चलो कि पार्टी में नहीं डिनर में जाना है। अरे 6 बजे का समय और 5:15 बज चुके हैं।
0: अरे लेकिन लेकिन क्या खाली हाथ जाऊंगी? मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं।
1: कुछ मंगवाया भी नहीं, बस हिला दी 2 टके की जबान। हे भगवान, पत्नी मिले तो पत्नी जैसी, नहीं तो
0: नहीं तो क्या? जरा फिर से तो कहो।
1: क्या कहूँ, अजी लानत है अपनी अक्ल की। दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करता हूँ किताब पढ़ पढ़ कर, और तुम्हारे भुलक्कड़पने के इलाज की याद नहीं रहती। ठीक है, हंस लो। जब ओखली में सर डाला तो मूसलों से क्या डरना। जाता हूँ पर कहाँ जाऊँ, क्या अकल हूँ, अरे कितने का लाऊं।
0: अरे वैसे तो बड़े अकल वाले बनते हो और इतनी जरा सी बात मुझसे पूछते हो। जैसी रकम हो जेब में और जिस डिग्री की दोस्ती हो वैसा ही प्रेजेंट ले आओ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मानो तो ये प्रेजेंट का चक्कर रहने दो। बढ़िया से लिफाफे में रख कर पूरे 5 रुपए का नोट दे दूंगी।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ा खूबसूरत लगेगा ना। अजी डॉक्टर का बेटा है तुम्हारे नौकर का, नहीं आखिर अपनी भी तो कुछ इज्जत है।
0: अजी तो कौन मना करता है, जाइए जाइए, जितना जी चाहे लुटा आइए। यहाँ मैं महीने भर से एक जोड़ी चप्पल के लिए रिरिया रही हूँ, इस पर ये महीने का आखिर, कहाँ से लाऊं रोज रोज लोगों को देने के लिए बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा धंधा बना लिया है लोगों ने, जितना खिलाते पिलाते नहीं उससे चौगना तो वसूल कर लेते हैं।
1: और जब अपने छटूले की हैप्पी बर्थडे मनाती हो तब
0: क्या? मेरा तो एक ही है, साल में एक ही बार तो लेती हूँ सबसे। लेकिन यहाँ तो लोगों के 4-4, 6-6 हैं। अगले महीने फिर तैयार रहना गुप्ता जी के घर कुछ देने को। अजी तुम लोगों का क्या, ये तो हमारे दिल से पूछो कि कितनी महंगी पड़ती है दूसरों की खुशियाँ।
1: लेकिन पहुँचने के बाद तो खूब खीसे बघार कर कहती हो हैप्पी बर्थडे।
0: वो तो एक्टिंग करती हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे। अजी तुम क्या जानो, ज्यादातर लोग ऐसी ही छोटी खुशी दिखाते हैं। भूल गए उस दिन मिसेस कटारा कैसे कह रही थी, जाने कहां से चल गया है हैप्पी बर्थडे का चलन। मुए अंग्रेज चले गए पर अपनी मूंछ के बाल यही छोड़ गए इस अंग्रेजियत के रूप में।
1: लेकिन मानो या ना मानो, ये अंग्रेजियत का भूत तुम औरतों पर ही सबसे ज्यादा चढ़ा है। अंग्रेजी की ABCD नहीं लिख पाएंगी लेकिन हैप्पी बर्थडे जरूर गाएंगी। अरे ये भी कोई तरीका है कि जन्मदिन जैसे शुभ दिन पर जलती ज्योति बुझाई जाए।
0: अब बाजार भी जाओगे या यहीं खड़े खड़े भाषण देते रहोगे?
1: जाता हूँ लेकिन अब तो देर हो ही गई, थोड़ी देर और सही। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमारी अम्मा।
0: अरे बस बस, हमारी अम्मा अजी उनके गुणगान बाद में गा लेना। हाँ? पहले
1: साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारी अम्मा की तारीफ तुम्हें सुहाती नहीं, उनकी बराबरी कर लेना तब कहना।
0: मुझे नहीं करनी उनकी बराबरी।
1: हाय क्या धूमधाम से मनाती थी वो हमारी सालगिरह। नए कपड़े, माथे पर तिलक, मंगल दीप, पूजा पाठ, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे हम लोग। आजकल के बच्चों की तरह माँ बाप से तय नहीं करते थे कि अब की बर्थडे पर ये देना वो देना।
0: ओहो, मुझे तो लगता है आज तुम ऑफिस से भांग खा कर आए हो, अभी तो इतनी जल्दी थी और अब।
1: हाँ हाँ, अब क्या, हमारी अम्मा की बात। हाय हाय, ढोलक मजीरे के साथ जो गीत होते थे वो तुम क्या जानो। अम्मा का एक गाना तो अभी तक याद है, क्या कहते, हाँ लाल।

0: अभी झूलेंगे हो लाल को बाद में गाना और तुम भी बाद में झूला झूलना। मैं कहती हूँ पहले बाजार तो जाओ।
1: जाता हूँ अभी गया, बस ये गया और ये आया।
0: ये गया और ये आया। अच्छी प्रेजेंट लेने जा रहे हो या हरी धनिया की गड्डी? भक्ते तो हो ही गई है, थोक बचा कर पैसे खर्च करना, पैसा फालतू का नहीं है।
1: ओ, ओ, अरे अब जाने तो दो।
0: एक बात तो रही गई।
1: क्या?
0: तुम्हारा हाल तो मैं जानती ही हूँ, ऐसे ही बस पैकेट लेके चले आओगे, जरा रंगीन कागज में बंधवा कर लाना।
1: अच्छा भाई ठीक है।
0: ठीक तो है, मगर सुनो, वो एक चिट पर कुछ छपा रहता है मुआ अंग्रेजी में, वो भी लगवाए लाना पैकेट पर, समझ गए ना?
1: ओ, ज्यादा समझाओगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, अब जाने भी दो।
0: अरे तो जाओ ना, कौन रोके है तुम्हें, बस जरा सी मेरी एक बात सुनते जाओ।
1: अभी क्या कुछ और बाकी रह गया है सुनाने को?
0: देखो जी, जल्दी जल्दी मत जाना, सड़क पर बड़ी भीड़ रहती है, देर तो हो ही गई है। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जितनी देर में पहुंचेंगे उतने ही इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
1: क्यों नहीं, तुम्हें तो कोई और काम है ही नहीं, और भी कोई फिक्र है सवाए खाने के? अच्छा तो मैं जाऊं?
0: जाओ ना। आइए बैठिए, आज इधर कैसे भूल पड़ी?
2: अरे अपनों ही के घर तो इत्मीनान से आया जाता है ना, क्यों मिसेस कटारा?
3: और नहीं तो क्या? आप कहीं से अभी अभी आ रही हैं क्या?
0: आई नहीं हूँ, जा रही हूँ, असल में एक जगह हमारी दावत है आज वहीं।
3: अरे हम तो आए थे कि भाई आज जमकर यहीं बैठेंगे।
2: फिर तो भला तुम हमारे लिए चाय भी कहाँ बनाओगी? आइए ये मिसेस कटारा।
3: 25 रुपए, हे भगवान कितना समझा कर भेजा था तो भी।
1: अरे जाने भी दो, आजकल क्या होते हैं 25 रुपए?
3: क्यों नहीं होते, अब देख ले क्या लुटा देंगे वो अपने गुड्डू के जन्मदिन पर।
1: ओफो, तुम औरतों के दिल कभी साफ नहीं होते।
0: और तुम मर्दों के तो होते हैं, धोबी के धुले कलप लगे क्या?
1: और नहीं तो क्या, तुम औरतों की तरह नहीं कि सामने तो म्याऊं और पीठ पीछे गाली। अरे ये क्या, कोई आया था क्या? ये कुर्सियाँ?
0: आया नहीं, आई थी तुम्हारे चहेतों की खाऊ बीवियां मिसेस कटारा और मिसेस तलवार। कितनी मेहनत से डोसे का घोल तैयार किया था, हाय हाय छाले पड़े मेरे हाथों में और स्वाद ले रही होंगी वो दोनों। ले गई उठा के साला अपने घर।
1: अरे छोड़ो, सुनो आज हमें जो कुछ खाने को मिलेगा उसके आगे डोसे क्या चीज है, चलो चलो ना।
0: अच्छा चलो। सुनो जी, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है।
1: हो सकता है सिर्फ हमें ही बुलाया हो, आगे बढ़ो तो।
0: क्या बढ़ूं आगे, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई बर्थडे नहीं है। सुनो, मिसेस गुप्ता एक दिन अपनी बहन के कोठे के बड़े भारी लोन की टींगी हांक रही थी।
1: अच्छा?
0: मुझे लगता है कि बर्थडे पार्टी उसी लॉन में होगी।
1: नहीं नहीं, अरे भाई हाँ, गुप्ता जी मुझसे एक दिन किसी होटल की चर्चा कर रहे थे।
0: होटल?
1: हाँ मुझे लगता है वहीं पर।
0: लेकिन मैं कहती हूँ उनकी बहन के घर चलने में आखिर हर्ज क्या है?
1: मैं कहता हूँ उस होटल में चलो तो। लो गुप्ता जी और मिसेस गुप्ता आ गए। मैं कहता था मेरी बात हमेशा पक्की होती है, सिर्फ हमें ही बुलाया था। नमस्कार
0: नमस्कार
4: नमस्कार। अंकल नमस्ते, आंटी।
0: अरे हैप्पी बर्थडे बेटे, ये लीजिए आपके लिए प्रेजेंट।
4: थैंक यू अंकल आंटी, लेकिन।
5: अरे तो क्या हुआ बेटे, लगता है तुम्हारे अंकल आंटी को तारीख के मामले में कुछ भूल।
1: क्या क्या बर्थडे?
5: जी हाँ वो तो कल है। अरे तो क्या हुआ, अरे आइए आइए अंदर आइए।
1: जी अंदर नहीं, आप तो यही बाहर रहने दीजिए, अब जाने भी दीजिए, देर हो जाएगी।
0: हाँ।
1: हमें दूर जाना है ना।
4: हाँ, हाँ। कल तो आना ही है, आएंगे ना?
5: अरे क्यों नहीं, हाँ, क्यों नहीं, हाँ, भाई कल तो आना,
1: हाँ,
5: है।
1: हाँ, हाँ, जरूर आएंगे बेटे। अच्छा अब चले।
0: हाँ, लो अब क्या होगा?
1: होगा क्या, कल फिर आना होगा, आना ही नहीं कुछ प्रेजेंट भी लाना होगा।
0: प्रेजेंट तो आज दे तो चुके।
1: लेकिन लोग तुम्हारी सहेलियां सब क्या कहेंगे, उनके दिखाने के लिए तो।
0: हे भगवान कैसा मन हो उस दिन था आज का।
1: अरे भाई अब चलोगी भी, यहाँ तो तुम्हारे भूख के पेट में चूहे उचक रहे हैं।
0: हाय हाय, मेरा डोसे का घोल होता तो डोसे बन जाते, खा रही होंगी वे दोनों चटखारे मार मार।
1: ओहो क्या, उसके अलावा और कुछ नहीं है घर में?
0: है क्यों नहीं, लेकिन सुनो

0: चलो मिसेस कटारा के घर चलते हैं, अभी तो उसे बन ही रहे होंगे।
1: हाँ ये ठीक है, चलो चले।
2: किसको चाहते हैं आप?
0: मेम साहब है घर पर?
2: साहब घर पर कोई नहीं है।
1: क्या कहाँ गए सब?
2: मेम साहब की सहेली के घर गए हैं, आज तलवार मेम साहब के साथ दोसे की दावत में।
1: दोसे की दावत में? लेकिन दोसे का घोल तो हमारे घर से लाई थी, उसका क्या हुआ?
2: अरे साहब उसी घोल के तो दोसे खाने गए हैं वो लोग, मेम साहब को तो दोसे बनाना आता ही नहीं था, उनकी सहेली ने कहा मैं बना दूंगी, बस चले गए वहीं सब लोग।
0: लो जी यहाँ भी सारा मामला साफ है।
1: अरे गए काम से। क्या हुआ इतनी जोर से चौंकी क्यों?
0: अरे घर में गैस पर चाय का पानी चढ़ा था और गैस बंद नहीं की थी। हाय हाय इन दोनों कमबख्तों ने तो आज मेरा कबाड़ा ही कर दिया, डोसे का घोल गया। अब देखो भगोना भी सही सलामत नहीं होगा और गैस का सिलेंडर जरूर खाली हो गया होगा। अब घर किस हालत में मिलता है?
1: वाह

उर्मिला मिश्रा की लिखी झलकी आप सुन रहे थे, ये भी खूब रही। निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर।

0: आकाशवाणी का जी अयोध्या केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।

दोस्तों, फिल्मों की संख्या और लोगों तक पहुंच के मामले में बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल सैकड़ों की संख्या में यहाँ फिल्में बनती हैं और हजारों की संख्या में गाने रिलीज होते हैं। इन्हीं हजारों और लाखों गीतों में से हम आज आपके लिए लेके आए हैं 5 सुपरहिट गीत। जी हाँ दोस्तों, 50 और 60 के दशक में राज कपूर ने अनेक हिट्स दिए, जिनमें से एक आवारा भी थी। इस फिल्म के हिट होने में आवारा हूं गाने का भी एक बड़ा हाथ था। इस गाने में राज कपूर 1947 के विभाजन के बाद की त्रासदी झेलते हुए एक व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे थे, जो बड़ी उमंग में गाना गा रहा होता है। राज कपूर का आम आदमी का चार्म और करिश्मा भारत में ही नहीं, सोवियत यूनियन और चीन में भी चला। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म आवारा से ये गाना।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

फिल्म गाइड का ये गीत जिंदगी जीने की सोच को एक उमंग भरा योगदान देता है। इस गाने में लता मंगेशकर की नशीली आवाज एक बेपरवाही भरी आजादी का उद्घोष करती है। इस फिल्म में नायिका रोजी अपनी नाखुश शादी से तंग आकर एक टूर गाइड राजू के साथ प्रेम में पड़ जाती है। रोजी का किरदार वहीदा रहमान और राजू का किरदार देव आनंद निभाया था।

0: नहीं नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों आराधना से ही पहली बार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने सफलता का स्वाद चखा था। आराधना में राजेश खन्ना की एंट्री इसी गाने से होती है। सड़क के किनारे से जाती टॉय ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर को देखते हुए जीप में बैठे झूमते इतलाते गाना गाते राजेश खन्ना अभिनीत ये गाना जब आया तो इसकी धूम मच गई।

0: की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गीत को बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक कुमार सानू और लता मंगेशकर ने गाया है। शाहरुख खान और काजोल की राज सिमरन की जोड़ी इस गाने से अमर हो गई। इस गाने की एक एक चीज, इसका म्यूजिक, सरसों के खेत, शाहरुख का मैंडोलियन, काली जैकेट और सफेद कपड़ों में खड़ी काजोल, सब कुछ एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार, पहले हिंदी में इसके बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया।

0: सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधान

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग

0: 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है, 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: सन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय दस कैसा है धूप?
2: बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे मौसम में खुद को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है।
1: जैसे आप अभी आई
2: जी,
1: तो आपने क्या प्रिकॉशन लिया जो आम लोग ले सकते हैं?
2: आने के बाद हम डायरेक्ट एसी में नहीं आए, थोड़ी
1: हाँ।
2: देर तक अपने आप को पहले टेम्परेचर अपना सेट किया
1: हाँ।
2: और उसके बाद फिर पानी पिया
1: हाँ।
2: पानी पीने के बाद अब बैठे हैं प्रोग्राम
1: तो रिलैक्स हो गई
2: जी, थोड़ा रिलैक्स फील
1: हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग खुद किताबत
2: जी।
1: सबसे पहला संदेश किसका है?
2: पहला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता है विष्णु मिस्किन रितिका वाणी आरोच काशीनाथ संगीता आरोही प्रियांशी सोनी।
1: काफी सारे लोगों ने मिलकर लिखा, क्या लिखते हैं?
2: ये सभी लिखते हैं कि हम सभी परिवारजन नियमित रूप से आपके कार्यक्रम बड़े ही ध्यान और उत्साह के साथ सुनते हैं,
1: तो इनको धन्यवाद तो बनता है
2: जी। बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपका कार्यक्रम सुनना, उसको गुनना और अपनी बातों को संदेश के रूप में हम तक पहुंचाना
2: जी। आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों में अपनापन ज्ञान मनोरंजन और संस्कारों की सुंदर झलक देखने को मिलती है।
1: क्या बात है,
2: यही कारण है कि हर कार्यक्रम दिल को छू जाता है और पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता है।
1: अब इतनी सारी बातें हमारे जो प्रस्तुत सुनते हैं
2: जी।
1: तो वो उत्साहित हो जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अब बस ये कहना है कि वो फूल के गुप्पर नहीं होते हैं लेकिन उत्साह तो उनमें भरता है
2: जी। कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों की फरमाइश और श्रोताओं के संदेश सुनकर अच्छा लगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति इतनी मधुर और शानदार रहती है कि समय का पता ही नहीं चलता। हम भी अपने संदेश बड़े ही उत्साह से लिखकर भेजते हैं।
3: बिल्कुल सही बात,
2: और जब कभी नाम सुनाई देता है तो बहुत खुशी होती है। हमारी छोटी सी विनती है कि श्रोताओं के संदेशों को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि दूर दूर से भेजे गए भावनात्मक संदेश भी अधिक सुनाए जा सके।
3: विष्णु भाई, आपका नाम गुमनाम नहीं है
2: जी,
3: आपका नाम तो पूरा फैला हुआ है और बराबर आपके संदेश आते ही हैं। रही बात इसकी कि जो कुछ आप लिखते हैं उसी पर तो हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आपने दो लाइन ही लिखा तो हम कितनी देर तक जब करते रहेंगे
2: जी। बिल्कुल, और जो भी सुविचार आते हैं उनको पढ़ने की पूरी कोशिश भी की जाती
3: बिल्कुल,
2: है।
3: बिल्कुल,
2: आगे लिखते हैं कि अंगना कार्यक्रम में सरस्वती पाठक जी और यीशु दुबी की जो प्रस्तुति थी बहुत ही सुंदर थी। कार्यक्रम का जो संयोजन था बहुत सुंदर था। गांव परिवार और समाज से जुड़ी बातें सुनकर मन प्रसन्न हो गया, ऐसा लगा जैसे अपने घर आंगन की बातें सुन रहे हो।
3: बिल्कुल सही बात है, देखिए हम सब कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़े हुए हैं
2: जी।
3: तो जब गांव की बातें आती हैं तो अपना पीछे का जीवन यानी बचपन याद आता है।
2: आगे लिखते हैं किसानवाड़ी कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है
3: जी।
2: सरजू और हरी जी के साथ प्रस्तुत इस कार्यक्रम में खेती मौसम और किसानों से जुड़ी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में दी जाती है। ऐसे कार्यक्रम किसानों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं
3: जी।
2: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद गुप्ता जी द्वारा जो उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर दी गई जानकारी को अत्यंत लाभदायक लगी।
3: बिल्कुल जी, अभी जो तुरंत प्रसारित हुई थी कल ही
2: जी। आगे लिखते हैं कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें स्वास्थ्य संबंधी ऐसी जानकारियां समाज के लिए बहुत जरूरी हैं
3: जी।
2: बाल जगत कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और मनोरंजक होता है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस, फास्ट फूड के नुकसान, गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की रोचक जानकारी और बाल गीत बहुत ही अच्छे लगे। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं।
3: बिल्कुल सही बात है जी।
2: बस एक छोटा सा सुझाव है कि यदि इस कार्यक्रम का समय सुबह रख दिया जाए तो अधिक बच्चे इसे सुन पाएंगे, और क्योंकि दोपहर में कई बच्चे सो जाते हैं।
3: ये बात तो इन्होंने सही कहा, लेकिन बाल जगत का एक कार्यक्रम महानिदेशालय द्वारा निर्धारित किया हुआ है
2: जी।
3: कि कब इसको होना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है बहुत सारे बच्चे, अगर सुबह प्रातः काल के समय में 10 बजे तो इसको प्रसारित नहीं किया जा सकता, तो उस समय सब अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण से ऐसे समय में इसको रखा जाता है जब सब लोग कापी के खाली रहे
2: जी। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। खेल प्रशिक्षकों के अनुभव और खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है
3: जी।
2: आकाशवाणी अयोध्या के सभी प्रस्तुतकर्ताओं, निर्माताओं और पूरी टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह ज्ञान, संस्कृति और मनोरंजन को भरपूर मात्रा में सुनाते रहें, प्रस्तुत करते रहें।

0: और श्रोताओं का प्यार पाते रहें।
1: नेहा देखो, विष्णु जी ने कितना सुंदर तरीके से हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर विचार किया, क्या अच्छा लगा, कैसे और अच्छा लग सकता है, ये सारी बातें इन्होंने बहुत डिटेल में लिखी।
0: और इससे पता भी चलता है कि ये हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते हैं और उनमें क्या और सुधार हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये भी हमें
1: तो हम विष्णु मस्किन जी को धन्यवाद देते हैं आकाशवाणी के पूरे परिवार की तरफ से।
0: जी,
1: अगला संदेश किसका है?
0: अगला संदेश जो आया है वो आया है हमारे पास ग्राम तैयारी जिला सुल्तानपुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता है शमा परवीन, आयतल फातिमा, अफलक फातिमा, अफजल।
1: समा परवीन जी क्या लिखती हैं, क्या संदेश दिया इन्होंने?
0: लिखती हैं, आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत आदाब। इस बार हमारा मैसेज पूरा पढ़ा गया तो बहुत अच्छा लगा। नेहा मैम ने पूरा मैसेज पढ़ा और पूरा विस्तार से, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपके प्रोग्राम के लिए, आपके सारे प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और बातें आसपास की रोज आता था पहले, पर अब सिर्फ दो दिन आता है ये प्रोग्राम, हमको अच्छा लगता है। 1 मई को 2 मई को इन दोनों दिन का प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा। 4 मई 6 मई 8 मई का प्रोग्राम भी इनको बहुत ही पसंद आया। प्रणाम अयोध्या प्रोग्राम इनको बहुत ही अच्छा लगता है। एक साथ बहुत सारी जानकारी, गाने, बातें, बहुत सारी कुछ इनको ज्ञानवर्धक चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती हैं। श्याम सुहानी, गीत गुंजन, आपके संदेश, आपके गीत, और यहाँ तक कि जो विविध भारती से भी प्रोग्राम सुनवाए जाते हैं आकाशवाणी अयोध्या के माध्यम से,
1: वो भी इनको अच्छा
0: लगता है। भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं,
1: शमा जी को और उनके पूरे परिवार
0: जी
1: को।
0: हाँ। और उमंग कार्यक्रम भी जो जाता है वो भी इनको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगता है।
1: हाँ।
0: 4 मई का 5 मई का 8 मई का और 15 मई 16 मई का इनको हेलो अयोध्या कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, जो की शोभित सर, विवेकानंद सर और अमरजीत सर के द्वारा किया गया। और आखिरी में दो लाइन्स लिखती है ये कि लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपना किरदार ऊंचा बना लो।
1: क्या बात है,
0: कि लोग आपको सुनने का इंतजार करें और जब आप बोलो तो आपके शब्दों में आपके कर्मों की साफ झलक हो।
1: क्या बात है समा जी, आपने एक बहुत ऊंची बात कह दी है, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी आवाज से नहीं, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। और नेहा के माध्यम से ही नेहा को धन्यवाद आपने दिया, ये भी बहुत अच्छा लगा। और आप पूरे कार्यक्रमों को सुनती हैं, गुनती हैं और अच्छे से आपने एक विश्लेषण भेजा हमको। आगे भी हमें उम्मीद है कि समा जी आप अपना विश्लेषण कार्यक्रमों को सुनकर ऐसे ही भेजती रहेंगी हमें।
0: वैसे भी शमा जी के जो संदेश हैं वो हमें लगातार मिलते रहते हैं सभी कार्यक्रमों में,
1: तो फिर एक बार धन्यवाद इनको
0: जी। अगला जो संदेश है वो आया है बेलसर जिला गोंडा से। लिखने वाले मरीज होता है कुमकुम, अनु, रिवांशी, माही, कंचन। आप सभी लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी उद्घोषक को हम सब की तरफ से नमस्कार।
1: नमस्कार हम सब की तरफ से भी आपको
0: जी। आगे लिखते हैं कि हम व्हाट्सएप संदेश में मैसेज करते हैं तो हम लोगों का संदेश जल्दी शामिल नहीं किया जाता। अगर कभी कभार शामिल भी करते हैं तो हमारी जो पसंद का गाना होता है उसे सुनवाया नहीं जाता। और अमरजीत सर से हमारी शिकायत है कि वो एक दिन में एक साथ 2 श्रोता से उन्होंने बात की, जिन्होंने फोन लगाया था उन्होंने अपने दोस्त को लाइन पर लेकर बात करवाई और उनका फोन भी अक्सर लग जाता है, फिर भी अमरजीत सर ने ऐसा क्यों किया?
1: बिल्कुल सही बात है कुमकुम, आपने जो भी कुछ कहा है वो हम नोट करते हैं और इसकी क्वेरी जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था
0: जी,
1: और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा
0: जी। और अनु जी का जो एक शिकायत है कि इनके मैसेज जो है व्हाट्सएप संदेश वाले
1: ऐसा कैसे
0: शामिल होते, आज सुबह ही मैंने शामिल किया है इनका संदेश जो है और इन्हीं की पसंद का गाना भी सुनवाया है।
1: तो दोनों बातें खत्म हो गई
0: जी,
1: आपकी पसंद का गाना भी बजा, आपका संदेश भी गया।
0: हाँ।
1: तो जो आज की शिकायत थी वो अंदर रह गई अब पन्ने में, और मुझे उम्मीद है कि आगे आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे आप सभी लोग आकाशवाणी परिवार से। हाँ? और क्या
0: अगला जो संदेश है वो आया है हमारे पास विजय यादव का, ग्राम डंडवा पोस्ट खालिसपुर जिला जौनपुर से।
1: क्या लिखते हैं विजय यादव?
0: आप लिखते हैं कि सर हम नया रेडियो लेकर आए हैं।
1: क्या बात है, आपको बधाई।
0: फिर भी आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड नहीं पकड़ता है।
1: ये बात सही है, चूंकि जौनपुर की दूरी है यहाँ से। अब आप जौनपुर में किस क्षेत्र में रहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वादा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में
0: जी
1: ऐसा होगा,
0: होगा
1: कि आप इसको भी सुन पाएंगे। आप एरियल लगाएं ऊपर बैठे तो शायद ये पकड़ ले
0: जी। आगे लिखते हैं कि सर वर्तमान में कितने किलोवाट का ट्रांसमीटर लगा है और नया जो लगने वाला है वो कितने किलोवाट का लगेगा, और अभी कितने दिन में लगे, क्योंकि 101.9 ही सुनता हूँ और सर जो

0: लगेगा उसका रेंज कितने किलोमीटर का होगा।
1: हमको खुशी इस बात की है कि हमारे विजय भाई को वो सारी जानकारी है जो डायरेक्टरेट को है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल 6 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यदि ये सब संभव हो गया जो कि प्रक्रियागत है, तो 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगेगा और निश्चित ही आपको सुनाई देगा। तब तक आप ऑनलाइन सुने
0: जी, तब तक मोबाइल का प्रयोग करें, उस पर आप ऑनलाइन हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: बिल्कुल, हर तरह से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आपने इतना प्यार दर्शाया, इतनी सारी जानकारी आपने इकट्ठा करके रखी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम आपका।
0: जी, अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है नेहा का धारा रोड से। आप लिखती हैं कि कार्यक्रम लोक सुरमाला बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है दीदी लोगों की, सारी जानकारी बेहद लाभप्रद होती है और मीठे मीठे लोकगीत सुनकर तो बड़ा ही मजा आता है।
1: क्या बात है,
0: बन्नी के कोमल कोमल गीत, ये जो गीत है इनको बहुत पसंद आता है।
1: हाँ, जब भी बच्चा होगा तो ये प्रसन्न हो जाती
0: है, इनको बार बार सुनने का मन करता है।
1: बिल्कुल, तो पड़ोसी है, आप ही जाना चाहिए
0: जी। अब अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है रूपेश मिश्रा का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी हम सभी की तरफ से। रुपेश जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।

0: जानकारी बेहद लाभप्रद होती है और मीठे मीठे लोकगीत सुनकर तो बड़ा ही मजा आता है।
1: क्या बात है,
0: बन्नी के कोमल कोमल गीत, ये जो गीत है इनको बहुत पसंद आता
1: पसंद है।
0: हाँ,
1: जब भी बच्चा होगा तो ये प्रसन्न हो जाती
0: है जी, इनको बार बार सुनने का मन करता है।
1: बिल्कुल, तो पड़ोसी हैं तो आप ही जाना चाहिए
0: जी। अब अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है रुपेश मिश्रा का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
1: हाँ,
0: आप लिखते हैं कि आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी हम सभी की तरफ से। रुपेश जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और पत्र भी लिखते रहते हैं बराबर। हाँ
0: जी, पर आज इनका पत्र बहुत ही छोटा सा आया है।
1: हाँ, कुछ जल्दी में रहे होंगे
0: जी,
1: नहीं तो ये विशेषण पूरा करते हैं।
0: हाँ, आज इन्होंने लिखा है कि 7 मई को दिशा पांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया युवा संवाद कार्यक्रम इनको बहुत ही बेहतरीन लगा।
1: हाँ ठीक
0: जी, और आज इतने छोटे से संदेश में इन्होंने अपनी बात पूरी समेट दी।
1: हाँ समेट दी, तो आगे हम उम्मीद करते हैं रुपेश जी कि दिशा तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे ताकि दिशा की हौसला अफजाई हो सके और इस उम्मीद के साथ कि अन्य सभी कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर जांच परख करके आप जो है अपना एक संदेश आगे वाले आने वाले पत्रोत्तर कार्यक्रम के लिए, हमारे पत्र मिला कार्यक्रम के लिए जरूर लिखेंगे।
0: एक और संदेश हमारे पास आया है पूरे मिसिर मिल्कीपुर खंडासा से।
1: हाँ,
0: लिखने वाले मेरे श्रोता है शिवानी मिश्रा। आप लिखती हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के समस्त कार्यक्रमों के प्रति अपनी हार्दिक प्रतिक्रिया और सुझाव प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।
1: हाँ।
0: यहाँ प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम न केवल ज्ञानवर्धक हैं बल्कि श्रोताओं के साथ एक आत्मीय जुड़ाव भी स्थापित करते हैं। हेलो अयोध्या कार्यक्रम विशेष रूप से बहुत सराहनीय है। सदक सर, नेहा मैम, दीपिका मैम, अमरजीत सर और शोभित सर, सभी की प्रस्तुति शैली अत्यंत प्रभावशाली, सहज और दिल को छू लेने वाली है। आप सभी जिस आत्मीयता से श्रोताओं से संवाद करते हैं वह इस कार्यक्रम को और भी खास बना देती है। खैर, मेरा कॉल तो अभी तक लगा नहीं है।
1: ओहो, इसका मतलब शिवानी के मन में दुख है
0: जी,
1: और प्रयास भी लगातार है और प्रयास ही सफलता की एकमात्र कुंजी है
0: जी। आगे लिखते हैं कि अमृत कलश कार्यक्रम में नेहा मैम की मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून और भक्ति रस है जो श्रोताओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात है शिवानी। हाँ,
0: आगे लिखती है कि इसी तरह खेल खिलाड़ी, कुछ तुमने कहा, गीतांजलि और कृषि जगत जैसे कार्यक्रम भी अपने अपने विषय में अत्यंत उपयोगी, रोचक और जानकारी से भरपूर हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और जागरूकता भी प्राप्त होती है जो वास्तव में सराहनीय प्रयास है
1: जी।
0: अंत में आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी इसी तरह अपने कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं के दिलों में स्थान बनाते रहेंगे और नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहेंगे।
1: नेहा
0: जी,
1: जैसे जैसे हमारे श्रोताओं का प्यार आकाशवाणी परिवार को प्राप्त होता है वैसे वैसे हमारे अंदर उत्साह बढ़ता रहता है
0: जी,
1: और हम विभिन्न जगहों से तमाम चीजों को खोज के ले आते हैं
0: जी,
1: उन श्रोताओं के लिए, और परोसने की कोशिश करते हैं। यद्यपि हमें ये मालूम है कि उसमें से बहुत सारे श्रोता उन चीजों को जानते रहते हैं
0: जी,
1: फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हमें जो कुछ नया मिला वो हमारे श्रोताओं तक जरूर जाए। इसी प्रयास में हम अपने श्रोताओं से लगातार जुड़ते रहते हैं और जब उधर से उनके संदेश हमें आते हैं तो उस सकारात्मक संदेश से हमें पता चलता है कि जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी आकाशवाणी की सफल रहा।
0: यही जो हमारे श्रोताओं की सकारात्मक जो संदेश होते हैं यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं जी। अगला जो संदेश है वो आया है हमारे पास बनवारी लाल जयपाल का, गांव अरायन, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से।
1: क्या लिखते हैं बनवारी लाल जी?
0: आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या नंबर वन है जो प्रस्तुत किया जाता है, हमें बहुत खुशी होती
1: मैं तो गदगद हो गया। हाँ, क्या बात है, वाह बनवारी लाल जी, आपके मुंह में घी शक्कर
0: जी। आगे लिखते हैं प्रोग्राम सुनकर मजा आ जाता है। अंगना, आपके संदेश, आपके गीत, हेलो अयोध्या, कुछ तुमने कहा, गीतांजलि, नारी जगत, किसानवाड़ी, अमृत कलश, सुर संगम, लोक रंग, प्रणाम अयोध्या, हेलो अयोध्या, युवाड़ी, एक साथ बैठकर पूरा परिवार सुनता है।
1: यानी ढेर सारे कार्यक्रम
0: जी। आपके कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लगते हैं, प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है।
1: बनवारी लाल जी, ऐसे ही अपनी खतों किताबत आकाशवाणी अयोध्या के साथ जारी रखिएगा
0: जी,
1: हम अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयत्न सदैव करते रहेंगे। फिर भी तभी बेहतर हो सकता है जब हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन आकाशवाणी परिवार को मिलता रहे। तो देखिए नेहा जी, घड़ी इशारा कर रही है तो हम लोग लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और श्रोताओं से कहते हैं
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा

0: साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
3: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 90-44-20-70-70।
0: आपका हमनवा आपका मेजबान आपका हमदम आपका दोस्त हाजिर है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। इस नंबर पर करिए कॉल और हमसे कीजिए अपनी दिल की बातें। हेलो जी नमस्कार स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं क्या नाम है आपका?
4: रमेश
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? माया बाजार से। रमेश जी क्या करते हैं आप थोड़ा तेज बोलिए।
4: खेती बाड़ी देखते हैं करते हैं।
0: तो आजकल अच्छा जानवर भी रखे हैं?
4: हाँ दो गाय रखे हैं।
0: अच्छा तो यानी घर में इस्तेमाल करते हैं उसके दूध वगैरह की बेचते भी हैं बाहर?
4: हाँ जाता है दूध बाहर।
0: अच्छा बाहर भी जाता है। तो आजकल खेती में क्या काम कर रहे हैं?
4: सब्जी लगाए।
0: तो दोपहर में जाना पड़ता है खेत में तो क्या उपाय करते हैं आप?
4: दोपहर व्यवस्था क्या है ना दोपहर नहीं जाना पड़ता।
0: अच्छा हाँ ये तो है धूप बहुत तेज हो रही है तो अपनी व्यवस्था आपने बना ली है सुबह और शाम को जाते हैं।
4: बचाव करना है ना।
0: जी स्वास्थ्य का जो है बचाव भी करना है और काम भी करना है
4: तो सुबह शाम होता है।
0: जी बहुत अच्छा। रमेश जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
4: नील कमल
0: का कौन सा गीत?
4: आजा तुझको प्यार मेरे गीत।
0: रमेश जी की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं नील कमल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: नील कमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रमेश जी की फरमाइश पर, जिन्होंने हमें माया बाजार से फोन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर, तो उठाइए फोन, डायल करिए 7376804090। तो आइए देखते हैं हमारे किस कॉलर ने हमको याद कर लिया। हेलो
1: जी सर। हाँ जी सर,
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में।
1: हाँ जी सर, बढ़िया।
0: कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: राम जी यादव।
0: राम जी यादव ने कहाँ से फोन किया है?
1: ये सर मैं गांव पलिया से किया हूँ।
0: पलिया, ये कहाँ पड़ता है पलिया?
1: ये सर रसूलाबाद, ये जो सूरज कुंड है उसके आगे वाले रोड पर पड़ता है।
0: अच्छा, तो सूरज कुंड आपके घर से कितनी दूरी पर है?
1: होगा करीब 12 किलोमीटर।
0: कभी गए हैं सूरज कुंड आप?
1: सर बहुत जाए गया हूँ और दर्शन भी बहुत करने जाता हूँ।
0: हाँ, तो वहाँ के बारे में कुछ बताएं, वहाँ की कुछ खासियत के बारे में बताएं।
1: अरे सब तक ठीक है, अब देख लिया सूरज कुंड पहले नहीं बना था, अच्छा बन गया, जो घूमता रहता।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं राम जी?
1: हाँ जी सर,
0: क्या करते हैं?
1: अरे अभी सब काम वाम करता, कहीं नौकरी वगैरह अपन ज्यादा था, दुकान वुकान पर रहता था वहीं से।
0: अच्छा अच्छा, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? अच्छा चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं जंजीर फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में।
1: हाँ जी
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है मोहटी प्रसाद तिवारी।
0: कहाँ से फोन किया है आपने?
1: अयोध्या के करीब से, आनंद नगर चौरी जिला बस्ती।
0: अच्छा, जिला बस्ती लगता है आपका।
1: हाँ।
0: भगवती जी क्या करते हैं आप?
1: बस आराम यही करता हूँ साहब, सांस नहीं ठीक रहता है कुछ, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के वजह से आराम ही घर पे ही रहता हूँ। यही सब घर का बर बजार देखभाल ऐसी वैसी, बस यही सब और कुछ नहीं, गौ है उन्हीं की सेवा में रहता हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप, और आकाशवाणी का साथ भी रहता होगा आपका।
1: हाँ, सुनता रहता हूँ साहब प्रोग्राम, हम सर 1960 से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: जी जी, आप हमारे पुराने श्रोता हैं। जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमें यही रोटी कपड़ा और मकान का सुना दीजिए सर।
0: कौन सा गाना?

0: जाना वही जो सरदार पे फरमाया गया है, महंगाई मार गई, पहले मुट्ठी में पैसे जाता था तो थैला भर के आता था।
1: जी जी जी, ये गाना हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जानना चाहते हैं भगवती प्रसाद जी की, आज पहली बार आपकी कॉल लगी कि इससे पहले प्रयास कर चुके हैं और बात हो चुकी है हमारी आपसे?
0: नहीं, एक बार और लगा था सर, लेकिन बात नहीं हो पाया था, फोन कट गया था। और तो मैं ट्राई करता हूँ आज 3-4 महीने से फोन का, लेकिन तो लग नहीं रहा।
1: चलिए, आज आपकी खुशकिस्मती थी कि आज बात हो पाई, आज आपका फोन भी लग गया। फिर कोशिश करिएगा, फिर बात होगी।
0: मैं अभी भी 9:30 बजे से ट्राई कर रहा हूँ, करते करते करते अभी लग गया।
1: देखिए, सफलता मिल गई, हमें भी खुशी हुई आपसे ज्यादा कि आप इतना प्रयास कर रहे थे और आज हमारी आपसे बात हो गई। धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: मैंने कहा उल्फत तेरी।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: जिस कार्यक्रम का आप करते हैं दिन भर इंतजार, जी हाँ, उसका नाम है सजी फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। इस नंबर पर करिए कॉल और हमसे कीजिए बातें और सुनिए अपनी पसंद का गीत। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। जी कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
3: सर राधे राधे, मैं सलोनी शुक्ला बोल रही हूँ। सर
2: सलोनी जी कहाँ से बोल रही हैं?
3: सर मैं अयोध्या से बोल रही हूँ।
2: क्या करती हैं आप?
3: मैं स्टडी कर रही हूँ इस टाइम।
2: स्टडी कर रही हैं, पहली बार कॉल लगी है कि इससे पहले बात हो चुकी है इस कार्यक्रम में?
3: नहीं सर, फर्स्ट बार लगी, काफी टाइम से कॉल ट्राई कर रही।
2: चलिए, सौभाग्य आपका कि आज हमारी आपसे बात हो रही है। पहली बार प्रयास कर रही थी काफी दिनों से, लेकिन बात पहली बार हो रही है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
3: सर कभी खुशी कभी गम का बजा दीजिए।
2: कभी खुशी कभी गम, ये फिल्म देखी है आपने?
3: जी सर।
2: तो इसका ये गीत ज्यादा अच्छा लगता है आपको?
3: जी।
2: इसमें दो गीत हैं, एक सोनू निगम की आवाज में है, एक लता मंगेशकर की आवाज में। कौन सा गीत सुनना चाहिए?
3: लता
2: मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। सुनिए, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फॉर इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। अपना जल्दी से परिचय दे दीजिए।
2: सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं अंबरपुर मनकापुर गोंडा से।
1: चलिए, मनकापुर गोंडा से भी कॉल आ गई। क्या करती है स्वाति सिंह जी?
2: सर पढ़ाई करते हैं, आईटीआई कर रहे हैं। वैसे पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है सर, बस यही आईटीआई कर रहे हैं। अब घर पे रहते हैं, घर का काम काज करते हैं।
1: तो आईटीआई जो कर रहे हैं वो किस स्टेट से कर रही हैं?
2: सर कॉस्मेटोलॉजी से कर रहे हैं।
1: तो इस स्टेट में क्या बताया जाता है
2: सर? इसमें सर जैसे पेंटिंग करना, डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स हो, जैसे चाइना से मतलब डिजाइन के बारे में और पार्लर के बारे में, सिलाई कढ़ाई हर चीज की सर जानकारी दी जाती है। जैसे मतलब घर के माध्यम की सारी जानकारी दी जाती है इसमें।
1: अच्छा, जब ये आपका चयन हुआ था आईटीआई में, तो आपने जो ये ट्रेड चुना है ये आपने खुद चुना है कि आपको मिल गया था?
2: सर मैंने खुद चुना था ये ट्रेड।
1: तो इस ट्रेड को चुनने की क्या खास बात थी, क्या सोचा था आपने?
2: सर यही सोचे थे कि घर पे जैसे रहेंगे तो जैसे सब जानकारी रहेगी तो बढ़िया रहेगा, और सर्टिफिकेट का मायने सर उतना ही रखता है जितना कि सब ट्रेड का बराबर रहता है।
1: जी, सर्टिफिकेट के मायने बहुत ज्यादा नहीं रहते,
2: बराबर छूट मिलेगा।
1: मायने ये है कि आपको उसमें कितना काम आता है।
2: सर बहुत सारा काम रहता है, करें तो बहुत सारा है, अगर सर ना करें तो कुछ भी नहीं रहता है।
1: जी जी जी।

0: आप उसमें पारंगत होइए और ठीक है आज इस कार्यक्रम में आप जिस ट्रेड में काम कर रही हैं सीख रही हैं उसमें पारंगत बनने की कोशिश करिए।
1: हाँ सर, तो सही बात है
0: जी। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सर बगावत फिल्म का सुनवा दीजिए सर, पूरा गाना मत सुनवाना, आधा ही सुनवाना, क्योंकि सर कॉल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी, गाना जी। तो सर हम कहीं से भी सुन सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने, सुनिए अपनी पसंद।
1: मैं आपकी ड्यूटी में एक बार फोन लगाई, मेरा सर 5 बार कॉल लगा, सर आपने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया था तो सर मुझे बहुत कष्ट हुआ था।
0: हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल आती है और गाने बजते रहते हैं या फिर किसी दूसरे की कॉल आ गई, तो सुनिए अपनी पसंद का आज ये नगमा। आज हमसे आपकी बात भी हो गई, शिकायत भी लगता है दूर हो गई होगी। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सर।

0: बागबान फिल्म का ये गीत पसंद किया था स्वाति सिंह ने, मनकापुर से हमें कॉल की थी इन्होंने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर तो डायल करिए 7376804090। हेलो
1: सर
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका? हेलो
1: हाँ सर बोलिए सर
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम श्री मुहूर्त राज है सर, मैं अकबरपुर अंबेडकर नगर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी अभी तक अकबरपुर से कोई भी कॉल नहीं आई थी, एक मया बाजार से आई थी, पहली बार आपकी अंबेडकर नगर से कॉल आ रही है। श्री मूर्ति जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी सर मैं इतिहास फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, कोई भी गाना सुनवा दीजिए आप।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी सर मैं श्री राम जन्मभूमि में ड्यूटी कर रहा हूँ इस समय।
0: जी जी किस विभाग में है?
1: इधर मिस्त्री का काम करता हूँ जी।
0: अच्छा अच्छा, तो आप आजकल अयोध्या में

0: हैं इसका मतलब।
1: जी जी सर, जी सर, यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं।
0: जी बहुत खूब। ये जो गाना आप सुनेंगे अभी, ये आप अयोध्या में सुनेंगे या अम्बेडकर नगर में सुनेंगे?
1: जी सर, ये अयोध्या में है सर।
0: अच्छा, अयोध्या में। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म इतिहास से। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें।

0: गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
0: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
0: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में।
3: हेलो सर।
2: जी जल्दी से अपना परिचय दे दीजिए।
3: हेलो सर।
2: जी जी हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही है, आप जल्दी से अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से फोन किया बता दीजिए।
3: हेलो सर।
2: जी जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी।
3: अयोध्या से बोल रही
2: हूँ सर। अच्छा, नाम बता दीजिए।
3: मंजरी मिश्रा।
2: मंजरी मिश्रा, कौन सा गाना सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
3: गाना
2: जी, क्या करती है मंजरी जी आप?
3: सर, मैं करती तो कुछ नहीं हूँ, घर में बहुत से काम रहते हैं सर।
2: तो घर में जो काम करती हैं वो काम कम थोड़ी होते हैं जी। हेलो, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मंजरी मिश्रा की फरमाइश पर, जिन्होंने अयोध्या से फोन किया था। हमारा नंबर है 7376804090। इस नंबर पर करिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद का गीत। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम नंगला काठियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह की बात कर रहा हूँ।
0: रूप जी, कासगंज में मौसम कैसा है? यहाँ तो बड़ी तपिश हो रही है, वहाँ का हाल बताएं।
1: अरे काफी तपिश हो रही है यहाँ भी, गर्मी काफी पड़ रही है, धूप भी बढ़ रही है और हवा भी नहीं ज्यादा चल रही है। खैर
0: जी जी, अभी तो लू का अलर्ट जारी हुआ है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ सर।
0: खेती बाड़ी करते हैं और आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम भी सुनते हैं नियमित रूप से?
1: जी।
0: आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है रंग दिल तीर के देख तेरा ही नाम होगा,
0: कुमार सानू की आवाज में।
1: जी जी,
0: चलिए सुनिए अपनी अपनी पसंद का गीत सुनिए। दोस्तों से कहिए हमें वो कॉल करें, हमारा नंबर बता दिए 7376804090। फोन करने के लिए बहुत बहुत

0: अभी आप सुन रहे थे रंग फिल्म से ये गीत कुमार शानू की आवाज में, और इस गीत को पसंद किया था रूप सिंह जी ने, जिन्होंने हमें कासगंज से फोन किया था और बता रहे थे कि वहां भी गर्मी की शिद्दत बहुत है। हमारा नंबर है 7376804090। इस नंबर पर कॉल करिए और हमें हमसे कीजिए बातें। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर, मैं अनु पांडे गोंडा से।
0: जी अनु जी, क्या करती हैं आप?
1: सर पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है, क्या आपका सपना है बनने का, क्या करना चाहती हैं आगे?
1: सर सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी बताना नहीं चाहती, एक बार कामयाब हो जाऊं उसके बाद बताऊं सबको।
0: बहुत अच्छी बात है, सपना जब पूरा हो जाए तब बताइए। लेकिन उसके लिए प्रयास और कोशिश लगातार जारी रखिए, ताकि वो सपना जो आपने देखा है जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
1: सर आप लोगों की दुआ रही तो जल्द से जल्द पूरा होगा, और रही बात प्रयास की कोशिश की तो मेरे तरफ से फुल है
0: जी। और इसी कार्यक्रम में आप बताएंगी मुझे तब ज्यादा खुशी होगी। जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सर मुझे गाना सुनना है कुदरत मूवी से, हमें तुमसे प्यार है कितना,
0: किशोर कुमार की आवाज में।
1: जी सर
0: धन्यवाद फोन करने के लिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: सर एक बात और, आज आपने गीत गुंजन जो किया
0: जी जी
1: वो मुझको बहुत अच्छा लगा, और अभी आप जो बात कर रहे हो आपकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लिसनर से आप बहुत अच्छे से बात करते हो, मतलब सबसे करते हो
0: जी जी,
1: लेकिन कहीं कहीं आपकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
0: चलिए शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: ओके सर बाय।
0: ओके बाय।

0: तपती दोपहर और झुलसाती गर्मी, ऊपर से हर साल बढ़ती हीट वेव का खतरा।
1: सावधान, लू जानलेवा हो सकती है, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
2: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनें, धूप में छतरी टोपी या गमछा जरूर लें, साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को भी पानी दें।
0: हीट वेव से डरे नहीं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।
2: लू से बचे, जीवन बचाए।
3: धूप में निकला न करो रूप की रानी।
4: समय बहुत कम है इस कार्यक्रम के लिए, तो जुड़िए और डायल करिए 7376804090। हेलो,
5: हाई बाबूराम यादव बोल रहे सर।
4: कहाँ से बोल रहे बाबूराम जी?
5: सुल्तानपुर कुएबार गांव भजपुरा है जी।
4: जी बाबूराम जी, क्या करते हैं आप?
5: बाबू जी, मैं आप यहाँ ड्राइवरी करता था फैजाबाद में 50 से।
4: अच्छा, तो
5: ट्रक ड्राइवरी।
4: अच्छा, ट्रक ड्राइवरी, तो ट्रक लेके कहाँ कहाँ जाना होता था आपका?
5: आपके 2015 तक मैंने वहाँ काम किया है
4: जी। तो ये ट्रक लेके कहाँ कहाँ जाते थे, किन किन प्रदेशों में गए?
5: मटेरियल के काम करते थे सर, जो आपका जो दल जो बायोपास पुल बना है।
4: जी जी जी,
5: इसमें बहुत मटेरियल गिरा है, जो पहले अंदर की सड़क थी ना।
4: जी जी जी,
5: जब बायपास बना तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है।
4: आज इस कार्यक्रम में जल्दी से बता दिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
5: वही एक बोल दो मालिक आपने कहा और औलाद वाले फूलों फलो।
4: ठीक ठीक, धन्यवाद फोन करने के, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
3: मेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म एक फूल दो माली से। और इस गीत को पसंद किया था कूड़े भार सुल्तानपुर से बाबू राम यादव जी ने, फोन किया था हमें और इस गीत को पसंद किया था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अध्याय समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे सर्जी फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: है, रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। रात के 11 बजने को हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में।

0: के क्षेत्र में दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व जहां प्रदेश में केवल 16 राजकीय विश्वविद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर।
1: नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी

भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।